मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं उठिए, जागिए, सवेरा हो गया है और हो सकता है आपके यहाँ भी रिमझिम फुहारे पड़ रही हो या हो सकता है तेज बारिश हो रही हो, तो अपने चेहरे पर से चादर को हटाइए, जरा बाहर जाके और देखिए कि आज प्रकृति आपके लिए कौन से उपहार लेकर आई है, रिमझिम फुहार या जोरदार बारिश, क्योंकि धीरे धीरे मौसम ने, मॉनसून ने हर जगह दस्तक दे दी, शुरू कर दी है और अब समय हो गया है कि ये सुबह तो है ही है, दिन की शुरुआत है जो आपके लिए ना जाने कितनी अनंत संभावनाएं, कितने शुभ संकेत, कितनी ऊर्जा सब कुछ लेकर आई है। तो नींद को त्यागिए और अपने इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत कीजिए और आकाशवाणी लखनऊ तो आपने ट्यून इन कर ही रखा है। फिलहाल कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ और आज हूँ आपके साथ मैं, आपकी दोस्त नंदिनी मिश्रा। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय

राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, सबसे पहले बात कृषि की। तो आज कृषि चर्चा में मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद सिंह।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खेती के साथ साथ आप पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हैं तो मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन इस मौसम में क्या हो, कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक पशु विज्ञान डॉक्टर आनंद सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मौसम में मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन में क्या कुछ करें पोल्ट्री पालक।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। इस मौसम में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे बरसात का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे जो हमारे जीवाणु हैं या फंगस हैं, प्रोटोजोआ हैं और बहुत सारे पैरासाइट जो है इस समय एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें सावधानी तो रखनी है। मुर्गियों में आहार का प्रबंधन, यानी एक तो हमारी मुर्गियाँ होती हैं जो अंडा देने का कार्य करती, केवल हमें उसके लिए ही पालन करते हैं,
1: यानी लेयर
2: लेयर वो लेयर में जो है एक कह सकते हैं जो हमारा रेडीमेड फीड आता है, वो रेडीमेड फीड का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक स्टेज में जो है हमारे पक्षी को कितना एनर्जी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, ये इसमें हम बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जो है डालते हैं। अगर आपने एक दिन पुराना पक्षी लेके आया जिससे हमें अंडा प्राप्त करना है, तो शुरुआत उसकी होगी चिक फीड से, और इस चिक फीड को कम से कम 2-3 सप्ताह आपको चलाना पड़ेगा,
1: चूजों को खिलाना होगा
2: जी। तो इसमें जो है जो प्रोटीन है और जो एनर्जी है वो एक सही तरीके से होती है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ये जो है जब ब्रॉयलर में जाएंगे तो उनमें प्रोटीन और एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम कम रखते हैं क्योंकि जो अंडा देने वाला पक्षी है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमे होती है। तो चिक फीड इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें जो है हम खल का प्रयोग जो है मात्र जो है 22 से लेकर 25% करते हैं, और जो अनाज का प्रयोग है हम 40 से लेकर 45% यूज करते हैं। इससे जो हमारा बैलेंस बनता है, इस तरह से चिक फीड का निर्माण होता है। फिर इसमें जो है मिथियोनिन, लाइसिन और खनिज मिश्रण और अन्य चीजों को बैलेंस करने के लिए मछली का चूर्ण, हड्डी का चूरा, मांस का चूरा, ये सब चीजें बनाते हैं।
1: लेकिन अगर घर पर बनाना चाहते हैं तो क्या संभव है?
2: बिल्कुल संभव है। इसे हमारा जो रॉ मटेरियल है, एक

0: समस्या यह आएगी कि उसको परचेज करना, क्योंकि पोल्ट्री फीड में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल आपका होता है मक्का और सोयाबीन की खली। अगर दो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं तो बाकी चीज़ें कम मात्रा में होती हैं, आप इसे आसानी से मंगा के आप बना सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं या कड़कनाथ कर रहे हैं, तो उनकी आहार व्यवस्था कुछ अलग है क्या?
0: बिल्कुल। अब जैसे हम चीक फीड होती है, चीक फीड के बाद जो है हम ग्रोवर फीड चलाते हैं, फिर जब मुर्गी 18 सप्ताह की हो जाती है तो लेयर फीड चलाते हैं। ये तीन स्टेज होती है हमारे लेयर में। और अगर हम देसी में जाते हैं, जैसे हमने कहा कि कड़कनाथ है या असील है या हमारे CERI जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली की निकाली गई बहुत सारी प्रजातियां हैं। कारी प्रिया है, कारी जो है वन राजा है, कारी ब्रो धन राजा है, कारी देवेंद्रा है, कारी श्यामा है जो कड़कनाथ से क्रॉस करके जो है निकाली गई है। तो बहुत सारी प्रजातियां ये ड्यूल है यानी दुकाजी हैं, कि ये पक्षी जो है अपने आप में सक्षम है और कीड़े मकोड़े और जो है आपके बासी खाने या सब्जी के छिलके खा के अपना 50% से ज्यादा अपने जो है पोषण कर सकते हैं वो।
1: तो जहाँ घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो क्या फीड भी दें और चराई पर भी रखें?
0: हाँ, शुरुआत में जो है हम यही कहते हैं कि शुरुआत में 15 दिन का जब आपका चूंजा होता है थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है, और हम उसमें जो है स्टार्टर फीड चला देते हैं, या चीक फीड चला दीजिए या स्टार्टर फीड जो आपका ब्रॉलर होता है वो वाला आप थोड़ा डाइल्यूट करके उसमें थोड़ा मक्का बाजरा मिला के आप चला सकते हैं, क्योंकि देसी के लिए कोई रेडीमेड फीड आता नहीं है। या फिर जो है स्टार्टर में 15% के आसपास जो है मक्का बाजरा मिला ले तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, 15 दिन तक दें। उसके बाद जो है 25 से 30% तक भी अगर हम दाना के थ्रू देते हैं, यानी उसको 15 से 20 से लेके 30 ग्राम अगर कंसनट्रेट मिक्सचर यानी ये जो रातिब देते हैं मुर्गी आहार देते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी और साथ में जो है जब वो एक लेइंग स्टेज में पहुंचेगी मुर्गियां तो अंडा उत्पादन भी अच्छा करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा

0: 9702-59-73-76-97-02-59।
1: डॉक्टर आनंद सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कृषि चर्चा में आज मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी डॉक्टर आनंद सिंह ने और आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसी के साथ श्रोताओं, आज आप जानते हैं, नमस्कार लखनऊ में समय है, क्योंकि दिन शुक्रवार है, समय है गांधी चर्चा का। गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
3: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80-85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृग तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे

0: अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु, बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए लेकिन उसे अपने हाथ, पांव, नाक, नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन, श्लोक, कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब भारी आज के भक्ति संगीत की, आज की आराधना की।

भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से प्रभु के प्रति समर्पण। असली भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और विचारों की शुद्धता से झलकती है।

जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो वही जीवन का सच्चा आधार बन जाता है। और जब हमारा हर छोटा प्रयास निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, वही असली भक्ति बन जाती है।

जो कुछ सत्य है वही चिरस्थाई है। भगवान के प्रति अपनी आस्था कभी न खोएं, इसी से आपको जीवन में प्रकाश दिखाई देगा।

ईश्वर भक्त सदा नम्र रहते हैं और किसी से अभिमान नहीं करते। भक्ति एक ऐसा दीपक है जो भीतर के सभी अंधकारों को मिटा देती है और मन को शांत और निर्मल बना देती है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 220। आज इसके अंतर्गत आपको सुनाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें चित्रकूट की सभा में भरत के अनुनय विनय से श्री राम की प्रसन्नता और देवताओं की योजनाओं के कारण भरत का विचार बदलने का प्रसंग आता है।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं सुबह के 6:55 होने वाले हैं और ये समय है संस्कृत समाचारों का। तो आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाईची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य

दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। इसमें डॉक्टर प्रतिभा सिंह सिक्की की भेंटवार्ता सुनिएगा। बढ़ता प्लास्टिक पॉल्यूशन, मिलकर खोजे सोल्यूशन। आपसे भेंट करेंगी ममता उपाध्याय। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर अमरीश सिंह यादव सिक्की की भेंटवार्ता सुनिएगा। खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत संतोष कुमार मिश्र की वार्ता सुनेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से गांव में बदलाव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित की जाएगी। आलेख एवं वाचन अभिषेक कुमार सिंह का और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिए का शहनाई वादन, कलाकार होंगे श्यामलाल, और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही आज सुनिएगा पंडित किशन महाराज का तबला वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर सुनिएगा जाफर हुसैन खां का नाथ और कव्वाली, और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर, और लोकमादरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाय कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब से थोड़ी देर में सुनिए आज की विविधता।

आओ लगाएं एक वृक्ष ताकि धरा मुस्कुराए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर इस धरती पर पेड़ ही ना रहे तो क्या होगा? न ठंडी हवा होगी, न पक्षियों का मधुर संगीत, न बारिश की फुहारे, न बच्चों के खेलने की छाव। चारों ओर सिर्फ तपती धूप, धूल और सन्नाटा। क्या हम अपने आने वाले कल को ऐसा देखना चाहते हैं? दोस्तों, पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, वे जीवन है। वे हमारी सांस है, हमारी उम्मीद है और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों लोगों को ऑक्सीजन देता है, मिट्टी को बचाता है, जल को संजोता है और असंख्य जीवों का घर बनता है। लेकिन अफसोस, विकास की दौड़ में हमने जंगलों को पीछे छोड़ दिया। आज बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश, सूखती नदियां और प्रदूषण हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। इसी चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी ताकि हर नागरिक वृक्षारोपण को अपना कर्तव्य समझे। इस वर्ष भी देश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, वन विभागों, सामाजिक संस्थाओं और लाखों नागरिकों द्वारा पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।

कई राज्यों में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोगों से केवल पौधे लगाने ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया जा रहा है। एक बात याद रखिए, पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसे बड़ा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और यही एक सच्ची सेवा भी है। जिस पौधे को आप आज अपने हाथों से लगाएंगे वही कल किसी राहगीर को छाया देगा, किसी बच्चे को स्वच्छ हवा देगा और किसी प्यारे पक्षी का आशियाना बनेगा। हम अक्सर अपने बच्चों के लिए धन, जमीन और मकान छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यदि उनके हिस्से में स्वच्छ हवा ही नहीं बचेगी तो वे इन सब का क्या करेंगे? इसीलिए इस वन महोत्सव पर केवल तस्वीरें न खिंचवाएं, बल्कि एक ऐसा पौधा लगाएं जो आने वाले वर्षों तक जीवित रहे, अपने जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, अपने माता पिता की स्मृति में या किसी शुभ अवसर पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। यदि जगह कम है तो गमलों में, छत पर या अपने मोहल्ले के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्थानीय प्रशासन की अनुमति से पौधे लगाएं।

याद रखिए, एक व्यक्ति, एक पौधा और एक संकल्प पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है।

आज यदि देश का हर नागरिक केवल एक वृक्ष भी लगा दे और उसकी देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में भारत फिर से हरियाली की नई मिसाल बन सकता है।

आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें, मैं केवल वृक्ष नहीं लगाऊंगा बल्कि उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी पानी बचेगा, पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तभी हमारी धरा मुस्कुराएगी।

तो आओ लगाएं एक वृक्ष ताकि धरा मुस्कुराए, क्योंकि जब धरा मुस्कुराएगी, ये धरती मुस्कुराएगी, तभी हमारा भविष्य भी मुस्कुराएगा।

तो दोस्तों आज की इस विविधा में बस इतना ही। फिर कभी विविधा के एक और अंक में आपसे पुनः भेंट होगी एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीवीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
4: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का

0: शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जन भवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026-29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
2: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम

0: वापस करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश में बनाए, लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको वापस करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत की राशि के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा योजना अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित झारखंड।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने

0: आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों, सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार, लखनऊ में श्रोताओं, अब वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। तो आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं श्याम लाल। सबसे पहले सुनिए आपका शहनाई पे बजाया राग रामकली। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं ठाकुर प्रसाद मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं श्याम लाल। अभी आपने सुना आपका शहनाई पे बजाया राग रामकली, और अब आइए आपको सुनवाते हैं आप ही का शहनाई पर बजाया राग जौनपुरी। तबले पर आपका साथ दे रहे हैं ठाकुर प्रसाद।

0: के खिलाफ भारत की दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
3: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी,

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: मौली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। आइए सुनते हैं अब साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे, कट वन, टेक वन।
2: फाइव सिक्स सेवन एट।
1: लाइट्स।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो नाम फिल्मी फ्राइडे है। जहां वैसे एनर्जेटिक टाइम होता है सुबह का और आप जब भी उठते हैं एकदम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, आसपास बहुत सारा शोर, सांस लेने में दिक्कत, गर्मी और भी बहुत कुछ, यानी कि ये जो प्रदूषण है वो हमारे जीवन में बहुत दुष्प्रभाव डालता है। लेकिन बरेली वासियों के लिए तो बड़ी खास और अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, बरेली कैंट क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ बरेली कैंट मॉडल की हालिया रिपोर्टों में काफी तारीफ हुई है, जिसने बरेली छावनी को कार्बन नेगेटिव क्षेत्र बनाने में सफलता हासिल की है। लेकिन एक बात और भी है भाई, बाकी जो शहर है बरेली, उसकी वायु गुणवत्ता लगभग 125 AQI के आसपास है। लेकिन दोस्तों, प्रदूषण के खिलाफ कैंट मॉडल बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड ने प्रदूषण के खिलाफ शानदार काम करते हुए कार्बन नेगेटिव क्षेत्र बनाने में कामयाबी हासिल की है और इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल के रूप में सराहा जा रहा है। दोस्तों ये बड़ी खास बात है कि नहीं? सोचिए, अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। तो हमारे बरेली निवासी और बरेली के आसपास क्षेत्रों में रहने वाले ये सभी जानते हैं कि पूरे बरेली शहर के सभी हिस्सों को एक तरफ कर दिया जाए और कैंट हिस्से को अगर एक तरफ किया जाए तो आप देखेंगे वहां पर वृक्षों की संख्या सर्वाधिक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए पेड़ ही है, वहां पर पुराने, बहुत बहुत पुराने पेड़ भी हैं। हाँ, और कई बार जब आप कैंट से गुजरते होंगे तो वहां की हरियाली देखकर दिल ये तो जरूर कहता होगा

तो भाई इस बात के लिए बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड बधाई का हकदार है और फिल्मी फ्राइडे की टीम की ओर से भी भाई बधाई तो बनती है। हाँ जी, सोचिए आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहां चारों तरफ हरियाली हो, शुद्ध हवा हो, छाया हो और गर्मी अन्य स्थानों की तुलना में कई सेंटीग्रेड कम हो, कई डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, सोचिए कैसा होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल ये जो मॉडल बरेली कैंटोनमेंट ने प्रयोग मिलाए हैं, उसी मॉडल को अपनाकर हम सब भी अपने आसपास अपने वातावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं और हाँ बहुत सारी समस्याओं से बच भी सकते हैं। खैर, ये तो बात थी हमारे बरेली शहर के बारे में और बड़ी खास बात है, पूरी दुनिया को हैरान किया है बरेली ने, अब बरेली कैंट ने। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रदूषण हार गया है, सच मानिए। वैसे आप इस समय सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है और फिल्मी फ्राइडे में बातें

फिल्मों की भी होती हैं और फिल्मों में इल्म भी होता है। तो ये थी इल्म की बात और अब करेंगे अपने प्यारों की बात। जी हाँ, सितारों की बात। सच मानिए, पिछले हफ्ते हमने आपको एक गीत मिक्स करके सुनवाया था। कौन सा वाला? ये वाला।

0: दो फिल्मों के दो गाने इनको मिक्स किया, बोल सेम है, बच बीच के कुछ अंतरा अलग अलग है। हमने आपसे पूछा था आपको बताना है फिल्म का नाम, फिल्म का नाम, एक फिल्म का नाम नहीं बल्कि फिल्मों के नाम आपको बताने थे। तो चलिए, फिल्मों के नाम का मतलब है कि आपको दोनों फिल्मों के नाम बताने थे। जिन दोस्तों ने दोनों फिल्मों के नाम भेजे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं, और जिन्होंने दोनों फिल्मों के नाम सबसे पहले से ही बताए हैं वो सुपरस्टार हैं। उनसे तो हम बाद में बतियाएंगे, पहले स्टार्स की बात कर लेते हैं। कुछ दोस्त इतनी जल्दी में होते हैं कि वो मैसेज का फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले टाइप करना है सवाल का जवाब, फिर उसके बाद अपना नाम, फिर उसके बाद अपना पता, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं आप लोग कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देते हैं। तो चलिए, पहले सही जवाब को छोड़ देते हैं और बाकी के राइट आंसर शामिल करते हैं। हमें सही जवाब बीरम गांव गुजरात से भेजा, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। मोहम्मद कलीम जख्मी रेलवे रोड गंज डंडवारा से, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, डॉक्टर डी एच बच्चन गणेशपुर गंज डंडवारा से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से, गणेशपुर गंज डंडवारा एटा से एम फारूक शेख, पश्चिम थोक गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौर, मास्टर बिठल सरोज से काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से, तिलक राज अरोड़ा जी खुर्जा यूपी से, फरुखाबाद मोहल्ला साफगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया जी, अंकुश अरोड़ा खुर्जा यूपी से, और यहीं से चंदन अरोड़ा। तो भाई आप सबको तो ढेर सारी, जी हाँ, बधाई फिल्मी फ्राइडे के स्टार बनने की।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: 100.4 FM.
1: This is 100.4 FM. आप सुन रहे हैं इस समय बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम है फिल्मी फ्राइडे और ये है

0: ये वेरी वेरी फिल्मी है। अभी जो गाना सुना ना, इश्क कमीना, ऐसा ना लगता है कि अब जो है गानों का टोटा पड़ने लगा है। हां जी हां जी, बिल्कुल सही लग रहा है। बहुत कम गाने ऐसे आते हैं आजकल जिनको आप वर्षों तक याद रख पाए, वरना इधर आए और उधर गाए पता ही ना चले, कब जहन पे छाई कब उतर गए। हां जी हां जी, लेकिन पुराने दौर की फिल्मों के जो गाने हैं वो आज भी आपके जहन में तरोताजा होंगे, कहीं न कहीं गाए बगाही मुंह से गुनगुनाते भी होंगे आप। हाँ, जिक्र किया हमने अभी। वैसे आपको बता दें कि ये जो फिल्मी फ्राइडे है उसमें आपकी उस तमन्ना को पूरा किया जाता है जो कभी दबी कुची रह गई दिल में। हाँ, वैसे दिल के अरमा आंसुओं में तो बहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी तमन्नाएं होती हैं जो आंसुओं तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर उनका क्या होता है, वो दिल की गहराई में कहीं दफन हो जाती है, गाहे बगाहे जीवन के किसी मोड़ पर आपको वो बातें याद आती हैं और आप सोचते हैं कि काश ऐसा हुआ होता। हां जी हां, सोचा ना आपने, होता है कई कई बार होता है। तो चलिए उसी तमन्ना को पूरा करने के लिए फिल्मी फ्राइडे है ना आपके साथ, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली के साथ। आप फिल्म और इल्म की बातें सुनिए फिल्मी फ्राइडे में। शुक्रवार सुबह 8:15 से कार्यक्रम आपकी सेवा में पूरी तरह से लाइव रहता है। हाँ भाई, जितना बोलते हैं वो सब लाइव होता है, गाने तो रिकॉर्डेड होते हैं, ट्रैक प्ले करते हैं। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं जहाँ आपकी उस दबी तमन्ना को आकार दिया जाता है, जहाँ बनते हैं स्टार। स्टार तो बन चुके लेकिन अब बनेंगे सुपरस्टार। तो हम चलते हैं वहाँ जहाँ कर रहे हैं इंतजार हमारे पिछले हफ्ते की फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार है, सुपरस्टार है। अजी बादशाह, बहुत बहुत बधाई फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की। जी
1: नमस्कार सर, मैं बीपी गौतम, मेटा रोड, गंडोनवाड़ा, उत्तर प्रदेश से। सर
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी, की हाल है तुम्हारे जी?
1: बस बढ़िया है सर जी।
0: ये बैकग्राउंड से आवाज कैसी आ रही है, कुछ रेडियो वेडियो चल रहा है क्या?
1: हाँ सर, प्रोग्राम सुन रहा था आपका।
0: अरे वाह, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए।
1: बंद कम कर दिया सर, बंद कर,
0: वरना अपनी आवाज सुन के हम ही डर जाएंगे। तो भाई एक बार पुनः अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं सर बीपी गौतम, एटा रोड, गंडोनवाड़ा, उत्तर प्रदेश से।
0: बीपी गौतम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जवाब क्या भेजे थे आप?
1: सर आपने दो गाने सुनवाए थे, एक गाना था फुटपाथ फिल्म का।

0: एसपी वाला सुब्रमण्यम ने और आशा भोसले ने गाना अवसर दिया था,
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना।
0: और एक हंगामा में था यही ये शान और साधना संगम ने गाया, मैंने दोनों पिक्चरें कई बार देखी टीवी पर।
1: अच्छा एक और बात है, दोनों एक ही साल की फिल्में हैं, एक पहले है कुछ एक बाद में है?
0: जी जी सर,
1: है ना,
0: फुटपाथ पहले आई थी इसके बाद हंगामा आई,
1: हंगामा आई, तो जवाब ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगाई।
0: हाँ सर, जब गाने सुने हो तो फिर कहाँ देर लगती है,
1: ये तो बात सही है। लेकिन उनका क्या जिन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा?
0: अब उनको ऐसा है सर, आवाज में तो पहचान करनी चाहिए कि ये आवाज शान की है कि ये एसपी वाला सुब्रमण्यम की है,
1: जो साधना सरगम की है या आशा भोसले की है।
0: जी सब स्वर में तो सभी अंतर है सर, दोनों आशा भोसले का अंदाज अलग है गाने का, साधना सरगम का अलग है, और ये एसपी वाला सुब्रमण्यम का अंदाज अलग है और शान का अलग है अपना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने भी ये पूछा था कि फिल्मों के नाम आपको बताना है, तो जाहिर सी बात जी, है जी, कोई एक फिल्म तो होगी नहीं।
0: जी सर,
1: है ना। अच्छा होता क्या है कि सर्च करते हैं सबसे पहले, अब सर्च करने पे जो पहला नाम आ गया, हमारे कई दोस्तों ने ये सोचा होगा कि वही है ना,
0: फुटपाथ है डाल दो फटाफट,
1: या फिर हंगामा है डाल दो। अच्छा कुछ दोस्तों ने बाद में फिर दोनों लिखे, इसका मतलब उन्होंने दोनों को सर्च किया।
0: हाँ बाद में सर्च किया होगा सर उन्होंने।
1: अच्छा सवाल कुछ ज्यादा कठिन तो नहीं था?
0: नहीं सवाल तो सबसे सरल था सर, कठिन कहाँ था, मगर आज जवाब कम आए,
1: जवाब तो बहुत आए हैं।
0: अच्छा वैसे वो गलत आए होंगे सर?
1: गलत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि पूरा सवाल की सवाल का पूरा जवाब किसी ने नहीं दिया, आधा आधा जवाब दिया, इसलिए हमने उनको शामिल नहीं किया।
0: जी सर।
1: अब ये बता दिए कि कार्यक्रम इन दिनों कैसा लग रहा है आपको?
0: प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, अब मैं भी आज सोच रहा हूँ, सोचा है मैंने सर कि आज मैं कम से कम 5 मिनट बाद जवाब दूंगा, जिससे कि किसी और श्रोता को मौका मिले सर।
1: चलिए आज हम आपको 5 नहीं पूरे 50 मिनट देंगे सोचने के लिए।
0: ठीक, मैं भी साहब बाद में ही डालूंगा, मैंने देख लूं कौन
1: बाद में, आप कितना बाद में डाल सकते हैं, चलिए ये भी आपको बता दें।
0: नहीं ये तो सर मैं कई बार मिला भी नहीं है मुझे, आपका आपके द्वारा पूछा हुआ,
1: तो फिर आज
0: नहीं मिला सर।
1: आज का सवाल के लिए आपको 50 नहीं बल्कि 500 मिनट दे रहे हैं हम।
0: देखिए ढूंढना बेकार है सर,
1: काहे ऐसा काहे,
0: क्यों जब 500 मिनट दे दी बहुत हो गया।
1: देखिए मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम हिम्मत हार जाएं, हम ढूंढे
0: हिम्मत तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए सर।
1: हाँ हिम्मत बिल्कुल नहीं हारिएगा, सवाल कुछ आज टेढ़ा रहेगा।
0: जी सर,
1: देखते हैं कितने दोस्त आज का जवाब भेजेंगे। खैर एक बार फिर से आपको बधाई फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की, और हम अपने सुपरस्टार को उनकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: फिल्म सहेली थी सर प्रदीप कुमार की।
1: हाँ सहेली है,
0: उसमें गाना था मुकेश के सुर में जिस दिल में बसा था प्यार तेरा।
1: हाय इतना मतलब दर्द भरा गाना, चलिए कोई बात नहीं, हम भी इस दर्द में शामिल हैं और आपकी पसंद का गाना प्ले करते हैं, लीजिए सुनिए।
0: थैंक यू सर,
1: वेलकम।

जिस दिल में बसा है प्यार आपका, उस दिल को कभी ना तोड़ेंगे हम। हाँ, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। वैसे इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली राउंड, नाम फिल्मी फ्राइडे है। शुक्रवार सुबह 8:15 से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव रहता है। वैसे अब वहां चलेंगे जहां हम अपने फिल्म फ्राई करते हैं। तो देखिए, फ्राइंग पैन निकाल लिया, तड़का लगाने के लिए हम भी तैयार हो चुके हैं। और आज हम जो लेकर आए हैं वो आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। वेलकम टू द शो फिल्मी फ्राइडे। व्हाट नाउ, वी आर गोइंग टू फ्राई। वेलकम टू द जंगल।

जियो। वैसे आपको बता दें, किसी भी फिल्म में अगर 30-35 बड़े कलाकार हो तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर जहां इतनी बड़ी स्टार कास्ट का मेला लगा हो तो उनके बीच क्या खिचड़ी पकी होगी। इसी खिचड़ी के बारे में बात करेंगे। कलाकार हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी। कॉमेडी एडवेंचर टाइप की ये फिल्म है। डायरेक्शन अहमद खान ने किया है। दोस्तों, हम भी वेलकम टू द जंगल देखने यही सोचकर पहुंचे थे, लेकिन मानना पड़ेगा इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद फिल्म अपनी बेतुकी और अफरा तफरी वाली कॉमेडी से खूब हंसा थी।

बावजूद फिल्म अपनी बेतुकी और अफरा तफरी वाली कॉमेडी से खूब हंसा थी। बस शर्त ये है कि इसे देखते टाइम अपना दिमाग घर पे छोड़ के आइए, सारी टेंशन को दूर भगाइए। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये सुपरहिट वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। 2007 में रिलीज पहली फिल्म वेलकम कल्ट कॉमेडी मानी जाती है। ओरिजिनल फिल्म से जहां अक्षय कुमार और परेश रावल इस बार भी मौजूद हैं, वहीं नाना पाटेकर और अनिल कपूर गायब हैं। हालांकि मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया का पूरा ख्याल रखा है और उदय भाई मजनू भाई के यादगार किरदार को जोड़ते हुए इसमें उनके भाइयों को दिखाया। दौलत है, शोहरत है, है? चलिए इससे पहले कि हम फिल्म की कहानी और इसके बारे में बात करें, वेलकम टू द जंगल की भारी भरकम कास्ट का नाम जान लेना भी जरूरी है। जैसे सुनते हुए आप थक जाएंगे। 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में अक्षय और परेश रावल के साथ सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, दिशा पाटनी, जैकनील फर्नांडिस, लारा दत्ता, राजपाल यादव, उर्वशी रौतेला, जाकिर हुसैन, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, यशपाल शर्मा, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, मुकेश तिवारी, आफताब शिवदासानी, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, बिंदु दारा सिंह, फिरोज खान, पुनीत इसर, सयाजी शिंदे, सुदेश बेरी, किरण कुमार, हेमंत पांडे, नवाब शाह, मीका सिंह और दिवंगत पंकज धीर भी हैं। कहानी की शुरुआत होती है टैक्स की चोरी करने वाले कुछ उद्योगपतियों से। उन्हें अंदेशा है कि उनकी पॉलिटिकल साठगांठ खतरे में पड़ी तो उसने टैक्स चोरी के लिए जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में वो अपना घाटा दिखाने के लिए 200 करोड़ की लागत से एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो वेरी वेरी सुपर फ्लॉप हो जाए। उसका कर्मचारी दुबे सबसे खराब डायरेक्टर, टेक्नीशियन और फ्लॉप हीरो की तरह शुरू करता है। वो जो दुबे जी हैं, नाकाम निर्देशक देव यानी राजपाल यादव और दास यानी परेश रावल के डायरेक्शन में एक समय की टॉप स्टार राजीव यानी अक्षय कुमार को हीरो के रोल में कास्ट करता है। फ्लॉप होने के बाद राजीव आज चीप भोजपुरी फिल्में करने पर मजबूर है। सहनी की बेटी जेनी यानी जैकलीन, राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड स्टार नादिया यानी दिशा पाटानी, गैंगस्टर जोड़ी रोमियो अर्शद वारसी और येड़ा अन्ना सुनील शेट्टी, रंगबा मुकेश तिवारी, जगबा यशपाल शर्मा, रैम्बो कृष्णा अभिषेक, जंबो कीकू शारदा जैसे कई रंग बिरंगे किरदार इस अजीबो गरीब टोली का हिस्सा बनते हैं। सिंगर दलेर मेहंदी इसमें दोस्तों सिंगर दलेर मेहंदी इसमें डेल के किरदार से जुड़ते हैं। पूरी कास्ट राजीव के मैनेजर बेनी यानी तुषार कपूर के साथ भारत पाक सीमा के पास बसे एक गांव में आजादगंज जिसका नाम है उसमें शूटिंग के लिए पहुंचती है। इस आर्मी बेस्ड फिल्म के लिए तेजा यानी लारा दत्ता कलाकारों को ट्रेनिंग देती है लेकिन शुरू होने से पहले ही उनका सामना खुखार डाकू चतारा यानी जैकी श्रॉफ से होता है। भिडू जो गांव वालों के लिए आतंक का दूसरा नाम है। आजादगंज गांव में जतारा के आतंकी अब्दुल्ला यानी आफताब शिवदासानी और हेमंत पांडे हैं। दूसरी तरफ बरसों से पीड़ित और शोषित जोया यानी रवीना टंडन, मुराद यानी किरण कुमार और बड़ी भी यानी फरीदा जलाल, कई ऐसे अन्य लोग हैं जो जतारा के खौफ तले जी रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि गांव वाले फिल्म की शूटिंग करने वाले इन कलाकारों को असली आर्मी वाले समझने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये उन्हें जतारा के आतंक से बचाएंगे। क्या ऐसी कोई आपने फिल्म देखी है? पहले कभी जहन में आई कौन थी चमकी तो सोच लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है क्या होगा जब शूटिंग वाली आर्मी असली आतंकियों से मिलेगी? ये जानने के लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां बड़े से पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों डायरेक्टर अहमद खान फिल्म को रफ्तार देने में थोड़ा टाइम लेते हैं। फर्स्ट हाफ धीमा लगता है लेकिन प्री इंटरवल से जैसे ही पूरी टोली गांव पहुंचती है असली बातें यहीं से शुरू होती हैं। शुरुआत में कहानी सिर से पैर परे लगती है मगर धीरे धीरे आप बेतुकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और इसकी स्लैपस्टिक कॉमेडी सुनकर खुलकर हंसने लगते हैं। फिल्म का सबसे सटीक संवाद तब आता है जब आधे अंधे सिनेमेटोग्राफर बने श्रेयस तलपड़े से पूछा जाता है, ए, कैमरा चल रहा है? वो जवाब देते हैं, मुझे लगता है चल रहा होगा। बस यही फिल्म का सार है। दोस्तों इतनी बड़ी स्टार कास्ट को फिल्म में संभालना आसान काम नहीं था लेकिन अहमद खान ने लगभग हर किरदार को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका दिया है। येड़ा अन्ना और रोमियो जैसे किरदार वेलकम के नाना पाटेकर और अनिल कपूर की यादें ताजा कर देते हैं। फरहाद सामजी के डायलॉग्स कई जगह गुदगुदाते हैं और बॉलीवुड पर मजेदार कटाक्ष भी करते हैं।

दोस्तों वेलकम टू द जंगल। बॉलीवुड की फिल्मों की स्टार और कल्चर का मजाक बनाने में कसर नहीं छोड़ती। मसलन एक फ्लॉप स्टार का खुद पैसे देकर पापराजी बुलाना और जैकली फर्नांडिस के किरदार का सिर्फ ग्लैमर के लिए मौजूद होना, आइटम नंबर शूट करने के बाद फिल्म यूनिट का इस सोच में पड़ जाना कि गाना बन तो गया है लेकिन अब इसे कहानी में डालें कहां, ये सब मजेदार लगते हैं। असली बात यह है कि फिल्म सस्ते डबल मीनिंग संवादों से बचती है और साफ सुथरी कॉमेडी पर भरोसा करती है। हाँ, स्क्रीन प्ले एडिटिंग को थोड़ा और कसा जा सकता था। संगीत में ऊंचा लंबा कद का रिक्रिएटेड वर्जन सबसे अच्छा बन पड़ा है। बाकी के गाने बस हैं और कहानी में घुलते मिलते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भैया कलाकारी कैसी है, यानी अभिनय कैसा है। तो फिल्म का सेंटर पॉइंट अक्षय कुमार है। राजीव के किरदार में उन्हें सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है और उन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग का पूरा फायदा उठाया। उनकी मौजूदगी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। सुनील शेट्टी अर्शद वारसी की जोड़ी मनोरंजक है, जबकि परेश रावल अपने चिर परिचित कॉमिक अंदाज से खूब हंसाते हैं। राजपाल यादव जी उनका भी अच्छा साथ निभाते हैं। जॉनी लीवर जी जब पर्दे पर आते हैं हंसी का स्तर और बढ़ जाता है, खासकर उत्साहित होते हुए उनकी आवाज के बीच में चले जाना बार बार गुदगुदाता है। रवीना टंडन अक्षय कुमार के साथ वाले सीन नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं। तेजा के किरदार में लारा दत्ता इफेक्टिव है। जैकलीन अपनी मासूम बेवकूफ लड़की की भूमिका से मनोरंजन करती है। दिशा पाटनी फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है, हमने पहले बता दिया था। जैकी श्रॉफ के हिस्से में डायलॉग भले ही कमाए हो लेकिन जतारा के रूप में उनका दमदार लुक और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें दमदार विलेन बनाता है। देखिएगा अगर आपको मौका मिले तो। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्यों देखें, वैसे तो थारी अपनी मर्जी, देखो या ना देखो, हमारा काम था फ्राई करना, वो हमने कर दिया। लेकिन माइंडलेस कॉमेडी के शौकीन, यानी बिना लॉजिक के सिर्फ हंसने का दिल कर रहा है, तो वेलकम टू द जंगल फिल्म को सिनेमा घरों में आप देख सकते हैं। वैसे थारी अपनी अपनी मर्जी, देखो या ना देखो, हमारा काम फ्राई करना था, वो हमने कर डाला। यानी

0: मुंबा।
1: फ्राइंग पैन करते हैं बंद अगले हफ्ते तक के लिए, एक और फिल्म लेके आएंगे अगले हफ्ते, तैयार रहो।
0: सच में,
1: मगर आप तैयार हो जाइए सवाल के लिए।
0: सवाल वो जो आपको बना दे स्टार या सुपरस्टार।
1: सच में सवाल क्या है? लेकिन पुनः हर बार की तरह इस बार ये यही कहेंगे आपसे, जो हम आपको फॉर्मेट बताते हैं उसी फॉर्मेट के मुताबिक अपना जवाब हमें भेजिए।
0: सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना जवाब, नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर, और इसके बाद भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू, जो हम बताते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त कुछ भी टाइप मत कीजिए, सिर्फ उतना ही टाइप करना है आपको, BLYFM, खाली जगह छोड़िए, अपना जवाब लिखिए, फिर उसके बाद अपना नाम, पता लिखिए, मोबाइल नंबर और भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। तो चलिए हम एक गीत का कुछ टुकड़ा आपको सुनवा रहे हैं, उसी रिदम पर, मतलब म्यूजिक लगभग धुन वही है, वाद्य यंत्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धुन वही है। यानी दूसरा कौन सा गाना है जो इसी धुन पर मिलता जुलता है, हमें जरूर बताइएगा। पहले गाना सुनिए और बताइए दूसरा ऐसा कौन सा गाना है जो इन्हीं धुनों पर मिलता है।

यहां पर पुनः आपको बता दें कि ये जो गाना चल रहा है, ये जो बोल चल रहे हैं, ये जो लाइनें चल रही हैं, ये जो धुन चल रही है, इसी धुन पर मिलता हुआ दूसरा गाना आपको बताना है कौन सा है। ढूंढो, ढूंढ पाओ तो ढूंढो।

0: अब आपको अंदाजा लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ढूंढते रहिए जब तक नाम मिले। फिलहाल हम चलते हैं, आज का फिल्मी फ्राइडे यहीं पर वाइंड अप, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भा।
1: Me Friday.
2: Cut one.
1: Take one.
3: 5, 6, 7, 8.

0: Lights, camera, action! Action!
1: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
0: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: कर लो दिल।
1: बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी, ये सच है। हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया, ये भी सच है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि आप गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम, हमने ये कभी नहीं सोचा। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा? इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
2: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है। तन मन की सूद खो बैठी हूँ। न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अब आप ये बताइए कि अख्तर।
2: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में कितनी फिरदौस का नाम ले रहे थे।
1: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंह फट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे, जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 14.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह

ये अब सुनते हैं आपकी पसंद। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। हम आपके लिए कोई भी पिक्चर में से अटैच न करें और कमेंट सिर्फ एक बार कीजिए, बार बार नहीं। इस बात की गारंटी है कि प्रत्येक श्रोता का कमेंट शामिल होगा, बस एक बार होना चाहिए, बार बार नहीं। तो धुआंधार कमेंट के साथ हम हाजिर हो चुके हैं और इस समय 140 कितने हैं, 147 हैं क्या? ना जी, 150 हो चुके हैं। 150 कमेंट के साथ आज के इस प्रोग्राम की होती है शुरुआत। और आज का जो पहला कमेंट है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, सरफरदीन, सोहान, अरजान, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथियों का है। नौशेरवानी आदिल फिल्म का ये गीत आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। परवेज शमसी के बोलों को संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र ने। और अब आप सबकी बारी है, तैयार हो जाइए। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से चीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिटा बजाज कमेंट करते हैं। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सहानी, मोहम्मद अफजल मलिक, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम, कृष्णा देवांगन और इनके सभी साथी हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। और आप हैं मजनू कटीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। और आप हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। कमेंट आपने भी किया है ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पोखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनथरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके सभी साथी। शनि बाजार कस्बा उगहती उत्तर प्रदेश से आप हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियल और कायरव गुप्ता। कमेंट करते हैं नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, कहां से हैं आप? आप हैं जिला बेगूसराय बिहार से। और मोतिहारी बिहार से संजय कुमार सिंह, संदीप कुमार सिंह और इनके तमाम साथी। पटेल नगर मलूड से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजौरिया, गुड्डू और इनके सभी साथी। और ये जो कमेंट हमें मिला है वो आप सब दोस्तों का है। हमारे ये साथी हैं आसल गांव बाजार बुलढाणा महाराष्ट्र से, राजू माठे, गजानन संजय, ज्ञानेश्वर माठे, संतोष अशकाले जी, गजानन सालोकर, सुरेश भेटे पाटिल, देवेंद्र भटकर। मुरादाबाद दूलापुर उत्तर प्रदेश से सर मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून हैं। और आप कमेंट करते हैं बीजना मुरादाबाद से राजबीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान और सोफिया खान, महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके तमाम साथी। खरगोन सनाबद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप और इनके तमाम साथी। गोंदूर रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। गड़ी कोटाहा पंचकूला से आप हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम, शानिया, इलियास, मुशाहिद, अक्सा, आयशा, उमर और समीना अंसारी। और आप हैं कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। शंकरपुर उसावा बदायूं से आप हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत, श्री यादव। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता का कमेंट मिला है। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। और आप हैं नरसिंहगढ़ लसूड़िया राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना अर्षित और खुशी गोस्वामी। और सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर ईशानी, सेक्टर 18 जगाधर जी, जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं। और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से उत्तम कुमार बघेल, रुकुनी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंगडरिया छत्तीसगढ़ से, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा हैं।

श्रोताओ, आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। जी हाँ, आपकी पसंद में अगला गाना मिट्टी और सोना फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, अनजान के बोल बप्पी लहरी का म्यूजिक डायरेक्शन। और इस गीत को जिन दोस्तों ने पसंद किया है वो आप सब हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन अंसारी और इनके तमाम साथी। अब और दोस्तों को भी साथ लेंगे, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं। और आप गनगुला दातागंज बदायूं से इशरत खान, साहिरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन, शहबाज सैफ, ईशान, आजम खान, अरहान खान और इनके तमाम साथी। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान। और आप हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा उनके तमाम साथी। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन हैं। सिवहारा बिजनौर यूपी से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अरफात अदीब और कादिर चौधरी हैं। और आप हैं संत नगरी शेगांव से शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत और दहीगांव नादुरा धोंडू भातुरकर से दहीगांव नादुरा से हैं धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर और इनका पूरा परिवार। शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद अर्णव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल हैं नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबीहा खान, जब्बार मोहम्मद, फरीदा, रईसा बानो, अशरफ खान, मंजू निम्मी और इनके सभी साथी। अटार नंदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा हैं। और एम असलम सैफी, जैबुनशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी बिलराम गेट कास्कन से हैं। और दूलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। और रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके तमाम साथी हैं। और आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। और कमेंट करते हैं निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी, नाज रेडियो क्लब करेली से। और ये जो कमेंट मिला है वो हमें नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि और रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पीपी कुलते हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का कमेंट है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और इनका पूरा परिवार। बठिंडा रोड मंडी डेबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग हैं। और आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा सबिस्ता और मोहम्मद नसीब पलक लोबना, यश मंसूरी। और मेरठ से आप हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हैं, हमें कमेंट किया है। गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, अजय राजपुरे, एकनाथ पवार, भाऊ साहब मोटे और इनके तमाम साथी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हैं। और आप हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक केले हैं, अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश मौर्य, सुनील, खुशबू आरोही, स्वाति मौर्य, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनके तमाम साथी। आष्टी मराठवाड़ा से जालना के हमारे श्रोता हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तादले, धोतरजोड़ा। आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंडे, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदाबली जिला मुरादाबाद से, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से, धर्मवीर कश्यप, ऊषा कश्यप, ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश कश्यप, करिश्मा, मुस्कान कश्यप और इनका पूरा परिवार, जावेद इनायत और यूसुफ इनायत लेसेस्टर इंग्लैंड से हैं। कमेंट करते हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, वेदा सिंह, धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से। और आप हैं बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और किट्टू। और ये कमेंट हमें मिला है कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान अफजल, मोनिश रजा, सादिक, आमिर, कादिर, फैसल, शामिया, शायरी, संजीदा, शाहाना और इनका पूरा परिवार। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे हैं। और आप हैं

वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीसान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शोएब खान और गंज डंडवारा से शमशुल कमर राही शाहीन फातिमा अनू अदनान और फैजान खान उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका भानु प्रकाश और इनका पूरा परिवार महाराज दरवाजा इटासी नबी हसन अब्बासी शहनाज नवीद हसन अनम सुहेल हसन रसीद वारसी यशफ अब्बासी हैं पद्मा टाकिज नेपनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह आप सबके नाम करते हैं फिल्म मिट्टी और सोना से ये ट्रैक।

दोस्तों, आपकी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। हम उपलब्ध हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी। हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी है 100.4 MHz FM पर। और आपके पसंद का कार्यक्रम है ये। अगला जो गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम नाचे नागिन गली गली। साधना सरगम, नितिन मुकेश की आवाजें हैं और इस गीत को पसंद करते हैं कस्बा क्यूलड़िया नवाबगंज जिला बरेली UP से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल धर्मवीर, सचिन अनुज, अनमोल कमलेश गंगवार, राजू चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार और इनके सभी साथी। और साथ में लेते हैं आप सभी दोस्तों को। आप हैं गांव खोखरावाली गंगानगर श्री गंगानगर से विनोद वारासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन वारासा, बड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी आप गंजनवारा से हैं, और मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना कुमारी, मुन्नी चांदनी और नंदिनी कुमारी हैं, और वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, शादाब खत्री हैं, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और आरके राजा। आप हैं मछली गोदाम कैदीमोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, ऊषा सिंह, ऋषभ सिंह और इनका पूरा परिवार। हमें ये जो कमेंट किया है वो आप सब दोस्त हैं, आपका कमेंट है। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर, गौरव नायक और इनका पूरा परिवार। और ये कमेंट हमें मिला है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। और बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी उदयपुर राजस्थान से हमें कमेंट करते हैं, और कुछ और दोस्तों के भी कमेंट मिले हैं और इन कमेंट को भी हम शामिल करेंगे। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनका पूरा परिवार है। गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी हैं, और संगा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन और इनके सभी साथी, बगबोड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और इनका पूरा परिवार, बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़, बुद्धनगर खंडवा चंदौसी से पप्पू राणा और इनके सभी साथी, कस्बा हाफिजगंज जिला बरेली UP से शकील अहमद इदरीसी हैं, और चरडोगरी कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन कुमारी साहू, इंद्राणी साहू, माया साहू और इनका पूरा परिवार, सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, बेबी वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी आप सब हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर और इनके तमाम साथी हैं, रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और इनका पूरा परिवार, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, छबीलपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित दिव्यांश और गायत्री कश्यप हैं, और गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, रिश्ता, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, खलीम अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनका पूरा परिवार, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम सद्दाम हैं, संग्रामपुर बदायूं से फरजंद अली, मोहम्मद तल्हा, उमामा और ताशिफा हैं, उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से। कमेंट करते हैं सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया मुस्तफा खान और इनके सभी साथी, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफियान अनस, आयजा अल्फिया और इनका पूरा परिवार, आकूट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिये, केसन जीव डाविरा और इनका पूरा परिवार, और आप हैं गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नांद्रे, मारोतराव पंचाल और इनके सभी साथी, राजू मिगलानी, बबीता बिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से बीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश असनी भावसार और इनका पूरा परिवार, सप्तरंग श्रोता परिवार, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और इनका पूरा परिवार है। आप हैं जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनवने और इनका पूरा परिवार।

छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित और आहूजा हैं। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक, तन्वी और इनके सभी साथी अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू रघुवीर नगर दिल्ली से, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और इनका पूरा परिवार, और पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और इनका पूरा परिवार, और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाव खडसे, ललिता, आशा रानी, संजना परी, गणेश, कार्तिक खडसे, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनका पूरा परिवार। नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू और दिया चौरसिया, बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता, सुमित, वीर और अबीर चौरसिया, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा, शिवानी कुशाग्र चौरसिया और इनके सभी साथी, आप सबके नाम करते हैं फिल्म नाचे नागिन गली गली से ये ट्रैक।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद और ये आकाशवाणी बरेली है, न्यूज ऑन AIR ऐप, रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM और वेव्स OTT पर भी आप हमें सुन रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं हीर राजा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का म्यूजिक डायरेक्शन, और सुनना चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और इनके तमाम साथी। शामिल करते हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, छोटी बलिया करजत मुंबई से दुखना सदब, जूही इकबाल, इमरान अहमद और अहमद जी इनके साथ हैं। आप हैं गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से बबीता, पूजा, रेखा, नंदिनी, शोभा, आराध्या, रघुवंशी, वंदना, रक्षति, निखिल, ललिता और इनके सभी साथी। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली कमर कॉलोनी बड़वा, खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा और इनके सभी साथी। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहूं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम और रायपुर अनई बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन आफिया परवीन और इनका पूरा परिवार, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान बाबू हैं। विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाटा, वोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं और आप हैं पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया और नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और इनके सभी साथी हैं। कुछ और दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारे नाम बाकी हैं। तो कौन कौन साथी हैं? आप हैं एक ही किया नहीं शामिल हुआ आज, उम्मीद रखें, थैंक्स। तो ये हमारे जो साथी हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रदीप सलूजा और इनके सभी साथी, और ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया, बांडीवाली फाजिलका पंजाब से, सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर के हमारे सभी साथी, रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी और इनका पूरा परिवार, अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, समदा ग्राम सुखरी कलां से, कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल है और आप हैं सफीदों सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लवकुश खन्ना और इनका पूरा खन्ना परिवार, भोजपुर तगा चिलकाना, सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, अदीब अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आयत मोहम्मद इंतजार और अक्कलकोट रोड जिला सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोंडे, आम्रपाली और आरव का कमेंट है, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रॉजी डी कैस्ट्रो, पाल डी कैस्ट्रो और विलेज डी कैस्ट्रो, गढ़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुमार मंडल, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा, आरती कुमारी, सुनीता देवी हैं और आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, टूडरपुर बिसौली बदायूं से PS यादव, अजनबी, अजयपाल सिंह यादव, पवन कुमार, प्रभात, मयंक, मुन्नी देवी, नीतू सिंह, प्रतिभा और प्रतिज्ञा यादव, पवन गौड़, सुयाश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्व है सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से, नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, हिब्जा नूरी, हिना, नत्थू, नन्हे, शाकिर और इनके तमाम साथी, शास्त्री नगर बीट शहर से किसन सबकाल, आशा, सोनिया और विशाल सबकाल हैं और आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा हैं। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके सभी साथी, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल और वर्षी, पटियाली रोड गंजनवारा से आमिर हुसैन, तैयबा, शेख फौजिया, शेख आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवारीजन, कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू

स्त्री और आप हैं चैरिटेबल गुट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर शेख, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, उनके तमाम साथी, समतानगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी, निशांत जगताप और इनका पूरा परिवार, सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से और यहीं से वैदेही जोशी, हंसिका कुमारी, अंकिता जोशी, आप हैं हुकुम चंद कटारिया जी, पिंटू सेन, सनावत खरगोन सी और चिंचौली शेगांव से रविन्द्र इंगले, अम्रपाली और प्रेरणा, राजरतन, रोहित इंगले और इनके सभी साथी, राजमाता नगर बुलढाणा से आप हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार, चंदौसी रोड चमनपुरा से मुकेश गौतम, सुनील, अमन गौतम और इनके सभी साथी, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बहजोई से राजू भाई, फरासी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूधी और इनके सभी साथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा वंडलकर और इनका पूरा परिवार, विपिन कुमार साके, सपना, रविन्द्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता साक्य, संगमित्रा, प्रज्ञा कुमारी, प्रतिज्ञा साक्य और इनका पूरा परिवार, वीरपुर, बिलसड़, अलीगंज एटा से, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और उनके सभी साथी, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बेमरा देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा, नंगलखेड़ा, फगबड़ा, पंजाब से हैं और आप हैं मां बम्बलेश्वरी रेडियो सौतासंग, शंकर सांकर, सोमनी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू और इनका पूरा साहू परिवार, जिला मुरादाबाद बीजना से रिजवान खान, आरिज, रजा खान, फैजा खान, नाजिया खान और इनके सभी साथी, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी, आप हैं अनारकली बाजार जगराऊ सी, कोलासर, नांदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा, प्रतीक और संकेत बगाड़े हैं और ये कमेंट करते हैं गांव मऊ शरकी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर, ममता यादव, रोनित यादव और बेमी वानी वामिका और आप हैं बाबूदीन मेरठ कैंट से, खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश, लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू, भाविक सिक्का, दातार सिंह शेखावत, संगीता खबर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, आप गोविंदपुरा शिखर राजस्थान से हैं, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके सभी साथी, विजय सिंह महोबिया, कविता, कुंडलेश्वर बाटखंडवा से योगेश गुजराती और हमारे ये विजय सिंह महोबिया व साथी रामगंज खंडवा से हैं, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत और इनका पूरा परिवार है, नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मयरकर, आप हैं बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार, मालवीय दर्द और इनके सभी साथी, और गांधी चौक बाड़मेर से आप हैं बबलेश पवार, डैनी, मनीष पवार, रामदेवराज से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श खलीफा और इनके तमाम हमनवा, ये कमेंट हमें मिला है, आप हैं रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, रिंकी और प्रखो, प्रिया सिंह, रोही, अलका मौसम, संगीता, गरीब भाई और श्री राम राठौर, इनके सभी साथी, एक साथ जो नाम आप भेज रहे हैं उनके अगर मैसेज मिलेंगे तो वो नाम हम नहीं पढ़ेंगे। कस्बा गुन्नौर से आप हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनका सभी साथी, और भोजीपुरा उदयपुर बानो से आप हैं नाजिम अली, वसीम अकरम, अहमद अली, मुनाजिर अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, शबनम जहां अदीबा और जैबानूर आकिब अली, हमारे ये श्रोता मालवा रेडियो सत्संग आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर पाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह और इनका पूरा परिवार है, मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और बीपी गौतम, सरिता गौतम, एटा रोड गंज डंडवारा से हैं, फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश, आकांक्षा करवा और इनका पूरा परिवार, और ये कमेंट मिला है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार का, और रजौनी महोबा बुंदेलखंड से उदयपाहन पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और प्रतीक्षा पाल, तो यहां तक 203 कमेंट शामिल हुए आप दोस्तों के, और आप सबके नाम करते हैं फिल्म हीर रांझा से ये वाला गाना।

बुंदेलखंड से उदयपान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और प्रतीक्षा पाल। तो यहां तक 203 कमेंट शामिल हुए आप दोस्तों के, और आप सबके नाम करते हैं फिल्म हीर रांझा से ये वाला गाना।

जी हाँ दोस्तों, ये है धुआंधार आपकी पसंद, और आपने ट्यून किया है हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 MHz पर आकाशवाणी बरेली। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अब हम वेब्स OTT पर भी उपलब्ध हैं, तो चलिए हमें आप जिस जगह सुनना चाहें वहां सुन सकते हैं। अगला जो गीत जिसकी झलक अभी आपने सुनी, फिल्म का नाम विश्वात्मा। साधना सरगम और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, विजू शाह का म्यूजिक डायरेक्शन, और कमेंट की संख्या हो चुकी है 218। चलिए, तो अभी समय बहुत बाकी है कार्यक्रम में, है ना, तो हम आपको ये विश्वात्मा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। जिन दोस्तों की फरमाइश है वो उन सबके पहले नाम पढ़ेंगे, उसके बाद इस गीत में आप सबको भी साथ लेंगे। जी, ग्राम बमना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से विश्वात्मा फिल्म का यह गाना सुनना चाहा है। राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। अब शामिल करते हैं आप बीके हितेंद्र दास जी, कहाँ से हैं, कुछ और तो लिखा नहीं है। और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी से नाना जी लाम से, मीना नाम से, तेजस जयलाम से, हर्षिता और इनका पूरा लाम से परिवार, जगदीश धाकड़ नामर, रामजू भाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हमें कमेंट किए हैं। कमेंट और भी हैं, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान और इनका पूरा परिवार है। और आप हैं सवाई सालपुरा जिला बारां राजस्थान से, सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हेमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और इनका पूरा परिवार। और गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा जी भी हैं। गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और अभियाना चौधरी और इनका पूरा परिवार। अलकनाथ मंदिर के सामने से आप हैं बरेली किशोरता, बिचलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र देव, ईला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित, राज महावीर कश्यप और इनके सभी साथी रमेश चंद्र सैनी और गौतम राम जी हैं। और ये जो कमेंट मिला है वो राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाहजहांपुर से, मनमोहन राजावत राज और मधु राजावत, रशीर रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीति, ऋषभ राजावत और इनका पूरा राजावत परिवार। हमें कमेंट करते हैं सिटी सेंटर खंडवा से, मनोज भाई सेन, पूनम, दीपक सेन, सौम्या, भव्या सेन, कार्तिक और विनायक सेन। यहां तक हमने 218 कमेंट शामिल कर लिए। सच मानिए, आपके कमेंट कम पड़ रहे हैं, टाइम बहुत बाकी है। फिलहाल विश्वात्मा फिल्म से यह गाना, और जिन दोस्तों के कमेंट शामिल हो चुके हैं वो हमें ये बता सकते हैं, भाई आपने अपना नाम सुना कि नहीं सुना। फिलहाल ये गाना सुनो, और जिन दोस्तों ने अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कमेंट कर दीजिए।

आकाशवाणी बरेली एफएम 14.4 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन एआईआर है और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन रहे हैं। आपकी पसंद की कहानी अगले गाना आपको सुनवा रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। मजरूर सुल्तानपुरी को बोल राहुल देव वर्मन का म्यूजिक डायरेक्शन और इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है वो हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। अब शामिल करते हैं आप सबको और भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी आयत, मोहम्मद इंतजार और करेली जिला बरेली से आप हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर नसरीन और समा अंसारी। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक वब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल और मनु और दिल्ली से हैं मोहम्मद हसन अंसारी और इनके तमाम साथी। एक दोस्त कह रहे हैं कि प्रोग्राम जब लगातार सुन रहे हैं तो नाम क्यों नहीं सुनेंगे जी। कई बार होता है कि हम किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, पता चलता है कि अपना नाम नहीं सुन पाए तो ऐसे में गिले शिकवे भी हो जाते हैं। खैर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी दोस्त हमसे नाराज न हो, सभी शामिल हों, गारंटी है इस बात की। चलिए अब सुनते हैं प्यार का मौसम से ये वाला गाना।

और अब दोस्तों कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं। आखिरी गाना आपके लिए प्ले करेंगे, फिल्म का नाम मोहब्बत की आरजू। जी हाँ, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत आप सबके नाम करते हैं। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान, राज सिंह और इनके तमाम साथी इसी गाने में साथ लेते हैं आपको भी। आप है तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख, अरहम बाबू, इनायत, किश्वर नूर और इनका पूरा परिवार। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म मोहब्बत की आरजू। हम तो दुआ करते हैं आप सबकी पूरी हो। 227 कमेंट के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया।

और अब दोस्तों हमें भी चलना पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारा पूरा प्रयास था कि सभी दोस्त जिनके भी कमेंट मिले हैं सबको शामिल किया जाए, और हम इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन जाने अनजाने में अगर किसी दोस्त का कमेंट शामिल नहीं हो पाया तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, है ना। अगली बार फिर मिलेंगे आपके ढेरों धुआंधार कमेंट के साथ। आप सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली, न्यूज ऑन AIR ऐप FM 100.4 MHz और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। न्यूज ऑन AIR ऐप, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आइए अब सुनते हैं सबरंग।

सबरंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आरंभ में सुनते हैं श्याम बिहारी दास जयश्री देवीदासी के स्वर में ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी बरेली से इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग, गीत संगीत के विविध रंग। सबरंग में आइए सुनते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली। इस समय आप सब रंग सुन रहे हैं। सबरंग में हम आपको गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन आदि सुनवाते हैं। अगली पेशकश भी एल्बम नशा से ही है। आवाज कुमार सानू की है और आप बने रहिए हमारे साथ।

हमें लगता है कि ये ट्रैक प्ले नहीं होगा, तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको सुनवाते हैं वीप्रा की आवाज में एक बेहतरीन ट्रैक।

श्रोताओ, कुमार सानू के गाए इसी गीत के साथ आज का सब रंग का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओ, अभी आप सब रंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।

0: 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: नमस्कार, सलाम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी मेरा नमस्कार, बहुत ज्यादा प्यार।
1: आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
1: संदेश आज का हमारा यही है कि अपनी लाइफ में एंजॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो, अपना ख्याल रखो।
0: ये तो बहुत ही प्यारा संदेश दिया आपने।
1: क्योंकि लाइफ में एक बार मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती।
0: बिल्कुल सही बात है। और ये जिंदगी मतलब एक सपना सी हो जाती है अगर हमारी आंखों से कुछ लोग ओझल हो जाते हैं ना, बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी हमेशा अच्छे से रखनी चाहिए। हाँ जी जी।
1: और आपका बाबू कैसा है? ठीक है,
0: सब कुछ अच्छा है, थैंक यू सो मच।
1: अच्छा ही रहना चाहिए आपका मुन्ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर में भी सब बाल गोपाल अच्छे हैं?
1: बिल्कुल मैम, हमारे घर में सब बहुत अच्छे हैं। आप थैंक यू, की दुआएं हैं आपके घर में सब अच्छे रहें।
0: बिल्कुल ऐसे ही अच्छा रहना चाहिए, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। ओके
1: मैम, हम नाम लेना चाहते हैं दोस्तों के।
0: जी जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, वकील अहमद भाई, सत्यम कुमार भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई।
0: थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। बाय।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और मैं कहती हूँ अगर इफ यू वांट टू सी अ प्रिटी वुमन आप जाइए अपने रूम में और अपना शीशा देखिए, आपको पता चल जाएगा हु इज द प्रिटी वुमन। और फिलहाल हमारे पास कौन है लकी लकी कॉलर जिनका की फोन लगा है हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम। हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम नागेश कुमार बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से, गांव मेरा उमरी है।
0: नागेश
1: जी मैम।
0: जी नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। तो कहिए आप क्या कहना चाहते हैं आज, संदेश क्या देना चाहते हैं?
1: मैम संदेश देना चाहते हैं धान के बारे में कि जुलाई का महीना चल रहा है, धान की रुपाई सबसे ज्यादा हो रही है और महत्वपूर्ण भी है समय, और 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, और पौधा की रुपाई अच्छे से करें, उनको हल्की खेत में नमी बनाए रखें कि उसमें जल भराव रखें और खरपतवार ना होने दें, और समय से ध्यान रखें, उसका निरीक्षण करें और कीट वीट ना होने दें और समय समय पर करते हैं।
0: तो नागेश जी, हम जो थाली में बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं उसमें राइस खाते हैं, तो बेसिकली आपकी मेहनत और आप जैसे कई लोगों की मेहनत होती है उसके पीछे, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है ना। थैंक यू सो मच आपने हमें कॉल किया और आपने एक जानकारी हमसे साझा की। ऑब्वियसली जो लोग हमें सुन रहे होंगे उन्हें सुनकर कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, और अब एंजॉय करिए ये ट्रैक।

चुबल रही है, तो ऑब्वियसली डांस फ्लोर टूट तो नहीं गया ना, खूब अच्छे से आपने थोड़ा सा डांस कर लिया ना। अच्छा, डांसिंग से क्या होता है कि मूड अच्छा होता है, प्लस हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, और हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी हमारी बॉडी का हर अंग मूव करता है डांस में, तो एक अच्छा जरिया है अपने लाइफ स्टाइल में इसको बेशामिल करने का। फिलहाल हमारे पास एक मैसेज आया है। किसका है मैसेज? आया है हमारे रेगुलर लिसनर वारिस अली खान जी का। लिखते हैं, रोली जी आपने सुपर हिट सॉन्ग्स में खूबसूरत नगमे पेश किए, दिल ऐसे नगमों को सुनकर झूम उठा। थैंक यू सो मच। ये लिखते हैं, किसी का हाथ थामना मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिंदगी भर हाथ थामे रहना मोहब्बत है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? ओ माय गॉड, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अब आप ही बता दीजिए। इन्होंने संदेश लिखा है कि अपने पर भरोसा रखना खुद की ताकत बन जाता है, और दूसरे पर भरोसा रखना कमजोरी बन जाता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, और फिर देखिए रास्ते और मंजिल दोनों आसान हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, रास्ते और मंजिल आसान करने हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी बात। बाबू अंसारी का हमारे पास मैसेज आया है, और ये बाराबंकी से लिखते हैं, हमें मैसेज भेजते हैं कि मेरा संदेश ये है कि सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की, क्या बात है। ये बेसिकली सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहिए। आपने इतनी जल्दी में लिखा है बाबू अंसारी जी की आपकी राइटिंग, जो आपने इवन जो कंप्यूटर में आपकी राइटिंग है ना, वो भी समझ में नहीं आ रही है मुझे तो। और हमारे पास मैसेज आया है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का, ये लिखते हैं, सादर चरण स्पर्श भाई आपको भी नमस्कार, और इतनी इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। और ये लिखते हैं पिंकू सोने, टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ, मेरा संदेश है कि जो लोग रोड के किनारे दुकान लगाते हैं, हमें भी खरीदारी उनसे करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास किराए पर दुकान लेने के पैसे नहीं होते, तो कृपया उनके साथ अपनी खरीदारी करें, जिससे कि उनके पास भी उनका परिवार चलाने के लिए।

साथ ही साथ उनका व्यवसाय चलाने के लिए पैसे आ जाएं। बहुत सही बात कही आपने, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, सब लोग एक दूसरे के बारे में मिलकर सोचने लगे तो हमारा समाज कितनी जल्दी तरक्की करेगा। नहीं, हमारे पास तालिब अंसारी का मैसेज आया है और इन्होंने सिर्फ अपनी लोकेशन भेजी कि मैं राजा कटरा बाराबंकी से मैसेज भेज रहा हूँ। ओके, मैसेज नहीं भेजा। हमारे पास नागेश कुमार का मैसेज आया है और स्कूल ये लिखते हैं कि जुलाई का महीना आ गया, स्कूल फिर से खुल गए हैं। सभी बच्चों से हमारा ये कहना है कि नियमित रूप से विद्यालय जाएं, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने टीचर्स का सम्मान करें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। शिक्षा ही वो दीपक है जो जीवन से ज्ञानता का अंधेरा दूर कर सकता है और हमारी जिंदगी को उज्ज्वल भविष्य दे सकता है। बिल्कुल सही बात। और ये लिखते किताबों से दोस्ती, सपनों को नई उड़ान, शिक्षा से ही बनता है जीवन महान। चलो स्कूल ज्ञान का दीप जलाएं, पढ़ लिख कर अपना और देश का नाम बढ़ाएं। कितना अच्छा मैसेज किया है आपने। और स्पेशली जो लोग जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे तो इस समय जुलाई का महीना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वो अनइंटरेस्टेड से होता है कि स्कूल जाना है, फिर से स्कूल जाना, पढ़ाई वही सब। लेकिन यही तो समय है जब जुलाई शुरू हुआ है, अभी से अगर आपने अपने कोर्स की उसकी पकड़ ली, जिस तरह से आपको फटाफट आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और हर दिन के हिसाब से अपनी पढ़ाई, अपना रिविजन वर्क करते रहे तो आपको एग्जाम में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स जो इस समय हमें सुन रहे हैं, ये संदेश उनके लिए था। और लाल एक गाना आप सबके लिए।

और अब मेरे यानी आपके हुस्न दोस्त रोली शुक्ला के जाने का समय है, हमारे स्टूडियो में आ चुकी है चंद्रकला नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर के। तो बस मैं यही कहूंगी, हंसते मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के गीत गाते रहिए इसी खुशियों के प्यार इसी बातों के साथ। रोली शुक्ला से टाटा बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी दिन किसी और समय, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मानसिक मंदित एवं निराश्रित दिव्यांगजन के लिए संचालित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों एवं हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण हेतु प्रति संवासी अनुदान राशि 2000 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत को देखते हुए संवासियों के भरण पोषण की व्यवस्था और सुदृढ़ बनाई जानी आवश्यक है। केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल लखनऊ में रेल अनुसंधान डिजाइन और मानकीकरण संगठन आरडीएसओ के एयर ब्रेक लेबोरेटरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेल कोच और मालगाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम की उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे को और सुरक्षित और आधुनिक बनाने में ऐसे अनुसंधान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ अवसर पर कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी। पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन उसके विकसित भारत जी राम में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित ग्राम सभा भी बनेगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आपको प्यार भरा सलाम। आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई है। समय हो गया है 12:04। ये वक्त है प्रोग्राम शत्रुपा का, और प्रोग्राम शत्रुपा का एक खूबसूरत सेगमेंट स्वयं सिद्धा हर शुक्रवार आपके रेडियो सेट पर आपके बीच प्रस्तुत होता है। प्रोग्राम स्वयं सिद्धा जो कि कामकाजी महिलाओं पर आधारित है, और आज हम बात करते हैं विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की भी। आज विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है, मनाया जाता है हर साल 3 जुलाई को। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है, लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग्स के दुष्प्रभाव जितने भी हैं उसके प्रति जागरूक करना है। कपड़े, जूट और अन्य जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ऑप्शंस हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान की शुरुआत बहुत पहले से चल रही है, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ चल रही है, एक जन जागरूकता अभियान है। ये दुनिया भर में ये अभियान फैला हुआ है, और आज का ये दिन हमको याद दिलाता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। अच्छा, तो आज जब स्वयं सिद्धा है और ये दिन भी खास है, तो महिलाओं से जुड़ी हुई कैसे हो सकती है ये बात, कैसे हो सकती है ये बात पर्यावरण से जुड़ी हुई, जिसमें महिलाएं अपना योगदान देती हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, और खासकर उस दिन जब प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि प्लास्टिक के जो थैले झोले हम इस्तेमाल करते हैं उसके बदले पर्यावरण के अनुकूल जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने का दिन और उसके प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है। करेंगे इसी बारे में बात। आप ट्यून इन करके रखिए कि किस तरह हम सभी महिलाएं इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में और इस खास दिन में अपना योगदान दे रही हैं। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर मेरे आते ही आपके लिए, और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, एक खास मेहमान भी जुड़ेंगी हमारे साथ इस दिन पर, और पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने किया है बहुत बहुत अच्छा और सराहनीय योगदान। ट्यून इन करके रखिए, ये सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। बारह बजकर के ठीक 13 मिनट हुए हैं और प्रोग्राम स्वयं सिद्धा आज हम शुरू कर चुके हैं और उसी बारे में आज बात भी कर रहे हैं। स्वयं सिद्धा में हम कामकाजी महिलाओं के बारे में बात करते हैं और जो आज खास दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। प्रकृति को स्वच्छ रखने में, सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। घर की खरीदारी से लेकर परिवार की जीवन शैली तय करने तक महिलाएं अनेक ऐसे निर्णय लेती हैं जो सीधे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चाहे प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े या जूट के थैले अपनाना हो, कचरे को कम करना हो या पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना हो, गीला या सूखा कचरा अलग अलग करना हो, महिलाएं बदलाव की एक सशक्त शक्ति बनकर सामने आई हैं। आज पर्यावरण संरक्षण केवल प्लास्टिक बैग्स तक ही लिमिटेड नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों में भी पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने ऑप्शंस हैं उनकी चर्चा हो रही है। रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं और बहुत सारे टिकाऊ ऑप्शंस न केवल

हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं, बल्कि प्लास्टिक कचरे को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कदम मिलकर पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। अब आज इसी से जुड़ी हुई हम बात करने वाले हैं। कामकाजी महिलाएं जब काम करती हैं, आगे जाती हैं, अपने सपनों को अलग से उड़ान दी है, अपनी एक नई पहचान बनाई है, पर्यावरण में भी अपना योगदान दे रही हैं। और इसी सिलसिले में आज जो हमने प्रोग्राम शत्रुपा में स्वयं सिद्धा में जिन मेहमान को बुलाया है वो पेशे से शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और पर्यावरण के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि आप खुद अपनी जगह से उठकर उनके लिए क्लैप करने लगेंगे। उन्हें बुलाते हैं लेकिन एक खूबसूरत सा ब्रेक, उसे ब्रेक नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे उनसे मिलने के लिए एक खूबसूरत सा गाना सुन ले हम और उसके बाद वापस आएं और वापस आकर उनसे बात करते हैं। ये खूबसूरत सी हवाएं, ताज़ी हवाएं और जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं, जीवित हैं, आप हम सब के योगदान से, हमारी अवेयरनेस से, जागरूकता से, छोटे छोटे कदमों से ही हम आज अच्छी सांस ले पा रहे हैं। और अच्छा प्रदूषण मुक्त देश बनाना है, पर्यावरण बनाना है, उसके लिए आपके हम सभी के कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, तुरंत वापस आते हैं मेहमान को लेकर आपके रेडियो सेट पर।

0: आज प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायी शख्सियत से जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को केवल एक विचार नहीं बल्कि एक व्यवहार बनाया है। पेशे से एक प्रोफेसर हैं, लेकिन सोच से एक जागरूक पर्यावरण प्रहरी भी हैं। अपने विभाग के विद्यार्थियों को केवल पढ़ाती नहीं है बल्कि उनको प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती हैं। उनके यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रोजेक्ट काम के लिए वो कपड़े के थैले और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग्स बनाना कंपलसरी बोलती हैं, ताकि युवा पीढ़ी प्लास्टिक के जो बुरे प्रभाव हैं उनको समझे और उसके विकल्प को अपनाने की दिशा में आगे बढ़े। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। इसके अवसर पर हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर श्वेता तिवारी जी, जो कि एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग से हैं। प्रोफेसर तिवारी सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं करती हैं, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारती हैं। उनकी प्रेरणा से कॉलेज की छात्राएं पुराने और अनुपयोगी कपड़ों से कपड़े के थैले बनाती हैं, जिससे प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल हो रही है। तो आइए विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के इस विशेष अवसर पर हम जानते हैं कि शिक्षा, जागरूकता और संकल्प के माध्यम से किस तरह एक महिला समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रख सकती है। आखिर बदलाव की शुरुआत कहीं दूर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर, अपनी आदतों और अपनी सोच से होती है। प्रोफेसर श्वेता तिवारी जी, प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार आप सभी का, और स्वयं सिद्धा के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने जो मुहिम शुरू की थी वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण को संरक्षण करने का। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है।
0: बहुत शुक्रिया मैम। मैम, ये पहला सवाल आपसे हम करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप अपनी छात्राओं से कपड़े के थैले बनवाने जैसी अनोखी पहल कर रही हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस सोच की शुरुआत कैसे हुई और आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली?
1: मैं क्योंकि लगभग 25 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, छोटे मोटे काम तो मैं करती रहती थी, लेकिन हमेशा वो होता था कि बच्चे उसको इग्नोर करने की कोशिश करते या लड़कियां उसको समझ नहीं पाती थी। एक बार ऐसे ही 2015 की बात है, मैं क्लास ले रही थी तो मैंने बच्चों से ऐसे ही मजाक में कह दिया कि जिस तरह से प्लास्टिक का यूज बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है एक दिन हम लोग प्लास्टिक के ऊपर ही बैठ के क्लास लेनी पड़ेगी। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी समीक्षा, वो बड़ी आश्चर्य से बोली, मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा देखो, सरकार अपने प्रयास करती है लेकिन हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस प्रयास को, इस मुहिम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और मेरा अपना प्रयास ये भी रहता था कि बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़कर बताने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में 5 ऋणों की बात की गई है, जिसमें 5वां ऋण है भूत यज्ञ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। और ये भी कहा गया कि माता भूमि पुतो अहम पृथ्वी, यानी कि माता हमारी संतान है और हम उसके माता पृथ्वी हमारी माता है और हम उनकी संतान है। ये बात जब मैंने बच्चों से कही तो बच्चों ने कहा, मैम क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण हमारा संरक्षित हो? और मेरा एक काम और भी था, क्योंकि अक्सर लड़कियों को बहुत शक्तिहीन माना जाता है, लड़कियां अपने में ये मान लेती कि हमारे

0: कन्याओं को घर में नहीं माना जाता। तो इसी बात को ध्यान में रखकर उस बच्ची ने जो मुझसे कहा, मैंने कहा देखो बच्चा, हम ये प्रयास करते हैं कि हम पॉलिथीन का यूज ना करें। फिर कुछ साल तो इस बात को चढ़ते चढ़ते हो गया, लेकिन 2018 के बाद जब कोविड आने लगा, मैंने कहा मैं ये प्रयास तो कर रही हूँ कि बच्चों को पॉलिथीन का प्रयोग करने के लिए मना तो कर रही हूँ, लेकिन मना करने के साथ हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन उनके सामने रखें जिससे वो लोगों को जब मना करें और साथ में उसका एक प्रयोग के तौर पर उस थैले को देंगी, तब तो लोग उसकी बात को मानेंगे। क्योंकि इधर 3-4 सालों में जब मैं ये प्रयास कर रही थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं आ रहे थे, मतलब लड़कियां समझ रही थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो मेरी बात पहुंच रही थी 3-4 सालों में, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वो धरातल पे नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग कपड़े का थैला बनाएंगे, उसमें कुछ दिक्कतें भी आई, कुछ बच्चों ने बिल्कुल नया बैग लाके, हमने कहा ये नहीं, क्योंकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ये कहा गया है जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है उस पे किया जाए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं जिस कॉलेज से हूँ वहां पर अधिकतर ग्रामीण अंचलों की बेटियां आती हैं, तो उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो मैंने कहा तुम ये काम करो कि जो तुम्हारे घरों में कपड़े होते हैं, पापा के पैंट होते हैं, मम्मी की साड़ी, उनसे थैला बना के लाओ। तब आपको ये बताना चाहूंगी उसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन कोविड के दौरान भी, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बच्चों से जुड़ते थे, उस समय बच्चों ने ये प्रयास करना शुरू किया। शुरू में मैंने उनको बाहर के लोगों से कहा कि आप बाहर के लोगों को दीजिए, फिर इधर 2021-22 में मैंने ये कोशिश की कि पहले मैं उस बच्ची को जागरूक करूं, तो मैंने कहा कि आप अपने घर में जितने 5 सदस्य हैं तो 5 थैले आप बनाकर कॉलेज लाएंगी, और कॉलेज लाने के साथ, क्योंकि बच्चे कई बार ये गड़बड़ी करते हैं कि वो दे रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो मैंने उनको एक नोटबुक भी दी और 30 दिन का ये प्रोजेक्ट दिया कि आप हर दिन जिसको भी ये थैला देंगे उसका नाम फोन नंबर नोट करके मेरे पास लाएंगे, साथ में आप उनसे रोज रोज पूछेंगे, क्योंकि एक दिन आपने बात की तो बात नहीं बनती है, किसी को भी जागृत करने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है। और मैं अपनी इस मुहिम से इसलिए बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि हमारे क्लास में एक विधि नाम की लड़की थी, उसने ये कहा कि मैम आज से हमारे यहाँ पॉलिथीन आना बंद हो गया, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात हुई। और फिर मैंने सबसे पूछा तो लगभग 50% बच्चों ने कहा कि मैम अब हमारे घर में पॉलिथीन नहीं आता। क्या तब बात मुझे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि मैं क्यों ना इसको, क्योंकि एनईपी में एक प्रोजेक्ट पर्यावरण जागरूकता से बनाया गया था, तो मैंने कहा कि अब मैं इसको नंबर से अगर जोड़ दूंगी तो सब बच्चे इसको कंपल्सरी करेंगे। तो अब मान के चलिए आप हर साल मेरे पास लगभग 100 से 150-200 बच्चे होते हैं जिनको मैं 5 लोगों को टका टारगेट देती हूँ और वो 5 लोगों को जागरूक करते हैं। इस तरह से काफी लोगों ने पॉलिथीन का यूज करना बंद कर दिया।
1: क्या बात है मैम, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मन से, पूरे एफर्ट से पूरा प्रयास किया कि बच्चियां इस बात को समझें। दूसरा क्वेश्चन हमसे आपके लिए हमारे पास ये है कि आज के समय में प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है, आपके अनुसार यदि हर छात्रा अपने स्तर पर एक छोटा सा कदम उठाए तो समाज और पर्यावरण में कितना बदलाव लाया जा सकता है, कुछ संक्षेप में आप अगर हमें ये बता सके तो, हर छात्रा अगर ये प्रयास करे तो।
0: नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से गाढ़ा बढ़ता है। मैं आपको जो बता रही हूँ, इस प्रोजेक्ट को करने में मुझे कई परेशानी है, क्योंकि एक बच्चे ने कहा कि मैम मेरे एक करने से क्या होगा। मैंने कहा एक का मतलब है तुम्हारे घर में 5 बच्चे हैं, 5 लोग हैं, और जब तुम शादी करके जाओगी तो उस घर को, क्योंकि लड़कियां हमारे लिए एक शक्ति के तौर पर होती हैं, वो 2 घरों को संभालती हैं, और अगर उनको उनकी शक्ति का एहसास करा दिया जाए तो वो काफी हद तक समाज को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर सकती हैं। तो ये प्रयास, मुझे ये मानना है कि एक एक चीज, जब मेरे कॉलेज में भी कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप, कई बार बच्चे कहते हैं वो झोले वाला असाइनमेंट, कई टीचर के हंसती भी है मेरे ऊपर कि आपने इतने झोले इकट्ठा कर लिए। फिर मैंने ये सोचा कि ये बच्चियां अब छोटे स्तर पर, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शन भी है, उन बच्चों को वो ले जाकर उन बच्चों को जागरूक कर रही हैं, तो नीचे यानी समाज की नींव अगर जागरूक हो जाएगी तो समाज का शेप अपने आप बदलने की ओर अग्रसर हो जाएगा।

क्या बात है। और नींव अगर अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो बेशक जो हमारा समाज है वो अग्रसर होना ही है, विकसित होने की ओर आगे बढ़ना ही है। समय हो गया है एक खूबसूरत से ब्रेक का, और वो जो खूबसूरत ब्रेक है वो है ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनने का। तुरंत वापस आते हैं और प्रोफेसर तिवारी से दो सवाल और हमें बहुत जरूरी पूछने हैं, जो कि आप हम सभी के लिए प्रेरणा बनती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: बेशक आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो लखनऊ। 12:35 हो गए हैं। आप इस समय सुन रहे हैं स्वयं सिद्धा और एक खास मेहमान प्रोफेसर श्वेता तिवारी हमारे साथ हैं और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर तिवारी, आपका फिर से स्वागत है और साथ में आपके लिए एक सवाल है कि जब आपकी छात्राएं पुराने या अनुपयोगी जो कपड़े हैं उससे थैले बनाती हैं, तो उन्हें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कौन कौन से जीवन मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियां सीखने को मिलती हैं?
5: जी, सबसे पहला तो ये कि वो संसाधनों की बचत करती हैं, उनका सम्मान करना सीखती हैं कि कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं
4: जी।
5: और अपनी आत्मनिर्भरता भी आती है, क्योंकि अगर बच्चे थैला बना रहे हैं पहले की कॉस्ट होती है तो उसको ऐसे प्रोफेशन भी इस्तेमाल कर सकती हैं
4: जी।
5: और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर आत्मविश्वास आता है
4: जी।
5: और समाज के प्रति कर्तव्य उनके क्या क्या है उसकी अनुभूति होती है कि हम भी एक बड़ी चीज है, हम समाज के लिए कुछ बड़ा काम कर रहे हैं।
4: बिल्कुल, और साथ में आप जो उनको खास पॉइंट बताती हैं कि मतलब एक बहुत जो सबसे जरूरी पहलू आपको लगता हो थैले बनाने के साथ साथ आप उनको जो देती हो, कई बार बच्चों को आपने बताया कि डराना भी पड़ता है, दबाव भी डालना पड़ता है, कई बार बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, तो उन खास चीज जिससे आप उनको मोटिवेट करते हैं, छोटी सी चीज की हाँ थैला तो बनाओ लेकिन इस चीज को ध्यान में रखो।
5: मैं बस उनसे ये कहती हूँ कि तुम एक समाज की जिम्मेदार नागरिक हो, अक्सर तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन अगर ये पृथ्वी इस वजह से है क्योंकि हम उसको संरक्षित करें, तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाओगी इस पर्यावरण को संरक्षण करने में, तो वो खुश होती है और सोचती कि हाँ हम भी कोई बड़ा काम कर रहे हैं
4: जी।
5: तो कुछ तो 70% तो बहुत मनोयोग से करती हैं, जो 30% बचती हैं वो उनको देखा देखी करने को तैयार हो जाती हैं और सोचती हाँ हमारी अपनी अहमियत जो मैम हमको समझा रही हैं उसे हमें समझना होगा और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर हमें समाज में परिवर्तन लाना होगा।
4: लेकिन मैम 70% अगर लड़कियां आपने मनोयोग से करने काम करने लायक इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लायक आपने बना दी, तो बाकी 30% अगर उनको देखकर काम आगे कर रही हैं, किसी तरह कर ही रही हैं, तो वो भी एक बड़ा परिवर्तन है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर, लेकिन जो अगला जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हमारे श्रोताओं को, ये जो प्रोग्राम है हमारा स्वयं सिद्धा ये महिलाओं के लिए ओरिएंटेड है, तो हमारी श्रोताओं को विशेष रूप से युवा बेटियों के लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके?
5: जी बिल्कुल, मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ मैं अपनी जो पर्यावरण संरक्षण की मुहिम जो मैं लगभग 5-7 सालों से चला रही हूँ
4: जी,
5: उस प्रोग्राम के माध्यम से और आगे बढ़े
4: जी,
5: क्योंकि स्त्री को हमेशा स्वयं सिद्धा आपके प्रोग्राम का नाम है वो एक शक्ति के तौर पर है
4: जी।
5: और उसके छोटे छोटे काम समाज को बदल सकते हैं, समाज में बहुत बड़ी जागरूकता ला सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों में एक असीम ऊर्जा छिपी रहती है और एक बहुत बड़ी बात है अगर वो कुछ करने की ठान लेती हैं तो करके ही रहती हैं
4: जी।
5: तो मैं अपनी प्यारी बेटियों को ये कहना चाहूंगी, जो प्लास्टिक का थैला एक मान के चलिए कि वो आपके लिए जहर की तरह है, और आप लोग अपने साथ एक कपड़े का थैला रखिए, अपने घर के सभी सदस्यों को कपड़े का थैला दीजिए, ताकि हम छोटे छोटे प्रयासों से समाज में एक बड़ा बदलाव ला सके और गर्व से कह सके कि हम भी समाज को बदलने में उसके सहायक बन पाए।
4: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम और बहुत बहुत बधाई हो आपको, और साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे, एनर्जी दे, स्वास्थ्य आपको अच्छा रखे, ताकि आप ऐसे ही पर्यावरण के लिए काम करती जाएं, आगे बढ़ती जाएं।

0: धन्यवाद आपका,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और ये डॉक्टर प्रोफेसर श्वेता तिवारी मैम से आप बातचीत सुन रहे थे। हमने आपसे कहा था कि एक खास विशेष मेहमान हमारे साथ रहेंगी और वो यही मेहमान थी। और देखिए आपने बातचीत सुनी और एक छोटे से प्रयास से असाइनमेंट के रूप में, जो असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है 25 नंबर का, उस असाइनमेंट के रूप में बच्चों से कहती हैं कि प्लास्टिक का थैला लाना उस बिल्कुल ही गुनाह है। मतलब आप उस असाइनमेंट के साथ एक घर के कपड़े का बना हुआ थैला अपने हाथों से सिलकर बनाकर ले आइए। और उस वेस्ट मटेरियल, जैसे उन्होंने आपने बातचीत में सुना, उस वेस्ट मटेरियल से बना हुआ जो प्लास्टिक, सॉरी माफ कीजिएगा, कपड़े का थैला होगा, उसमें अगर अच्छा आप बना करके लाए तो आपको नंबर जो है पूरे मिलेंगे। जो बच्चा अगर कपड़े का थैला वेस्ट मटेरियल से बनाकर नहीं लाया उसको नंबर कम मिलेंगे। खैर हालांकि ज़्यादातर बच्चों में तो उन्होंने मॉरल्स वैल्यू एकदम डेवलप कर लिए हैं। बच्चे जो हैं खुशी खुशी इस चेंज को अपनाते हैं और बात करते हैं। लेकिन जो अगली बात हम करेंगे वो भी पर्यावरण से जुड़ी होगी और महिलाओं से जुड़ी होगी। लेकिन ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर

12:47 हुए हैं और बात हो रही है प्लास्टिक बैग्स फ्री डे की। और प्लास्टिक बैग्स फ्री डे का मतलब ये है कि हम अपने हाथों में जो सुशोभित करते हैं थैला, वो प्लास्टिक का ना हो करके कपड़े का हो, जूट का हो। और अब तो मार्केट में बहुत सारी धूम है, धूम इस बात की है कि जूट के बहुत स्टाइलिश बैग्स आते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ट्रेंडी बैग्स चल रहे हैं। और मार्केट आपको हमेशा अच्छी चीज़ें देता है जब आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं, अवेयर होते हैं। और हमारी बातचीत से भी आपको पता चल गया होगा कि प्लास्टिक

जो है कितना टॉक्सिक है हमारे एनवायरमेंट के लिए, कि हर जगह इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर प्लास्टिक के बारे में आपको बताऊं कि कितना ज़्यादा नुकसानदायक है ये हमारे, तो पॉलीएथिलीन से ये प्लास्टिक बनती हैं बैग्स, SDPE और LDPE टाइप के, मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन टाइप से ये बनते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के केमिकल से इनको बनाते हैं। अब सीधे सीधे मैं आपको ये बताऊं कि जैविक रूप से ये प्लास्टिक कभी भी नहीं गलता है। ये जो थैले हैं आप अगर फेंक देते हैं या कहीं सड़क किनारे डाल देते हैं या किसी ज़मीन में या कहीं पानी में डाल देते हैं, तो कई सालों तक भी ये प्लास्टिकल गलता नहीं है। और सैकड़ों सालों तक भी मिट्टी में दबे रहने पर भी, दशकों से लेके कई सालों सैकड़ों तक, ये धीरे धीरे टुकड़ों में हो जाता है लेकिन गलता नहीं है, पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। मिट्टी की जो संरचना है वो इफेक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है, पानी का रिसाव, जड़ों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक अगर आप जला देते हैं इकट्ठा करके, तो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत ही सूक्ष्म कण, जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, वो निकलती हैं और सीधे आपके लंग्स को इफेक्ट करती हैं। कई लोगों को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक बहुत ही खतरनाक हेल्थ इश्यूज़ ये पैदा कर देते हैं। अब आप सोचिए, प्लास्टिक का थैला आपको इस्तेमाल करना है या फिर आपको इस्तेमाल करना है वो खूबसूरत सा ट्रेंडी और क्लासी लगने वाला जूट का बैग, या फिर एक बार धूल और गंदा लग जाने के बाद दोबारा सर्फ में डुबोकर धोकर चमचमाने वाला कपड़े वाला झोला। सोचिए इस बारे में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: और अगर प्लास्टिक के थैलों की बात करते जाएं, तो भाई कई बार आंखों देखा हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, देखा

अगर आप ऐसा करते भी हैं तो इस बारे में बहुत गंभीरता से आपको सोचने की ज़रूरत है। और गंभीरता से इसीलिए सोचने की ज़रूरत है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने ही शहर की गोमती नदी की। और जहाँ जहाँ से आप सुन रहे हैं वहाँ वहाँ नदियाँ होंगी और धार्मिक मान्यताएँ और बहुत सारी जो आपकी आस्था है उसके हिसाब से आप कुछ तो नदियों में अर्पित करती हैं, जैसे फूल, चावल, दाल, कुछ तो। लेकिन वो अर्पित करने के बाद साथ ही साथ आप थैला भी ऊपर से छोड़ देती हैं। और थैला क्या होता है? प्लास्टिक का। और थैला, ये जो प्लास्टिक का थैला आप नदियों में छोड़ती हैं, नदियों का स्वास्थ्य तो खराब होता है, साथ ही बेचारे उसमें रहने वाले जलीय जीव जितने होते हैं वो कई बार इसे खाना समझ के खा लेते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और साथ ही सबसे बड़ा कारण नदियों के डाइवर्ट होने का, उनका फ्लो अवरुद्ध होता है कई बार। अब सोचिए, यही अगर आपका अपना कपड़े का बनाया हुआ थैला होता या खूबसूरत ट्रेंडी सा जूट बैग होता, उसमें से आप जो भी अर्पित करती, जिनको मछलियां और जली जंतु खा सकते वो अर्पित कर देती और थैला आपको फेंकना नहीं घर ले जाना होता, तो अच्छा होता ना। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप और हम सब अवेयर हैं, जागरूक हैं और अपने पर्यावरण के लिए कदम उठाते रहते हैं और हमेशा अवेयर रहेंगे, और ट्रेंडी जूट बैग्स के साथ मैं आपको कहूंगी कि आप किसी भी दुकान में जाइए, जूट बैग्स की आपको वैरायटी मिलेगी। और सच में प्लास्टिक की पन्नी से तो बहुत ही क्लासी लगते हैं जूट बैग्स। और इसी बात के साथ मैं आपसे कहूंगी कि यूं ही आत्मविश्वास के साथ, एक चेहरे पर अलग नूर के साथ, कॉन्फिडेंस जो आपका है वो दिखे आपके चेहरे पर, और पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आप अवेयर हैं, अच्छे काम करती हैं और अलर्ट रहती हैं। और साथ ही बड़ा टैग आपको आज मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कि आप पर्यावरण के लिए छोटे छोटे कदम उठाती हैं। और अगर आप प्लास्टिक की जगह कपड़े का या जूट का थैला या बैग इस्तेमाल करती हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका कदम बहुत सराहनीय है। इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ मैं जाती हूँ प्रोग्राम स्वयं सिद्धा से, आज वाइंड अप करती हूँ खूबसूरत से गाने के साथ, कि आप तितली बनकर मस्त गगन में उड़ते रहिए, मस्त अपने मन को विचरित करते रहिए इधर से उधर, और बस न्यूज ब्रेक के उस पार फिर आपका अपना प्रोग्राम होठों पे तेरी बात होगा। ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, बाय, टेक केयर, कीप्स

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। न्यूज ऑन EIR है, वेब्स OTT और FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अनुरोध गीत में। हम हाजिर हो चुके हैं आपके ढेर सारे अनुरोध भरे पत्रों के साथ। आप भी अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो, मगर इतना ज्यादा ना कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे। हाँ हाँ, अगर आप ईयरफोन के थ्रू सुन रहे तो उसका भी वॉल्यूम लेवल रखिए, क्योंकि ज्यादा तेज आवाज में सुनना आपकी श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए देर नहीं करते हैं, आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर किसी भी अनुरोध गीत में आप अपने पत्र भेजना चाहते हैं तो पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। इसी पते पर हमें ढेर सारे पत्र मिले हैं, मिलेंगे और मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद भी है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला वाला गाना। सुन सुन।

जी हाँ बिल्कुल, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि शुरुआत हुई है प्रोग्राम की। तो पहला गाना सावन भादो फिल्म से है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश सनेजा, बिमला नेजा और इनका पूरा परिवार, शामिल करते हैं आप सबको। पीतम ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान बबलू, विकास सक्सेना, करमवीर गोडवाल, प्रवीण रावल, अनिल नागर, सागर बख्शी और भरत यादव इसी गाने में साथ रहते हैं। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से

ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुस्तावा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई और इनके सभी साथी, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनका पूरा कटनकर परिवार। दोस्तों, पूरे एक घंटे के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ है सुपर फास्ट एंटरटेनमेंट। आपके अनुरोध भरे गाने हम आपको सुनवाएंगे, तो आप आकाशवाणी बरेली छोड़कर और कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिए सुरीले गीत और संगीत की शानदार जानदार परंपरा।

0: जी हाँ, आकाशवाणी बरेली से धुआंधार अनुरोध गीत, आपके अनुरोध गीत हम प्ले कर रहे हैं।
1: मेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तेरा शीशे का सामान।

0: महल बनवाऊंगा।
1: सच कहा है, किसी ने के वादे भी किए जाते हैं और वादे इरादे क्या होते हैं, क्या हश्र होता है उनका सब जानते हैं। खैर इस समय आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप हमें हमारी रेगुलर फ्रिक्वेंसी 100.4 FM पर भी सुन रहे हैं और इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं वेब OTT प्लेटफॉर्म पर भी। आपने इंस्टॉल किया अपने फोन में? नहीं किया है तो कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए वेव्स OTT और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ और फिर उसके बाद रेडियो और ढेर सारा कंटेंट है आपके लिए, मनोरंजन का पूरा साधन एक ही प्लेटफॉर्म पर, वेव्स OTT। जी हाँ, तो अब जो गाना है चाचा भतीजा फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, इस गीत को सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आसिफ और इनके तमाम साथी, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रेंकी, कपिल वेदराम, कैलाश सुनील, खुशबू मौर्य, अरोही और स्वाति मौर्य। और ये जो पत्र हमें मिला है वो मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर बरेली से वही फजलुद्दीन भाई, अबरार अफजाल, मल्लू शबीना, रामू प्रजापति और इनके सभी साथी हैं। धर्मपुर बरेली से फहीम खान सिद्दीकी, जमजम, फातिमा, अज्जू, साबिया और इनका पूरा परिवार है। और जबलपुर मध्य प्रदेश से आपको शामिल करते हैं, आप हैं माधव नामदेव, सीमा नामदेव, इनका पूरा नामदेव परिवार। तो लीजिए सुनिए फिल्म चाचा भतीजा से ये वाला ट्रैक।

वाह क्या बात है, आप इस समय अनुरोध गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है CID 909। गीत को गाया है महेंद्र कपूर, कमल बारोत, आशा भोसले ने, शेवन रिजवी के बोल है, ओपी नैयर का म्यूजिक डायरेक्शन, और जिन्होंने पसंद किया है वो आप सब हैं। कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांचल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। शामिल करते हैं मौलाल बायन शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिटू भैया और साजदारानी हिना कौसर। हमारे ये जो साथी हैं वो हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना देवी, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, रीता, विनोद गौरी और इनका पूरा परिवार, छावनी अशरफ खान होली चौक बरेली से। तो लीजिए सुनिए फिल्म CID 909 से ये ट्रैक।

अरे रोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम मैं इंतकाम लूंगा। हाँ, मैं इंतकाम लूंगा ये फिल्म का नाम है। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार साहब ने, मगर जिनको पसंद आया है वो आप सब हैं, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आप वैष्णव कॉलोनी सन्नावद से हैं। कुछ और दोस्तों को भी साथ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पत्र हमारे सामने हैं। आप हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोना मदीबा और दानिश अंसारी, सहारनपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती हैं। और ये जो पत्र हमें मिला है वो लुधियाना पंजाब से अमरजीत कौर, परमजीत कौर, महासमुंद से वली उल्ला, परवीन आसमा, बुलंदशहर से बदरुल वली, फरजू वली और इनके सभी साथी हैं। वाह वाह, ये तो नाम गलत लिख रहे हैं हमें। हाँ, हमें पता चल रहा है ये पत्र ऐसे ही बनाया गया है। खैर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर हैं। तो चलिए आप सबके नाम करते हैं फिल्म मैं इंतकाम लूंगा से ये वाला ट्रैक।

आपके साथ है आकाशवाणी बरेली न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के साथ। इसके अलावा हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको अगला गाना सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मर्यादा। लता मंगेशकर और

ये है सुरीले गीत और संगीत की गली और आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं। ये जो गाना अभी आपने सुनना शुरू किया है, इसे पसंद किया है बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम, आदिल अलवी, आहिल अलवी और इनका पूरा अलवी परिवार शामिल करते हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और इनके सभी साथी। और ये जो पत्र हमें मिला है वो हमारे कौन साथी हैं? आप हैं पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम ये गाना।

अनुरोध गीत आप आकाशवाणी पर रिलीज से सुन रहे हैं FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप OTT वेब्स पर। और अब जो अगला गाना आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गंगा की कसम और किशोर कुमार साहब की आवाज है इस गीत में। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। और जिन दोस्तों ने पसंद किया है वो हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति और इनके तमाम तमाम तमाम हमनवा हैं। साथ में कुछ और दोस्तों को भी हम शामिल कर लेते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा जी हैं और ये हैं सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार नसीम बेग।

दोस्तों आकाशवाणी बरेली से एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट हमारे पेज पर उपलब्ध है, इस समय पिन की गई पोस्ट है, तो वहां आप बता सकते हैं गाने कैसे लग रहे हैं, कार्यक्रम कैसा लग रहा है, या जो भी कार्यक्रम आपने पूरे हफ्ते सुने हैं उनके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगला गीत अगला ट्रैक आप सबके लिए प्ले करते हैं।

दोस्तों, इस समय आप अनहोनी फिल्म का ये गीत सुन रहे हैं लता जी की आवाज में। और कई बार मन के भावों को समझने वाला अगर कोई ना हो तो फिर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन परिस्थिति कोई भी हो, गीतों में ढल जाती हैं। और गीत आपके अनुरोध पर हम आपके लिए प्ले करते हैं। अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT और FM 100.4 MHz पर। कहां जाओगे, जहां जाओगे आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों को पाओगे। तो सुनिए, सुनाइए, बताइए, हाँ, ऐसा गीत और संगीत और कहाँ। अगला गाना ये जो अनहोनी फिल्म से है, इसके बारे में जिन दोस्तों के ख्याल मिले हैं हमें, यानी कि तमन्ना की है, अनुरोध किया है सुनने के लिए, तो वो सब कौन कौन हैं? आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी आयत, मोहम्मद इंतजार और उनके सभी साथी। ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम, माहिनूर, नसरीन, समा अंसारी भी हैं। और आप हैं अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और इनका पूरा परिवार। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली से वो कार्यक्रम जिसका नाम है अनुरोध गीत।

प्यार तो हर शय से होता है। खैर, आप इस समय अनुरोध गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आज का महात्मा फिल्म से ये गीत है, किशोर कुमार साहब और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को जिन्होंने अपने दिल के करीब बसाया हुआ है वो कौन कौन है उनके नाम पढ़ने वाले हैं हम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप हैं ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से शाक अहमद अंसारी, अफजार अहमद अंसारी, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिश और इनके तमाम हमनवा। आप हैं ममना, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और हमें आपने भी पत्र भेजा है, रजौनी, महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये साथी हैं एटा रोड गंज डंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम और इनके तमाम हम नवा। और कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा है। और आपका भी ये पत्र हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। आप सबके नाम आज का महात्मा फिल्म से ये ट्रैक।

गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। आनंद लेते रहिए सुरीले गीत और संगीत का, ये अनुरोध गीत का, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी बरेली से।

आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत का आनंद आप ले रहे हैं न्यूज ऑन यायर ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स के माध्यम से भी और हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM पर भी। माँ फिल्म से ये गीत है, पूर्णिमा की आवाज है। जी हाँ, बरसात भी आ गई है, सावन भी तैयार है। चलिए तो ये गीत भी आप सबके लिए। आप हैं पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव यादव। शामिल करते हैं आपको महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक और संकेत बगाड़े। अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा।

आपके साथ आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। गद्दार फिल्म से ये गाना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। बरसात का आनंद लीजिए अगर आपकी तरफ हो रही है, और उन बारिश की बूंदों के साथ सुनिए सुरीले गीत और संगीत की धुआंधार झड़ी। अनुरोध गीत में अगला गाना गद्दार फिल्म से आप सबके नाम विजय सुरलकर, रतन माला और इनका पूरा परिवार मोताला महाराष्ट्र से। आप हैं अनिल कुमार घोटगे, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री यज्ञेश घोटगे, छत्रपति संभाजी नगर, अम्भई सिल्लोड से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन और इनका पूरा परिवार।

ऐसे तो दिल तोड़ के नहीं जाने वाले हम। वैसे आपको बता दें कि आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम का ये आखिरी गाना है। फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी, ना ना ना, फिल्म का नाम है कब तक चुप रहूंगी। अलका याग्निक की आवाज है, अनजान के बोल, बप्पी लहरी का म्यूजिक डायरेक्शन। और जाने की बात करने के लिए इस गीत को पसंद किया है जिन्होंने, वो है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका यादव, यूनिस खान और सोफिया खान। शामिल करते हैं, आप हैं बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से, विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और इनके तमाम साथी गंज टंडवारा से हैं। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, शोएब खान और इनका पूरा परिवार। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, सुहास गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा भी यही गीत सुनना चाहते हैं और अन्नाम आपके कर रहे हैं। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं आपके अनुरोध गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत, आप सबके नाम।

अब जिन्हें जाना होता है, चाहे आंधी हो, बरसात हो, कोई भी तूफान क्यों ना हो, जाने वाले जाते ही है। खैर, हमें भी जाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर बताइएगा, है ना। आज का ये सफर यहां तक आपने तय किया अपने रेडियो हम सफर गजेंद्र के साथ। आगे की बागडोर संभालेंगे शीशपाल राजपूत जी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कीजिए स्वीकार, सब प्रेम नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत गजेंद्र सिंह यादव जी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंग। श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बीना के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आपने जो लोकगीत सुना उसका स्वर दिया था प्रतिभा पी दवे ने।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये कव्वाली जिसको गाया है शैलेंद्र कपूर और कविता पौडवाल ने।

श्रोताओं, मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कब्बाल का संगीत है।

ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कब्बाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर।

0: मराठी भी शुरू किया
1: जी,
0: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
1: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
0: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
1: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
0: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
1: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
0: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
1: जी,
0: वो मैं सुनना चाहूंगी।
1: जी जी तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जाना है, कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
0: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है, मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे के पास से जो बात कर रही हूँ ना, ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा एक वाले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ,
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर
0: हाँ,
1: पाती हैं ये सब?
0: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस तरह से लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ,
1: जी
0: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे
1: जी
0: साथ ही क्या हो रहा है,
1: जी
0: लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती। मैं ऐसा
1: देखिए
0: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ले
1: जी
0: लेना
1: जी
0: चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
0: हाँ
1: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
0: हाँ
1: हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए। अंदाज सुनूंगा,
1: अंदाज
0: अंदाज
1: कंगा
0: है ना।
1: जी
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लगा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या
1: एक
0: बात,
1: शायरा
0: है?
1: हूँ
0: जी
1: जी, कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें,
0: पेन नेम है आपका लहरें।
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित वो है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह

0: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये लिया करता हूँ, ये सब कुछ है। तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
1: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
0: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
1: जी।
0: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है,

0: पलटवार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर। लफ्ज़ बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज़ बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती
1: हाँ,
0: हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे, टीचर
0: जी जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती
1: रुके,
0: हैं। जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है। हाँ
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का, थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी
0: जी
1: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई के ही रहती मैं।
0: तो देखिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजर
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद
1: हाँ
0: करती हैं। और
1: मैम, मैं मेरी सहेली के नाम लेती,
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैम खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती है।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।

0: तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी।
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल

0: एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
0: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।

0: अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ दीका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर

0: आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर,
2: श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राज
0: भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले

0: जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देखा सिफ़ान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा, वाह। अरे
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी

0: तो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी
1: समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
5: है?
4: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
5: अच्छा,
4: हाँ
5: बहुत बड़ी फौज है।
4: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
5: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
4: अच्छा,
5: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
4: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
5: बिल्कुल है।
4: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए, तो
5: उसका

0: इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
0: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
0: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
0: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी, तभी
3: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
4: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
3: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
4: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
5: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये खोला लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
4: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
5: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
4: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
5: रानी माँ,
3: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक विषय रखते हैं जिस विषय पर अपने श्रोताओं से फोन पर भी बातचीत करते हैं और हमारे बहुत से श्रोता अपने विचार हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर भी उस विषय से संबंध में अपने रखते हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में। तो आज हमने एक विषय चुना है, विषय है माँ बाप और रुपया पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। इस विषय पर हमने बहुत सारे अपने श्रोताओं से बातचीत की और बहुत श्रोताओं ने अपने विचार भी हमको लिख भेजे हैं, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं जो फोन पर हमारी बातचीत हुई श्रोताओं से। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं?
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और आपको बताए देते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है माँ बाप और

0: रुपया पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों, ये भी बताइए।
1: जी बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे। माँ बाप का तो मतलब एहसान कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन रुपये पैसे के बिना भी काम नहीं चल सकता है।
0: जी
1: तो माँ बाप को तो हम छोड़ भी नहीं सकते, और रुपया पैसा कमाना पड़ता है। तो मैं
0: जी
1: तो माँ बाप के पहले मानूंगा, उसके बाद में रुपया पैसा मानूंगा, क्योंकि माँ बाप को तो हम एक बार खोने के बाद में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन रुपया पैसा तो हम कभी भी और कितना भी कमा सकते हैं। तो मेरे
0: बिल्कुल
1: मायने में तो अगर कहेंगे तो इस दुनिया में लाए, हमारे इस दुनिया में हमने माँ बाप को देखा आने के बाद में, तो हमारे लिए तो सबसे पहले माँ बाप ही रहेंगे।
0: बिल्कुल, आपने बहुत गहरी बात कही प्रेम सिंह सिसोदिया जी। और अब बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए आज।
1: जी बोल रहा था बोल फिल्म का सुनवा दीजिएगा, बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया।
0: ठीक है प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, सुनेता बरेली से 25 साल है ये।
0: सुनील कुमार जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय एक बार फिर से हम आपको बताई देते हैं, आज का विषय है माँ बाप और रुपया पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?
1: जी जी सर, देखो हम तो माँ बाप को चुनेंगे क्योंकि रुपया पैसा तो कभी कमाया जा सकता है
0: जी,
1: और माँ बाप तो हमारे सुख सुख में हर जगह साथी
0: है। जी बिल्कुल सही बात है।
1: इसलिए हम तो माँ बाप को चुनेंगे कि जब तक हम रहे तब तक वो लोग रहे।
0: जी तो आपने बहुत अच्छी बात कही और माँ बाप को ही चुनना चाहिए क्योंकि आज हम जो भी हैं, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वो किसकी बदौलत है? हाँ, उनकी बदौलत है, उन्होंने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया है। माँ बाप ही मतलब जो है चुने जाएंगे इन दोनों में से। तो आज बताइए अब कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म है घर का चिराग, आए काश तुम कह दो जरा, मेरे हो तुम मेरे हो।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपका स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हैं?
1: भैया नमस्ते, मैं शरद बोल रहा हूँ, बांके की छावनी इज्जत नगर बरेली से।
0: शरद जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है, आपसे आज दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: जी
1: बहुत पहले हुई थी, 1.5 महीना पहले।
0: जी जी काफी समय हो गया। और बताइए क्या चल रहा है आजकल शरद जी?
1: सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कोचिंग है मेरी, पढ़ाता हूँ सुबह और शाम।
0: बहुत अच्छी बात। और आज का विषय है शरद जी, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आज का विषय है जिस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, माँ बाप और रुपये पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?
1: माँ बाप को चुनेंगे पहले, रुपये पैसे की तो कोई अहमियत ही नहीं है माँ बाप के सामने।
0: जी
1: इससे पहले हम माँ बाप को ही चुनेंगे।
0: जी
1: और क्यों चुनेंगे, तो इसका कारण ये है कि माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, हमारी परवरिश करी है, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है।
0: बिल्कुल,
1: तो रुपये पैसे की तो कोई अहमियत ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी मेरी नजर में।
0: जी जी जी आपने बिल्कुल सही बात कही। जी तो शरद सक्सेना जी, आपने हमें फोन किया, आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम से जुड़े। और अब बताइए आपकी पसंद का गीत जो आज हम आपको सुनवाएं।
1: तो मुकेश जी की आवाज में कोई दर्द भरा सुनवा दीजिए।
0: ठीक है शरद सक्सेना जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत

0: देते हैं। आज का विषय है जिस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, माँ बाप और रुपया पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?
1: माँ बाप को चुनेंगे पहले, रुपये पैसे की तो कोई अहमियत ही नहीं है माँ बाप के सामने, तो
0: जी
1: इससे पहले हम माँ बाप को ही चुनेंगे।
0: जी
1: और क्यों चुनेंगे, तो इसका कारण ये है कि माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, हमारी परवरिश करी है, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, तो
0: बिल्कुल
1: रुपये पैसे की तो कोई अहमियत ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी मेरी नजर में। तो
0: जी जी जी आपने बिल्कुल सही
1: माँ बाप
0: बात
1: को
0: कही
1: चुनेंगे।
0: जी। तो शरद सक्सेना जी, आपने हमें फोन किया, आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम से जुड़े। और अब बताइए आपकी पसंद का गीत जो आज हम आपको सुनवाएं।
1: हाँ जी,
0: तो
1: मुकेश जी की आवाज में कोई दर्द भरा सुनवा दीजिए।
0: ठीक है शरद सक्सेना जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं, अपना नाम बताइए।
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं सर।
0: ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी, आपसे इस विषय पर आज बात करेंगे। हमारा आज का विषय है माँ बाप और रुपया पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?
1: हम माँ बाप को चुनेंगे।
0: क्यों, इसका क्या कारण है?
1: माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षा दी है, हमें पढ़ाया लिखाया है
0: जी।
1: हमारे दुख तकलीफ में उन्होंने साथ निभाया है।
0: कैसे
1: तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम माँ बाप के लिए मानेंगे, पैसे के लिए नहीं मानेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। कैसी भी परेशानियाँ आई, कैसी भी दुख तकलीफ आई, उन्होंने सब कुछ बुला के हमारा ख्याल रखा, हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता है ना
1: जी। तो लिखा भी है ग्रंथों में भी लिखे कि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करे सम्मानी।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी। और अब बताइए आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए आज?
1: गाना सुनवा दीजिए, फिल्म नील कमल है, ये रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी।
0: बहुत सुंदर गीत आपने पसंद किया है ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के साथ। साथियों, और आज का हमारा विषय है माँ बाप और रुपये पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। इस विषय पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं से जो बातचीत हुई वो हमने आपको सुनवाई और अब हमारे उन श्रोताओं के विचार आपके साथ साझा करेंगे जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर अपने विचार हमको इस विषय पर लिख भेजे हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने इनमें से आप किसे चुनेंगे। योगेश गुजराती जी हैं, लिखते हैं कि पिता को। जगदीश धाकड़ जी लिखते हैं माता पिता को। और तेज बहादुर यादव जी, ममता यादव हैं, गांव मऊ शरकी जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को चुनेंगे। और ये हमारे नियमित श्रोता हैं एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, लिखते हैं कि आज का मुद्दा बहुत रोचक है। मेरा मानना है कि माँ बाप की तुलना धन दौलत से करना न्याय संगत नहीं है। माँ बाप तो भगवान तुल्य हैं। बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनको समझते हैं कि माँ बाप की तुलना नहीं की जा सकती है किसी भी चीज़ से। किंतु आज भी कई सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको ऐसी परेशानी है कि वो अपने बच्चों से दूर हैं, या कई सारे माँ बाप ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि उनके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे पदों पर। फिर भी हम इस दौलत के पीछे दिन रात तोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए बना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिखना चाहते हैं और अपने माँ बाप के लिए बना रहे हैं वृद्धाश्रम। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारतीय संस्कृति संस्कारों में ऐसा हो रहा है, बहुत दुख होता है। लेकिन हम खुश नसीब हैं, हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए उन पर आज भी कायम हैं। हालांकि हमारे माँ बाप आज, माता पिता आज स्वर्ग में हैं, लेकिन उनके चरणों में रहते हुए उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा। दादाजी और दादी जी 100 वर्ष प्लस थे और हमारी माताजी पिताजी 90 प्लस थे। उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा हमें आज भी संयुक्त परिवार का साथ रहने की शिक्षा देती है। बहुत सुंदर बात है जो आपने लिखा है और उन संस्कारों को आप बनाए रखिए और आने वाली पीढ़ी को भी दीजिए। और ये हमारे श्रोता हैं इरशाद अहमद जी, लिखते हैं कि माता पिता को। रामचंद्र गुप्ता जी भी लिखते हैं माता पिता कटरा। और ये हमारे श्रोता हैं प्रवीण चौहान जी, लिखते हैं माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ तक रुपये पैसों की बात है तो ये कभी एक जगह नहीं ठहरता। बिल्कुल, रुपये पैसा एक जगह नहीं ठहरता है, लेकिन माँ बाप जो हैं वो माँ बाप ही रहेंगे और उनकी किसी से ना तो तुलना की जा सकती है ना उनको रिप्लेस किया जा सकता है। ये हमारे श्रोता हैं पारसनाथ कुशवाहा जी, तिलकपट्टी दुदही कुशीनगर से, लिखते हैं हम माँ बाप को ही चुनेंगे क्योंकि रुपया पैसा कभी भी कमा लेंगे, माँ बाप को खो देंगे तो फिर उनको हम नहीं पा सकते हैं, माँ बाप दौलत से बढ़कर हैं। बिल्कुल। और ये हमारे श्रोता हैं विष्णु मिस्किन जी, रितिका मिस्किन और आपके बहुत सारे साथी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, लिखते हैं रुपया पैसा जीवन को सुविधाएं दे सकता है लेकिन माँ बाप जीवन देते हैं, संस्कार देते हैं और कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। पैसा मेहनत से फिर कमाया जा सकता है लेकिन माँ बाप का प्यार

तो अपनी माँ को खो चुका। माँ ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है, रुपये पैसे कमाए भी जा सकता है, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। माँ बाप जैसे मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप एक ही होते हैं। माँ बाप की दुआएं बहुत असर करती हैं, यह जो कुछ है सब माँ बाप की देन है। बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं बहुत असर करती हैं और सब कुछ जो हमारे जीवन में है सब उन्हीं की देन है। और ये हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल जी, मौर्य मंदिर कटा चांद खां पुराना शहर बरेली से लिखते हैं कि साथ के लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है, पैसे जीने के लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल, पैसे जीने के लिए ज़रूरी हैं और लेकिन माँ बाप जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे कई सारे और श्रोताएं हैं जिन्होंने अपने विचार लिख रखे हैं, उनको हम शामिल करेंगे इस गीत के बाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारे एक और श्रोता हैं आरवी सिंह जी, लिखते हैं, मैं तो माँ बाप को ही चाहूँगा, माँ बाप का बहुत सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल, माँ बाप का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और आप हैं हमारे श्रोता आरवी सिंह जी, थाने के सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहाँपुर से। इसी विषय पर हमारे एक और श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और आपके बहुत सारे साथी। इस विषय पर लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। तो आदाब, लाल मोहम्मद अंसारी जी लिखते हैं, आज का विषय है माँ बाप और पैसा, तीनों में से किसे चुनेंगे, दोनों में से किसे चुनेंगे। लिखा है कि बहुत ही कठिन और सोचने वाला विषय है, माँ अगर ना हो तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलता, बात अगर ना हो तो सारे सपने अधूरे, पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे में किसी एक को चुनना सोचने की बात है। फिर भी कार्यक्रम का विषय है तो राय तो बनती ही है, तीनों में से माँ ही ऐसी शख्सियत है जो बाप की कमी को पूरा कर सकती है। पैसे तो माँ की दुआओं से बहुत मिल जाता है, इसलिए हमारे हिसाब से माँ को चुनना चाहिए। लाल मोहम्मद अंसारी जी, हमने माँ और बाप एक साथ ही रखा था विषय, माँ बाप और रुपए पैसे में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, माँ बाप को या पैसों को। आपने माँ बाप और पैसे तीनों में से एक को चुना है, कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं हम समझते हैं। और आपने बहुत अच्छा लिखा है विषय पर कि माँ की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता है।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या लकी 3। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:30 पर। 5:45 पर आपको सुनवाएंगे काव्य पाठ कमल सक्सेना और हिमांशु श्रोत्रिय का। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा रोज की तरह 6:00, जिसमें कुछ खास है आज और नजरानाए शाम आप सुन सकेंगे। ग्राम जगत हमारे ग्रामीण साथियों का ये मनपसंद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा की जाएगी अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में आप सुनेंगे खेती संघ बागवानी इस विषय पर श्री यशपाल से कृष्णपाल की बातचीत। 7:00 का समय रहेगा कार्यक्रम कृषि पाठशाला का, विषय रहेगा आर्द्र मौसम में थनेला रोग का प्रबंधन। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उज्जवल कुमार डे। सात बजकर 31 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का, जिसमें आज का विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। 14 ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल प्रातः 8:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। 8:45 का समय रहेगा लोकगीतों का। 9:00 आपको जोड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 का। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल प्रातः 10:00 से। 11:00 का समय रहेगा कार्यक्रम सब रंग का। 11:30 पर आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुन सकेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे कल दोपहर 1:00 से। जनमंच ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 2:00 से। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे कल दोपहर 1:00 से। जनमंच ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 2:00 से।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रैली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। श्रोताओं, भजन संध्या में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम रोज की तरह प्रसारित किया जाएगा कल शाम 4 बजे से। 5:05 पर आपको सुनवाएंगे भजन संध्या। हेलो बरेली, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 5:30 पर। हमारे युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6 बजे, जिसमें कल चर्चा की जाएगी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स पर। इसके साथ ही सुनेगा डांस बरेली डांस। हमारे किसान साथियों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:30 पर, जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री कृषि योजना पर। साथ ही सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में किसान के साथ। कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 7 बजे का। कल शाम 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम अनुरोध की।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं भजन संध्या। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भजन संध्या में ये भजन जिसको स्वर दिया है जगजीत सिंह ने।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम लकी 3 का।

कार्यक्रम लकी थ्री सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के बारे में हमारे नए श्रोताओं को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम है लकी थ्री, जिसमें हम तीन लकी श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हैं और सुनवाते हैं उनकी पसंद के गीत और साथ ही जानते हैं उनको ये गीत क्यों पसंद है। और अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो अपने पसंद के गीतों को लिख भेजिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम लकी थ्री, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, और हमारा पिन कोड है 2430001। साथियों, गीत के साथ ये बताना ना भूलिएगा कि ये गीत आपको क्यों पसंद है। श्रोताओं, कार्यक्रम लकी थ्री में हम जो पहला पत्र शामिल करने जा रहे हैं उसको लिखा है हमारे नियमित श्रोता मसरूर खान जी ने, वार्ड नंबर 16 ककराला बदायूं से। और इन्होंने अपने पसंद के गीत हमको लिख भेजे हैं और एक गीत है इसमें, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, ये गीत इन्होंने पसंद किया है। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। और इस गीत के बारे में लिखते हैं कि इस गीत की विशेषता है कि जब मैं बच्चा था तो ये गीत गाया करता था। मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है, इसे जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे बचपन याद आ जाता है अपना, और इसलिए आज इस गीत को इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहता हूँ। तो मसरूर खान जी, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। और कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी थ्री और हमारे दूसरे लकी श्रोता की बारी है। अब ये हमारे श्रोता हैं अशरफ खां पानी टंकी के पास होली चौक बरेली से, हमारे नियमित श्रोता राम प्रसाद शर्मा जी। इन्होंने अपनी पसंद का एक गीत लिख भेजा है। गीत के बोल हैं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। इस गीत के बारे में लिखते हैं कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैंने ये फिल्म देखी थी, इस गीत को सुनता हूँ तो भावनाएं मेरे मन में उमड़ पड़ती हैं। और इस गीत को सुनने की एक वजह और भी है, लिखते हैं कि इसके मधुर बोल, सुरीला संगीत और भावपूर्ण गायन मन को छू लेते हैं। ये गीत प्रेम की सुंदर भावनाओं को सरल और आकर्षक ढंग से व्यक्त करता है। इसे सुनकर मन प्रसन्न, शांत और आनंदित हो जाता है। इसीलिए ये गीत मैं अपने साथ साथ अपने सभी साथियों को भी सुनवाना चाहता हूँ।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी 3। और अब बारी है हमारे तीसरे लकी श्रोता की, जो है बरेली जंक्शन से गरीब भाई। ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने एक गीत लिख भेजा है, जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म से है, और गीत के बोल भी यही हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस गीत के बारे में लिखते हैं कि जब हम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगी, और अगर हम उन्हें सताएंगे तो हमें दुख मिलेगा। इसलिए हमें ये गीत बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक शिक्षाप्रद गीत है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर गीत चुना है गरीब भाई। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम लकी थ्री यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ कमल सक्सेना और हिमांशु श्रोत्रिय का।
1: बरेली प्रक्षेत्र के प्यारे श्रोताओं, मैं हूं कमल सक्सेना और आप हैं हिमांशु श्रोत्रिय निष्पक्ष जी। मैं इस काव्य गोष्ठी के प्रारंभ के लिए हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा। उनको मैं बुला रहा हूं कि यूं तो मैंने कई सिकंदर देखे हैं, लेकिन वक्त पड़ा तो अंदर देखे हैं। यूं तो मैंने कई सिकंदर देखे हैं, लेकिन वक्त पड़ा तो अंदर देखे हैं। हूं तो गांव किनारे का दरिया, लेकिन तेरे जैसे कई समंदर देखे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई हिमांशु श्रोत्रिय जी निष्पक्ष जी से।
2: धन्यवाद कमल जी। मैं हिमांशु श्रोत्रिय निष्पक्ष, प्रिय श्रोताओं, एक गजल के साथ प्रस्तुत हूं। कहां दिन ढलेगा, कहां रात होगी, कहां जिंदगी से मुलाकात होगी। अगर आ गए वो जो दिल में हमारे, तो महफिल में रंगों की बरसात होगी।
1: बरसात होगी।
2: कहे शेर मैंने उन्हें याद करके,

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: अगर प्यार से कहे मुकर्रर दिया तो ये इज्जत यकीनन बड़ी बात होगी।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: और मोहब्बत में अल्फाज का काम ही क्या, मोहब्बत में अल्फाज का काम ही क्या, इशारों में हर बात होगी। अब पता क्या था हिस्से में दिल के हमारे, मुसलसल गमों की ही सौगात होगी।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: गजल को फकत बस गजल मत समझना, किसी टूटे दिल के बयानात होगी।
0: बहुत खूब।
1: चलो आज निष्पक्ष साबित हुआ।

0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत
1: धन्यवाद। सावन का मौसम है, मानसून आ गया है
0: जी,
1: और इसी से एक बिरहन के दिल के दर्द को समेटती हुई गजल
0: वाह वाह वाह
1: मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा
0: जी।
1: बहुत यादें दिलाते हैं किसी की याद के बादल
0: आहा।
1: के आकर मुंह चढ़ाते हैं
0: किसी की याद के
1: किसी
0: बादल।
1: की याद के बादल
0: बहुत खूब।
1: बिगाड़ा क्या भला हमने जो ये सावन पड़ा पीछे, बिगाड़ा क्या भला हमने जो ये सावन पड़ा पीछे, इसी के साथ आते हैं किसी की याद के बादल।
0: क्या बात है,
1: लगी कब से झड़ी फिर ये सताने आ गए नब में, हमें पागल बनाते हैं
0: किसी की याद के बादल। बहुत खूब।
1: और बहुत शापित है पुरवाई, बहुत शापित है पुरवाई।

0: हमारी जीवनी,
1: हमारी जीवनी में सब कथाएं थी वियोगों की, हमें वो ही रटाते हैं किसी की याद के बादल।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: हम ही से दुश्मनी कोई तड़ित की भी रही होगी,
0: आई है।
1: हम ही से दुश्मनी कोई तड़ित की भी रही होगी, नशे मन फूंक जाते हैं
0: किसी की याद,
1: किसी की याद के बादल, और हमारे संग रहने की कसम खाकर ही गमाए,
0: हमारे संग रहने,
1: हमारे संग रहने की कसम खाकर ही गमाए कि दिल में घर बसाते हैं
0: किसी
1: की याद के बादल। बहुत निष्पक्ष रहने की तमन्ना थी कभी दिल में, बहुत निष्पक्ष रहने की तमन्ना थी कभी दिल में, और तरफदारी सिखाते हैं
0: किसी की याद के बादल,
1: तरफदारी सिखाते हैं किसी की याद के बादल, बहुत यादें दिलाते हैं किसी की याद के बादल, के आकर मुंह चढ़ाते हैं
0: बहुत खूब
1: किसी की याद के बादल। धन्यवाद
0: मित्रों, अभी आपने गजल सुनी, गजल पेश कर रहे थे बरेली के वरिष्ठ कवि शायर हिमांशु शोधते निष्पक्ष जी, और मैं आपको ले चलता हूँ गीतों की तरफ।
1: स्वागत है,
0: चार पंक्तियों से मैं आह्वान करता हूँ, तू बार बार

0: में डाल कर मैं पी गया हूँ दर्द को प्याले में डाल कर प्याले में डाल कर। एक मुक्तक वांचू और देखें।
1: स्वागत है।

0: जब जब झूठे सपन सजाएगा इन सूनी आंखों में, जब जब। और गीत का अंतिम बंद देखें आप,
1: स्वागत है।

0: जब
1: वाह वाह वाह।
0: तो मित्रों ये थी आज की काव्य गोष्ठी, इसमें भाग ले रहे थे आदरणीय हिमांशु श्रोते निष्पक्ष जी जो बरेली का वरिष्ठ कविशार हैं और मैं गीतकार कमल सक्सेना। इसी के साथ आज की गोष्ठी समाप्त होती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ कमल सक्सेना और हिमांशु श्रोत्री का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों कहते हैं जिंदगी हर रोज एक नया पन्ना खोलती है, कभी धूप लिखती है तो कभी छांव लिखती है, और जो इंसान हर मौसम में मुस्कुराना सीख जाए, जिंदगी उसी के नाम सबसे खूबसूरत कहानी लिखती है। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आपका दोस्त वैभव आ चुका हूं कार्यक्रम युवाणी लेकर। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। दोस्तों आज का दिन भी अपने साथ एक अलग सी कहानी लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने थोड़ी राहत दी, हवा में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, आसमान का मिजाज भी कभी कभी बदला बदला सा नजर आता है। हालांकि आज तापमान थोड़ा सा बड़ा बरेली का और थोड़ी सी गर्मी हमारे श्रोताओं को लगी होगी, लेकिन यही तो मौसम की खूबसूरती है दोस्तों। कभी धूप है, कभी बादल है, और कभी ये ठंडी हवा का झोंका है, और कभी अचानक से आती बारिश ही बूंदे। वैसे मौसम और जिंदगी में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, पता है क्या? दोनों का कोई भरोसा नहीं कि अगले पल क्या हो जाए। सुबह घर से निकले तो धूप देखकर लगा कि आज तो गर्मी अपना पूरा हिसाब लेने वाली है, और हो सकता है कि कुछ देर बाद आसमान में बादल भी आ जाए, और मन कहे अरे अरे वाह, आज तो मौसम बन गया। श्रोताओ हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही गुजरती है, तभी तो कहते हैं कि शायद जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी चीजों का नाम है। हम सब सोचते हैं नौकरी लग जाएगी तब खुश होंगे, पैसे आ जाएंगे तब खुश होंगे, ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, और कहीं ना कहीं हम इन चीजों के वजह से अपने आप को परेशान रखने लगते हैं। और लोगों ने भी क्या खूबी कहा है कि और जो इंसान हर मौसम में मुस्कुराना सीख जाए, जिंदगी उसी के नाम सबसे खूबसूरत कहानी लिखती है। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आपका दोस्त वैभव आ चुका हूं कार्यक्रम युवाणी लेकर। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। दोस्तों आज का दिन भी अपने साथ एक अलग सी कहानी लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने थोड़ी राहत दी, हवा में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, आसमान का मिजाज भी कभी कभी बदला बदला सा नजर आता है। हालांकि आज तापमान थोड़ा सा बड़ा बरेली का और थोड़ी सी गर्मी हमारे श्रोताओं को लगी होगी, लेकिन यही तो मौसम की खूबसूरती है दोस्तों। कभी धूप है, कभी बादल है, और कभी ये ठंडी हवा का झोंका है, और कभी अचानक से आती बारिश ही बूंदे। वैसे मौसम और जिंदगी में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, पता है क्या? दोनों का कोई भरोसा नहीं कि अगले पल क्या हो जाए। सुबह घर से निकले तो धूप देखकर लगा कि आज तो गर्मी अपना पूरा हिसाब लेने वाली है, और हो सकता है कि कुछ देर बाद आसमान में बादल भी आ जाए, और मन कहे अरे अरे वाह, आज तो मौसम बन गया। श्रोताओ हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही गुजरती है।

0: कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, और युवाणी में हम देखिए आपको अपने होनहार युवाओं से रूबरू कराते हैं जो अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनसे जान सकते हैं। तो ऐसे हम आज एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के पास पहुंचे हैं। आपको पता है अभी हाल ही के दिनों में ही चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, हर बोर्ड ने अपने जो बोर्ड परीक्षाओं के जो रिजल्ट है उनको जारी किया है और बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। ऐसे हम एक और युवा के पास पहुंचे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, तो उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता का क्या राज रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे उनको इतने अच्छे मार्क्स मिले। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप अपना नाम हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, मेरा नाम मनु गुप्ता है।
0: तो मनु गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं?
1: मैं मोहल्ला अफसरिया मीरगंज से।
0: अच्छा, मतलब बरेली से ही आप। तो पहले बताइए अपने बारे में, आपने क्या किया है इस बार? टेंथ के एग्जाम दिए, ट्वेल्थ के एग्जाम दिए?
1: मैंने 2025 में हाई स्कूल के एग्जाम दिए।
0: तो कैसा रहा आपका रिजल्ट, कैसे मार्क्स आए थे?
1: मेरे हाई स्कूल में 90% आए थे।
0: अरे वाह, तो बड़े अच्छे मार्क्स आए। कैसे पढ़ाई करती थी आप, क्या क्या करती थी, थोड़ा बताइए।
1: मैं ज्यादातर शाम के टाइम पढ़ाई करने के लिए बैठा करती थी और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी को रिवाइज करती थी ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बढ़िया बात है। तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था?
1: जी, इंग्लिश।
0: इंग्लिश से तो बहुत लोगों को डर लगता है, उनके मार्क्स कम रह जाते हैं।
1: मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे पापा इंग्लिश के टीचर हैं, तो मेरी इंग्लिश वैसे उन्होंने अच्छी कर रखी है।
0: अच्छा, लेकिन मनु जी देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक भी होता है ना। चलिए भले ही मतलब इतना वीक नहीं होता, बट कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो उसमें कहीं कम ना रह जाए। तो आपको क्या लगता था, आपका कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें लगता था सबसे ज्यादा डर कि इस वजह से मेरे बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट खराब ना हो जाए?
1: मेरा वीक पॉइंट जो था वो सोशल साइंस था, मुझे एसएसटी से काफी डर लगता था।
0: अच्छा, तो फिर कैसे किया आपने, कैसे मार्क्स लेके आए उसमें?
1: मेरे उसमें 100 में से 82 मार्क्स आए थे।
0: अरे फिर भी अच्छे मार्क्स आए। देखिए, इतना कठिन लगता था आपको, मतलब थोड़ा सा लगता है, तो कैसे किया, मतलब आपने? देखिए, बहुत से लोग होते हैं ना जिनको सब्जेक्ट से डर लगने लगता है तो वो तैयारी नहीं करते हैं, उसमें छोड़ देते हैं। आपने कैसे किया, तब भी तो 82 मार्क्स ले आए आप?
1: जिन लोगों को डर लगता है वो सब्जेक्ट को ज्यादातर छोड़ देते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर जो सब्जेक्ट कमजोरी है उसी को हम अच्छा कर ले तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो सकता है।
0: तो आप एसएसटी कैसे पढ़ा, मतलब कैसे आपका लगा मन और कैसे मार्क्स लेके आए?
1: अपने नोट्स ही रिवाइज करती थी और मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे।
0: तो आप क्या मानते हैं आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसके पीछे किन किन लोगों ने आपकी मदद करी?
1: सबसे पहले मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल के टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और मतलब मैं कभी भी डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मतलब वो मुझे कभी भी मतलब

0: कमजोर नहीं पड़ते देते
1: तो वैसे आप क्या प्लान बना के चल रहे थे? आपका था कितने परसेंटेज आप लाना चाह रहे थे 10th में? आपका टारगेट क्या था?
0: 95+ का टारगेट था, पर 90% ही रह गए।
1: अरे नहीं, बहुत अच्छा, आपने मार्क्स लेके आए हैं। और क्या आप तैयारी करना चाहते हैं, अब आगे जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?
0: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: अच्छा, क्यों, मतलब डॉक्टर बनने का मन कैसे हो रहा है क्या?
0: मुझे मेरा बचपन से ही सपना है डॉक्टर बनने का, मतलब जो समाज सेवा एक तरीके से डॉक्टर बन के ही मुझे करनी है।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। हम यही कामना करेंगे कि आपके जो लक्ष्य है उसमें आप सफल हों, डॉक्टर बने, है ना, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम और सबका नाम रोशन करें। तो अभी तो आप 12th की तैयारी करने में लगे होंगे बोर्ड एग्जाम की।
0: जी,
1: ठीक है, तो मनु गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसी मशीन है जो आपको छाया भी देगी, हवा को बेहतर बनाने में मदद भी करेगी, पक्षियों को घर भी देगी, मिट्टी को संभालने में योगदान भी करेगी और बदले में आपसे कोई बिजली का बिल भी नहीं मांगेगी, तो आप क्या कहेंगे? भाई ऐसी मशीन हमें भी चाहिए। लेकिन श्रोताओं, ये मशीन हमारे आसपास है। खैर, ये मशीन नहीं है, ये एक पेड़ है। आपको हम बताएं तो देखो, आज 1 जुलाई से और अभी आज है इस समय 7 जुलाई तक एक खास महोत्सव मनाया जाता है, जी हाँ, जिसका नाम है वन महोत्सव। किसी ने क्या बड़ी खूबसूरत पंक्तियां लिखी है श्रोताओं, पेड़ है तो सांसों में रवानी है, पेड़ है तो धरती की कहानी है, एक पौधा लगाकर तो देखिए उसकी छाव में कल की जिंदगानी है। श्रोताओं, बचपन याद है आपको? गर्मी की छुट्टियां, गांव या नानी दादी का घर, कहीं आम के पेड़ का इंतजार कि आम कब गिरेगा, कहीं नीम की छाव में चारपाई और कहीं पेड़ पर बैठी चिड़ियों की आवाज। और आज

ये सब कितना बदल गया है। समय बदला है, बदलना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम प्रकृति से अपना कनेक्शन ही खो दें। क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो कुछ देर काम रुकता है, लेकिन प्रकृति का नेटवर्क बिगड़ा तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। और शुदाव वन महोत्सव का यही संदेश है कि पेड़ लगाएं और इस प्रकृति को हम बचाएं। और सोचो शुदाव, कभी कभी पेड़ भी ये कहता होगा ना, ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है।

दोस्तों कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, दिल में उम्मीद का एक दिया होना चाहिए। दोस्तों अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, फिर से कुछ नया और नयाब लेकर। अब अपने दोस्त वैभव को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली, कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। अब हमारे ग्रामीण साथी सुनेंगे अपना प्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगह सुनने वाले सब भैया बहनों को आपके भैया कृष्णपाल मौर्य की राम राम। भैया बहनों को शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम आपके रेडियो सेट पर उपस्थित हैं आपको मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत लेके। आज के ग्राम जगत कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन भैया जानकारी आप तक पहुँचावेंगे, मनोरंजन भी आपको करावेंगे और जो आपने फरमाइश अपनी लोकगीत की लिख के भेजी है सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी भैया पूरी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि भैया देखो अब जो है खेतीबाड़ी के काम अपने चलिए रहो, धान की रोपाई भी शुरू हो गई और जाके संग संग भैया गर्मी में भी कुछ राहत मिली, क्योंकि बरसात भई तो उसके बाद भैया थोड़ा मौसम जो है ठंडो भो और जाके साथ ही साथ जो बरसात भई है उससे भी हमारे भैया खेतों में कहीं ना कहीं नमी आई है। अगर कहीं पंपिंग सेट भी चलाने पड़ रहा हो तो पानी भी हमको कम लगाने पड़ रहा हो और कन्हर बनाने में भी आसानी हो रही है। लेकिन जाके संग संग भैया देखो जो प्रकृति है उसके साथ हमें खिलवाड़ बिल्कुल ना करने हैं, क्योंकि हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जैसे कि हम अपने खेतन में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हमको नुकसान ही होगा। पहले आप देखते हैं कि अपने खेती में जाते हैं खेतन पर तो उस समय भैया जो अपने मित्र कीटे खूब दिखाई देते, लेकिन आज वे मित्र कीट हमको अपने खेतन में नजर नहीं आते हैं, उसके भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसी भैया अगर हम बात करें पेड़ों की तो वृक्ष जो पेड़ हैं उनको हम लगातार काटते जा रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में वृक्ष हम लगा ना पा रहे हैं, और वृक्ष अगर लगाते हैं तो फिर उनकी देखभाल ना कर पाते हैं और वे कहीं ना कहीं भैया वृक्ष लगाने के बाद सूख जाते हैं, पनप ना पाते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी ये है कि भैया जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसको शुद्ध साफ रखें, और शुद्ध और साफ तभी रख सकते हैं जब हम सही तरीका से उसको स्वच्छ रखने में मदद करेंगे। मदद के लिए यह है कि भैया जो वृक्ष हैं उनको अधिक से अधिक लगावें, क्योंकि वृक्ष से तो आप जानते हो भैया बहुत सारे फायदे हैं। अब इस समय जामुन भैया आप खाइए रहे हो, आम खाइए रहे हो, अमरूद अपने खाते हैं, तो एक तो आपको फल मिल रहा है, जाके संग संग भैया लकड़ी भी उसकी काम में हम ले लेते हैं। और इससे पहले आप देखिए कि कहीं जाने ही रहो भैया मेहमानी में गौत्रखान कहीं जा रहे हो और जब भैया कड़ाके की धूप ही तो जल लग रही कि भैया पेड़ों मिल जाते और बाकी छाए में हम जो है थोड़ी देर बैठ लेते, सस्ता लेते। अब पेड़ों भैया आवेंगे कहाँ से जब हम लगातार काट रहे हैं, तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, और जाके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधा अवश्य लगावें। फिलहाल भैया बहनों बातचीत आपसे और होगी, लेकिन ऐसी ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता जो बातचीत हमने करी है खेती बाड़ी के संग बागवानी के संबंध में, और जाके विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री यशपाल जी, और आपसे हमने बात करी तो आप सुन लेते हैं जी भेंट वार्ता खेती बाड़ी के संग बागवानी। जी भैया आपको नाम क्या है?
1: मेरा नाम यशपाल है।
0: यशपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं?
1: हम ग्राम जमुनिया के रहने वाले हैं जो ब्लॉक नवागुंज पड़ता है, तहसील भी नवागुंज पड़ती है हमारी और जिला बरेली पड़ता है ये।
0: जी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक भाई?
1: हमने अभी इकोनॉमिक्स से एमए किया है
0: जी,
1: खेती बाड़ी भी करते हैं
0: जी। बहुत अच्छी बात है, देखिए आप एक युवा कृषक हैं और आपने एमए किया है और खेती बाड़ी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर आपकी उम्र भी जान लेना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी हुई चली हुई?
1: हमारी उम्र लगभग 45 वर्ष हो चुकी है
0: जी। तो यशपाल जी जो खेती बाड़ी की आप बात कर रहे हैं कि खेती बाड़ी भी आप करते हैं, तो खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं?
1: हमारे यहाँ मुख्य रूप से गन्ने की फसल है, धान है और गेहूं है, यही फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं। कुछ साथ में बरेहना भी कर लेते हैं, जैसे घुइया है, चौराई है, और भिंडी उंडी लगा लेते हैं, लौकी लगा लेते हैं। फिलहाल बिक्री नहीं करते हैं, अपने खाने भर को लगा ही लेते हैं हम
0: जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे किसान साथी आजकल देख रहे हैं कि अपने खेतों में अंदर उर्वरकों को प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाएं डाल रहे हैं, लेकिन जो खान के लिए जो आप उत्पादन लेते होंगे बरेहाने को
1: जी,
0: तो उसमें आप कीटनाशक दवाओं को प्रयोग?
1: ना बिल्कुल नहीं करते हैं साहब, हमारे पास पशु भी हैं तो थोड़ा बहुत

0: उसी से गोबर खाद का वो भी इसी में डालते हैं और किसी प्रकार को कोई कीटनाशक नहीं लगाते हैं हम इसमें। वो तो एक प्रकार का जहर है कीटनाशक, जो सब्जी उब्जी के छिलके बचते हैं हम एक उसमें डाल देते हैं, एक टैंक बना रखा है हमने उसमें डाल देते हैं, वो 10 से 15-20 दिन में सड़ जाते हैं, उसी का पानी निकाल के इन पे डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से फसल उगती है हमारी ये।
1: जी अच्छा, अगर कोई कीट वगैरह लग जाता है इनमें तो फिर कैसे नियंत्रण, इसी से हो जाते हैं?
0: हाँ, राख वाख डाल देते हैं उसी से चले जाते हैं, नीम के पत्ते उत्ते उसमें घोल घाल के डाल देते हैं तो कीड़े भाग जाते हैं, मर भी जाते हैं।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यशपाल जी, देखिए हम ये चाहते हैं कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, और आपको ये भी पता हुई क्योंकि आप पढ़े लिखे एक युवा कृषक हैं, हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। तो वन महोत्सव सप्ताह मनाने को क्या उद्देश्य है?
0: उद्देश्य यही है सरकार का कि पर्यावरण की सभी लोग क्षति करते चले आ रहे हैं और बहुत क्षति भी हो चुकी है, देख रहे हो मौसम भी कितना गर्म होता चला जा रहा है, ये सब इंसान ने पर्यावरण को बहुत दूषित कर दिया है, इसी वजह से सब हो रहा है। पेड़ पौधे लगा देंगे तो उससे हमें हरियाली है, फल फूल है, छाया है, सभी प्रकार से पेड़ हमारे लिए मतलब एक प्रकार से जीवन ही देते हैं।
1: जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सत्य है कि जो पेड़ है हमारे वो जीवन दान हमें करते हैं, और कहीं ना कहीं देखी हुई कि इससे पहले अभी बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, और कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं तो बस ये मन करते हो कि कहीं ना कहीं हमें एक पेड़
0: मिल जाए, ठंडक मिल जाए। ठंडक तभी मिलेगी जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जब हम कुछ नहीं लगाएंगे तो हमें कहाँ से ठंडक मिल जाएगी।
1: जाके साथ साथ जो हमारी पीढ़ी है
0: जी,
1: अगर कहीं आप कोई फलदार वृक्ष लगा देते हैं तो वो भी याद करेगी कि साहब हमारे चाचा है, हमारे ताऊ है, हमारे दादा है। और जो जामुन के पेड़ लगाए गए जिसपे बड़े बड़े जामुन आ रहा है, कालिया
0: हाँ, यहाँ तो कालिया ही बोलते हैं हमारे गांव में,
1: और खाने में बड़े टेस्टी होते हैं,
0: और टेस्टी होते हैं। बताते हैं कि प्रत्येक आदमी को साल में एक बार जामुन कालिया जरूर खाने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, डायबिटीज के लिए भी, और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं इससे, इसलिए बहुत जरूरी है,
1: यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे है।
0: अब तभी मिलेंगे जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे साहब।
1: जी बिल्कुल बात सही। तो चूंकि आप खेती बाड़ी करते हैं, बता रहे हैं कि घुइया है, चौरैया है, भिंडी वगैरह भी आप कर लेते हैं बढ़ाने में, और उधर धान गेहूं गन्ना जी फसलें आप उगाते हैं, तो धान की क्या तैयारी है?
0: धान की पेड़ डाल रखी है, अब वो लगभग तैयार होने वाली है, बारिश थोड़ी कम हुई, अब पहुंचे थोड़ी बारिश और बढ़ जाए तो लगा दें उसे, लगभग 20 से 25 दिन में हम इसको लगा देते हैं।
1: 20 से 25 दिन की जब पौध हो जाती है
0: तो
1: आप लगा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कनहर वगैरह कैसे तैयार करते हैं?
0: कनहर के लिए पास में एक नहर है, उसका पानी नहीं मिल पाता है तो अपने बोरिंग है उस पर इंजन रख देते हैं और उससे ट्रैक्टर से फिर उसको कनहर कर देते हैं, पटेला लगवा देते हैं और लगा देते हैं, पौधों की रोपाई कर देते हैं।
1: जी क्योंकि आप कह रहे थे कि पशुपालन भी आप करते हैं तो जो देसी गोबर की खाद है वो भी खेत में डालते हैं?
0: हाँ, डालते हैं। जो पशुओं का हमारा मल मूत्र है हम उसे भी नहीं फेंकते, हम उसी में डालते हैं अपने गड्ढे में, उसी से तैयार करते हैं अपनी गोबर की खाद, जब इकट्ठी हो जाती है 1 साल या 1.5 साल में फिर अपने खेत में ले आके डाल देते हैं।
1: तो ये तो मानते हो कि जो खेती बाड़ी हम कर रहे हैं खेती के साथ संग पशुपालन भी बहुत जरूरी है?
0: हाँ साहब बहुत जरूरी है, क्योंकि प्याल है, भूसा है, हमें बेचना भी नहीं पड़ता, अपने पशुओं के लिए हो भी जाता है, हमें दूध भी मिलते हैं, और उससे जो बच्चे होते हैं, बच्चिया है,
1: बच्चे,
0: हाँ, तो ये सब हमारे बिक्री के भी काम आ जाते हैं, हमें जब जरूरत पड़ती है तुरंत बेचे, अपने पैसा भी हाथ में आ गया जरूरत पड़ती है,
1: वो एक इनकम को साधन हो जाता है, कहीं बालक की पढ़ाई कराने हैं या कोई और काम
0: कराने हैं, कुछ भी करना है तो हमें उससे बहुत सहायता मिल जाती है।
1: और पशु तो वैसे होना चाहिए, देखो पशु पालने से बहुत सारे फायदे ये हैं कि जैसे दूध की प्राप्ति आपको हो रही है, और आपको मालूम है कि जो दही है, दूध है, मठा है, ये सब कुछ सब हमको कुछ मिल जाता है।
0: बिल्कुल मिलता ही है इससे में, और हम लोग दूध मोल थोड़ी ना लेते हैं, हमारे पास पशु है भाई तो हम उसी को यूज करते हैं, और जो बचता है तो उसको हम बेच भी देते हैं।
1: बिल्कुल बात सही है। और जो कोई आव गाव है तो आव की अपनी आव भगत हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल साहब, हमारे पास किसी दिन सब्जी नहीं है, अपने मठा में रोटी मींजी है उसमें डालनी, अपने खा रहे हैं आराम से।
1: बिल्कुल बात सही है।
0: गर्मी में देख रहे हैं मठा कितनी तरावट देता साहब।
1: बिल्कुल बात सही है। पहले तो अपने जो बड़े बूढ़े सतुआ खाते घूम ले जाते, लेकिन सतुआ तो अब ना मिल रहे हैं, लेकिन मठा
0: हाँ
1: को अगर हम चाहें तो आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
0: आराम से कर सकते हैं, तंदुरुस्ती बढ़ती है साहब ये दूध मट्ठा से। जब हम शरीर से मजबूत होंगे तभी तो हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। हम तो हर किसान भाई से ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं यदि कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं, तो साथ में पशुपालन जरूर करें।
1: बिल्कुल, और कहते भी हैं कि एक सिक्का के दो पहलू, कहते हैं खेती के बिना जो हमारे पशु अधूरे हैं, पशुओं के बिना हमारी जो खेती अधूरी है। तो आपने भी कोई वृक्ष लगाए हैं?
0: हाँ साहब, हम लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, और इसी सीजन में लगाते हैं। ये भी बताएं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है तो ज्यादा पानी भी नहीं लगाना पड़ता है, तो हमारे लिप्टिस है, पॉपुलर, हम हर साल लगाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वृक्ष लगाने से फायदा क्या है वैसे?
0: अरे साहब फायदा क्यों नहीं है, और हमारी बताओ पॉपुलर थोड़ी दिन में तैयार हो जाएगी अगले साल के लिए, जब चाहे तो उसको जितने पैसे में चाहे उस हिसाब से बेच लें, आवश्यकता के अनुसार, किसी का साहू का यहाँ नहीं जाना पड़ेगा हमें साहब, न बैंक

0: आना पड़ेगा, विवाह लेना नहीं पड़ेगा, तब अपने उसी से काम चल जाएगा
1: कोई,
0: हमारा
1: कोई अगर काम आपको पड़ रहा हो तो
0: शादी ब्याह है, बीमारी हारी है, बहुत सी बातें हैं साहब, उसी को बेच के हमारा काम।
1: आपने पापलर या लिप्टिस लगा रखी तो उसके बिक्री करके फलदार वृक्ष भी आपने लगाते हैं?
0: हाँ, हमारे यहाँ नींबू भी लगे हुए हैं, अमरूद भी लगे हुए हैं, अनार के कुछ वृक्ष लगे हुए हैं
1: जी। तो देखो लिप्टिस और जो पापलर हम अपने लगाते हैं, जो बागवानी करते हैं खेती के साथ साथ, तो उससे तो हमें इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसको काट के हम जो है बिक्री कर देते हैं। लेकिन जो फलदार वृक्ष जो लगाए हैं आप बता रहे, नींबू है और जाके साथ साथ जो आम है इनको भी आप लगाओ है, तो इन वृक्षों से क्या फायदा है?
0: अरे साहब, इनसे भी बहुत फायदा है, आम पक जाते हैं, खाते हैं, अचार भी डालते हैं, वो भी खाते हैं, और फल तो वैसे ही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तो उसको खाने से बच्चे भी हष्ट-पुष्ट रहेंगे, हम भी हष्ट-पुष्ट रहेंगे, परिवार हष्ट-पुष्ट रहेगा, तो अनाप शनाप हमें अस्पतालों में पैसा नहीं देना पड़ेगा, सुरक्षा ही सुरक्षा है।
1: बिल्कुल नहीं, हम स्वस्थ होंगे तो जो हमें अपने हार मुसीबत में बीमारी दुख बीमारी पे पैसा ना खर्च करने पड़ेगा, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी अस्पताल जी देखो, जो वृक्ष हैं वो आपने पहले ही कही कि जीवन दाता हैं, इनके संरक्षण में हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में। और पहले तो अपने देखते हैं जो दादा परदादा है, बड़े बड़े बाग लगे हुए है खूब, लेकिन आज हम लगातार दोहन कर रहे हैं उनको, अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, लेकिन उतने पेड़ लगा ना पा रहे हैं।
0: हाँ, मतलब उतने पेड़ लगा नहीं पा रहे, एक जागरूकता की भी कमी है, थोड़ी लोगों के पास भूमि की भी कमी है, लेकिन यदि भूमि कमी देखी जाए तो कमी नहीं है। नहर पर बहुत सरकारी जगह पड़ी है, आप उस पर पेड़ लगाई, कोई मना करेगा सरकार की तुमने पेड़ क्यों लगा दिया?
1: ना ना, बिल्कुल बात सही है,
0: है ना, उस पर फलदार पेड़ लगाइए, तरी भी आती रहेगी, तुम्हें अभी पानी भी लगाना पड़ेगा। अब सब जगह तुम पेड़ लगा दो, फलदार वृक्ष लगा दो, पूरी एरिया खाए तो कम पड़ जाएंगे क्या? नहीं कम पड़ेंगे साहब,
1: बिल्कुल बात सही है, फल भी आपको मिलेंगे, छाया भी आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं अगर कहीं
0: इसमें लकड़ी की आवश्यकता हो, जैसे यहाँ फौरे कसी की बेंट हम डालते हैं, छोटा मोटा पेड़ काट आपने उसमें डाल लिए,
1: बिल्कुल बात सही है,
0: इसमें बहुत आवश्यकताएं पूरी होंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमने पेड़ लगाया तो हम अपने यूज करें, ये सोच गलत है। यदि हम पेड़ लगा देंगे हम नहीं खाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें उसके फल खाएंगी साहब।
1: बात सही है, बिल्कुल आपने जो बात कही कि जैसे कहीं नहर पे या कहीं रोड पे अगर हम पेड़ लगा देंगे तो हम ना खाएंगे, लेकिन जो हमारे जो राहगीर वहां से जाएंगे, कहीं जामुन को पेड़ लगो वो, जैसे आम को पेड़ लगो वो, तो वहां रुके और कहीं जामुन ऊपर से कालिया गिर गो तो अपने उठाए उन्हें खा लो,
0: खा लिया। और नहर के किनारे तो साहब नमी रहती है, तो आपको गर्मियों में भी पानी नहीं लगाना पड़ेगा और उसी नमी से पेड़ चलते रहेंगे साहब, आने वाले समय में फल की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ में जैसे हम कोई फल खाते हैं, जैसे आम की गुठली है, जामुन की गुठली है, तो हम इनको एक कूड़े में न डाल के ऐसी ठिया डाल दें कि वहाँ से नए पौधे पनपने की पूरी संभावना हो
1: जी।
0: तो उससे क्या हो, एक तो हमें पेड़ लगाने कम पड़ेंगे और वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बढ़ेंगे, तो उनसे भी फल मिलेंगे साहब हमारे लिए,
1: बिल्कुल। और जो राहगीर हैं आते आते उनको खा सकेंगे। और इसके साथ साथ यशपाल जी, जैसे आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है कि जो फल हम खाते हैं जैसे जामुन है, आम है, जो भी फल हम खा रहे हैं, तो उनके जो बीज हैं उनको संरक्षित कर लें, संभाल के रख लें। अब आप कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, तो एक थैली में या थैला में रख लें, और कहीं पर आपको लग रही है कि भाई यहाँ पर पेड़ की कमी है, तो वहाँ पर आप डाल दो और प्राकृतिक जो अपने आप संजो लेगी और पेड़ जो है तैयार हो जाएगा। तो जो हम देख रहे हैं कि आपने कुछ अभी छोटे छोटे पेड़ जो लगाए, जो क्या क्या पेड़ है?
0: ये नींबू का है, केले का भी हमने लगाया है, आम का भी लगाया है, ये करौंदा है, ये छोटा छोटा होता है करौंदा, अचार डाल पड़ता है इसका, ये भी पेड़ हमने लगाए हैं, कुछ पेड़ हमारे चल भी रहे फल, और ये भी तैयार हो जाएंगे जल्दी। हम तो ये कहते हैं हर इंसान को लगाना चाहिए साहब, भले हम फल ना खाएं, हमारी आने वाली नस्लें तो खाएंगी
1: जी। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि भले ही हमें स्वयं फल खाने को ना मिले, लेकिन जो राहगीर हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो फल उनको प्राप्त होंगे और जो छाया है वो भी उनको प्राप्त होगी। दूसरी बात, ये खुली हवा में वो भी सांस ले सकेंगे।
0: हमारे पूर्वज ने जो पेड़ लगाए उनके फल हम खा रहे हैं साहब,
1: बिल्कुल बात,
0: हम लगा के जाए हमारे आने वाली नस्लें खाएं,
1: तो वो भी आपको याद करेंगे।
0: हाँ, ये सोच होनी चाहिए साहब
1: जी,
0: पूरे समाज की हमारी सोच होनी चाहिए, इसी से कल्याण है, सबकी समृद्धि है इसी में
1: जी। चलते चलते जो हमारी और आपकी बातचीत को सुन रहे हैं किसान भैया बहन अपने रेडियो सेट पर, और चूंकि हम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह भी मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले सभी साथियों से?
0: देखिए साहब, हम तो ये चाहेंगे साल भर मनाए इस त्योहार के लिए, और जैसे हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बच्ची का जन्मदिन है, या हमारी सालगिरह है, तो हम मोमबत्ती भले चाहे ना लगाएं, लेकिन हम एक पेड़ जरूर लगाएं साहब, इससे हमें हमेशा शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ी, सभी चीज की, पर्यावरण के भी संरक्षण होगा, इससे बहुत बढ़िया वो रहेगी इसकी
1: जी। बहुत अच्छी सोच है आपकी इसपाल जी, जो आपने कही, जैसे माने जो बच्चा को जन्मदिन है या हमारी कोई सालगिरह है, तो ऐसे मौके पर वृक्ष जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आप कोई वृक्ष लगा देंगे तो तुम्हारे भी ध्यान रहेगा कि भाई बच्चा हमारा 10 साल को, तब हमने जामुन को पेड़ लगाओ, या हमारी साहब बादवी एनिवर्सरी, तब हमने जो है आम को पेड़ लगाया
0: करेंगे, बोले ये किन्ने लगा दी, बोले साहब उनने अपने बच्चे के जन्मदिन पर लगाया, एक यादगार भी बनी रहेगी
1: जी, और पर्यावरण भी हमारा,
0: मानव होने का यही दायित्व होना चाहिए साहब
1: जी। और एक बात साथ आपने बहुत

बड़ी कही है कि जो हम वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं तो ऐसे वन महोत्सव सप्ताह हम पूरे साल भर हाँ। मनावे और साल भर जहाँ भी आपको मौका लगे तो हाँ। आप जो है वृक्षारोपण जरूर करें। यशपाल हाँ। जी बड़े ही विस्तार से आपने हमारे सुनने वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम समझते हैं कि हमारे साथी सुनकर लाभान्वित होंगे। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया बहनों देखो, अभी आपने सुनी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत ये भेंट वार्ता खेतीबाड़ी के संग बागवानी जिसके विषय में जानकारी दे रहे युवा सफल कृषक श्री यशपाल जी, जिनसे हमने बातचीत करी। और भैया बहनों देखो, हम भी आपसे यह कहेंगे कि भैया अगर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने हैं तो हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगावें, और वृक्ष लगाने के बाद ये नहीं कि वृक्ष लगाए और उसको ऐसे छोड़ दो, उसकी देखभाल भी हमको करने हैं जिससे कि जो पेड़ हैं वो बढ़ के हमें छाया और

कार्यक्रम के अंतर्गत ये भेंट वार्ता खेती बाड़ी के संग बागवानी जिसके विषय में जानकारी दे रहे युवा सफल कृषक श्री यशपाल जी जिनसे हमने बातचीत करी। और भैया उन्होंने देखो हम भी आपसे यह कहेंगे कि भैया अगर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने हैं तो हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगावें, और वृक्ष लगाने के बाद ये नहीं कि वृक्ष लगाए और उसको ऐसे छोड़ दो, उसकी देखभाल भी हमको करने हैं जिससे कि जो पेड़ हैं वो बढ़ के हमें छाया और फल दे सकें। फिलहाल भैया बहनों अब हल्के हल्के जो समय रो वो हिरो है गौने वही को, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक ब्रज लोकगीत जमुना किनारे मेरो गांव श्याम तुम आ जियो, जिसको सुनने के लिए फरमाइश हमको सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी है आप हैं मालवा लेडी श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोड जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, और आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसाबा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य। और जे फरमाइश हमको पत्र के माध्यम से भेजी है जिला बदायूं ग्राम दूनीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमान है। और जे फरमाइश हमको मिली है कोहिका बिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल की, धमदा ग्राम सुखरी कला से लिखने वाले हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषी, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं जो ब्रज लोकगीत।

जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइयो। भैया बहनों अभी हम सब ने मिलकर सुनो जो ब्रज लोकगीत जिसको सुर दो मधुर अग्रवाल ने। और भैया अगले लोकगीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है आफे आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिराही महराज जहां और उनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमको भेजिए कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय और दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से आफे प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी अनम अब्बासी नसीब वारसी यशव अब्बासी सुहेल हसन अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आफ हैं कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य किरण मौर्य दृष्टि मौर्य मानवी मौर्य और यहीं से आफ हैं अनोखलाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल मौर्य वेदराम कैलाश सुनील मौर्य खुशबू मौर्य आरोही स्वाति और उनके परिवार के सदस्य। और यही फरमाइश सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिख के भेजिए प्रदीप कुमार जी ने। तो आबो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं जो प्यारो से लोकगीत आवन दो मेरे राजा जी को जिसको सुर दो है शालिनी शर्मा।

तो भैया मैंने देखो अभी आप सुन रहे हैं जो मदर लोक गीत, आवन दो मेरे राजा जी को देखी चाल लगाई दूंगी, इसको स्वर दो शालिनी शर्मा ने। लेकिन भैया जी सिर्फ मनोरंजन हो यानी लोग ही सुन रहे हैं, लेकिन परिवार में हमें आपस में सबको मिलजुल कर रहने हैं, चाहे देवरानी हो, जिठानी हो, भैया भैया हो, या फिर भैया सास ससुर हों, सबके साथ मिलकर रहने हैं, क्योंकि जो परिवार मिलकर रहता है वो भैया अपने विकास अपनी तरक्की अच्छे तरीक़ा से करता है। और अब हल्के हल्के भैया आपसे समय जो है विदा लेने को भी आ रहा है, लेकिन चलते चलते हम आपसे भैया एक बार फिर कहेंगे कि भैया हमें अपने स्वास्थ्य को अगर ध्यान में रखने हैं, हम चाहते हैं कि भैया हम अपना जीवन खुशहाल रूप से बितावें और स्वस्थ रहें, अच्छे तरीके से जो काम धंधे उनको कर सकें, तो जाके लिए भैया बहुत ही ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य से पहले हमें अपने पर्यावरण को ध्यान रखने पड़ा है, जो आसपास के वातावरण है उसको भी साफ सुथरा रखना पड़ा है, और जो पर्यावरण है उसको साफ और स्वच्छ रखना पड़ा है, तभी हम खुली हवा में सांस ले पावेंगे। तो जाके लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया देखो वन महोत्सव सप्ताह हम मना ही रहे हैं और बड़ो ही सटीक समय भी चल रहा है, क्योंकि जुलाई और अगस्त को जो वृक्ष लगाने को उचित समय होते, तो ऐसे समय में भैया आप जो है अधिक से अधिक वृक्ष लगावें, और अगर आपके काकू बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी, तो उस उपलक्ष्य में भी आप वृक्ष लगा सकते हैं। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के बीच आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपने भैया कृष्णपाल मौर्य को दो अनुमति और करो स्वीकार। भैया बहनों राम राम।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ज्ञान जगत 104.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बड़ी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि पाठशाला। आज का विषय है आर्द्र मौसम में तनेला रोग का प्रबंधन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उज्ज्वल डे, साथ ही हैं पशुपालक।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: कृषि पाठशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हमारी कृषि पाठशाला का विषय है आर्द्र मौसम में थनैला रोग का प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर उज्जवल कुमार डे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, IVRI इज्जत नगर बरेली से हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ एक पशुपालक हैं हमारे साथ, दयाराम गुप्ता जी, जो कि इज्जत नगर बरेली से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारा विषय है आर्द्र मौसम में थनैला रोग प्रबंधन, तो अब हम कहेंगे गुप्ता जी से कि अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछें।
2: जी जी, नमस्ते डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार। नमस्कार।
2: ये थनैला रोग क्या है डॉक्टर साहब?
3: हाँ जी। जो जो पशु दूध देता है, दुधारू पशु,
2: जी जी,
3: जैसे गाय बोलिए, भैंस बोलिए, इवन बकरी, भेड़, कि उन्हें बच्चा देने के बाद उनका बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, तो थन में जो बीमारी होता है उसी को थनैला बोला जाता है। थनैला को पहचानने का एक तरीका क्या है, जैसे मान लो पशु दूध दे दिया, पशु दूध देने के बाद एक दो दिन के बाद देखा जाता है थान का भी, जब दूध निकलने जाते हैं तो थान में जब हाथ लगाते हैं तो कभी कभी पशु को दर्द महसूस होता है। कैसे पता चलता है दर्द? पशु लात मारेगा। दूसरा है कि आप थान में जब हाथ लगाएंगे थान गर्म महसूस होगा।
2: जी जी।
3: दूसरा है थान का साइज काफी बड़ा हो जाता है।
2: जी।
3: और अंत में क्या होता है, जब दूध निकलेंगे, जो दूध जो नॉर्मल जो सफेद कलर का होता है, व्हाइट, वो कभी कभी ब्लड आता है, कभी कभी पास आता है, तो किसानों को देख के आसान से पता चल जाए ये दूध नॉर्मल नहीं है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं जिसको थनैला हो गया।
2: ये कैसे होता है डॉक्टर साहब?
3: मोस्टली ज्यादा से ज्यादा देखा गया कीटाणु से होता है, जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है।
2: जी।
3: तो कीटाणु क्या होता है? कीटाणु जो पशु जहाँ रहते हैं, जहाँ के बांध के रखते हैं, वो चारों तरफ बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या है, हर टाइम वो थनैला नहीं करता है।
2: जी।
3: जब पशु बच्चा दे देता है, जब हाई दुधारू पशु जो ज्यादा होता है, दूध निकलते जाते हैं, तो अचानक उनका रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है। जब रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है और थान का सफाई में थोड़ा कमी रह जाता है, तब क्या होता है, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे धीरे धीरे थान का जो छेद से वो अंदर जाता है, तो अंदर जाके वो बैक्टीरिया ग्रोथ होगा और उसके बाद वो थान का जो अंदर जो सेल है उसको डैमेज कर देता है, इसलिए थनैला होता है।
2: जी।
1: गुप्ता जी, अगला प्रश्न क्या है आपका?
2: उपचार क्या है इसका, थनैला रोग का?
3: हाँ, थनैला का उपचार बहुत इम्पोर्टेंट, सब किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा। थनैला में क्या है, थनैला को पहले हमको देखना पड़ेगा थनैला को रोका जाए कैसे। अगर थनैला हो जाएगा तो क्या करना है, थनैला को हो जाएगा तो पहले काम है, जब थनैला हो जाएगा थनैला को कितना जल्दी से हम इलाज करें, जितना थनैला में इलाज में देर होते जाएगा तो थनैला सही होने का चांस बहुत कम होता है।
2: जी।
3: तो थनैला अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो थान सही है, चार थान होता है, चार थानों में बीमारी नहीं होता है, जो थान पहले साफ सुथरा है उसको पहले हाथ धो के बढ़िया करके उसका दूध निकाल के अलग रखना है, फिर जो थान खराब है उसका दूध पूरा निकालना है, अंदर दूध रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना दूध रहेगा उसके अंदर ही कीटाणु उतना बढ़ते रहेगा, तो दूध को हमको खाली करना है। खाली करने के बाद क्या करना पड़ेगा, वही सारी दवा मिलता है जो थान के अंदर डाला जाता है, ट्यूब होता है, उसमें पतला नोजल होता है, जो नोजल थान का छेद से आराम से चला जाएगा, एक बार में नहीं चलेगा काम, सुबह एक बार करना है, फिर सारा दिन कुछ नहीं करना है, थान को दवाई डाल दिया, पर ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, फिर शाम को सोने का पहले फिर वो दूध को सफाई करिए, फिर ट्यूब डालिए, ऐसे दिन में दो बार आपको तीन चार दिन दवाई डालेंगे तो आपका वो थान धीरे धीरे सही हो जाएगा। दूसरा है, मान लीजिए थान में दर्द है तो ऊपर से थोड़ा दर्द का दवाई देना पड़ेगा, खून आ रहा है तो खून रोकने के लिए भी इंजेक्शन मिलता है, मार्केट में इंजेक्शन देना है, और बाहर से कभी कभी हमको एंटीबायोटिक देना पड़ता है जो मास में लगता है, तो ऐसे करके आप ट्रीटमेंट करेंगे तो, और नजदीकी जो क्वालिफाइड वेटरनरियन है, पशु चिकित्सक, उनको परामर्श लेके आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो थनैला सही हो सकता है। लेकिन फिर एक बार बोलना चाहूंगा, जो थान में थनैला होगा उसका दूध को जमने नहीं देना है, एक बार सुबह करना है, एक बार शाम को, कम से कम 10-12 घंटा अंतर होना चाहिए, ऐसे अगर प्रोसीड्योर कोई भी किसान भाई फॉलो करेंगे तो वो थनैला जरूर सही हो जाएगा।
2: जी जी। डॉक्टर साहब, थनैला रोग का बचाव कैसे कर सकते हैं?
3: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थनैला को रोकने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब पशु गर्भा कंडीशन होगा, जब लास्ट प्रेगनेंसी में 3 महीना रह गया मान लो बच्चा देने वाला, तब से हमको उद्देश्य ये रहना चाहिए उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, तो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, जैसे कहीं सारी विटामिन मिनरल मिक्सचर मार्केट में मिलता है, अच्छा ब्रांडेड

0: कंपनी का 50-50 ग्राम करके देना पड़ेगा। एक तो होगा उसमें आपका जो बच्चा स्वस्थ होगा, दूसरा है दूध उत्पादन बढ़ेगा, तीसरा है रोग प्रतिरोध करोगा, जो बाद में बच्चा देने के बाद ये नहीं होता है, थानेला नहीं होगा। लेकिन बच्चा देने के बाद क्या होता है, फिर उसका रोग प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए ये होता है थानेला होता है। तो थानेला को रोकने के लिए क्या करना, पहली बात है जो पशु बच्चा दे देगा उसको इमीडिएटली बैठने नहीं दे रहा है, क्योंकि ना उसके साइड में गंदगी रहता है, पेशाब रहता है, यूरिन रहता है, गोबर रहता है, तो उसमें तुरंत वो बैक्टीरिया वो वेट करता है कब अंदर जाऊं, तो उसको बैठने नहीं देना। उसका पहले क्या करेंगे, थान को बढ़िया करके सफाई करना है। कैसे सफाई करेंगे, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल वाला दवा मिलता है, एक मॉक में दवा ले लिया और एक पिंच देना है, जैसे थोड़ा पिंक हो जाए, ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए, फिर उसको उसी से आपको थान को बढ़िया करके पोच देना है। और जितना बार करेंगे उतना बार नया दवा बनाना पड़ेगा। वो दवा एक बार बना लिया, मान लिया 4-5 दिन चलेगा, ऐसे नहीं है, वो दवा खराब हो जाता है। तो एक बार बना लिया, दिन में 2-3 बार कर दिया, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, जब दूध निकालेंगे तो उस टाइम में क्या करना है, दूध देने के बाद एक आयोडीन का एक लिक्विड बनाना है, पोविटोन आयोडीन मिलता है, वो थान को अंदर से दूध देने के बाद वो डुबा देना है, ट्यूब से डुबा के 30 सेकंड से 1 मिनट रखना है, फिर निकाल देना, फिर पशु को छोड़ दीजिए, तो उसके बाहर जो कीटाणु रहेगा वो अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, दूध दोने का पहले सफाई करना है और दूध निकलने के बाद आयोडीन का वो डुबाना है उसमें। इसको पोस्ट टीथ डिपिंग और प्री टीथ डिपिंग बुलाता है। जो भी आपका व्यवसाय रूप से पशुपालन कर रहा है वो सब ऐसे, और विदेशों भी ऐसे प्रैक्टिस करता है उसमें, इसलिए थानेला कम होता है। दूसरा है आपको टाइम टू टाइम हमको मिनरल मिक्सअप देना है बच्चा होने के बाद भी, तो ये सब आप देखेंगे और साफ सफाई रखेंगे तो आपको थानेला कम होगा। और दूसरा है पशु को बीच बीच में कीड़े का दवाई भी देना चाहिए, पेट में अगर कीड़े ज्यादा हो जाएगा तो भी इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, तो उसमें दूध उत्पादन भी कम हो जाता है और पशु का बच्चा जो है वो भी दुबला हो जाता है। तो ये सब चीज आप मिनर खनिज लवण थोड़ा थोड़ा देना है और डीवर्मिंग टाइम टू टाइम कराना है और टीट डिपिंग, पोस्ट टीट डिपिंग, प्री टीट डिपिंग, माने थान का सफाई रखना। तो ये सब चीज करेंगे तो थानेला होने का चांस बहुत कम है। दूसरा है गर्मी का जो बात है, गर्मी में पशु काफी स्ट्रेस में आ जाता, तनाव में आ जाता है, तनाव होने के वजह से भी पशु में इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो इसलिए गर्मी का टाइम में पशु को छाया का जायगा में बांधा जाए, उसको भरपूर साफ पानी दिया जाए, तो उसमें भी आपका तनाव कम होगा और उसमें थानेला होने का चांस भी बहुत कम है। मैंने देखा कई बार पशु खरीद के लाता है बाहर से, तो उसमें 1 महीने के बाद वो इतना जबरदस्त थानेला हो जाता है, तो वो पशु आपका कितना लाखों का भी हो वो बेकार हो जाता है। और एक बात फिर बोलना चाहूंगा, थानेला का इलाज सक्सेसफुल तब होगा, फायदा तब होगा जितना जल्दी आप थानेला को इलाज करेंगे,
1: इलाज कराएंगे
0: और प्रॉपरली दवाई दें। थान के अंदर दवाई डालना है, दूध साफ करना है पहले थान के अंदर, और कितना जल्दी आप इलाज करेंगे, और ये इलाज कम से कम 4-5 दिन चलना चाहिए तो आपका थानेला सही हो जाए। क्योंकि ना काफी सारे किसान भाई को देखता हूँ, 1-2 दिन दवाई लगाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत है। दूसरा है थानेला होने के बाद देर होने में क्या नुकसान क्या है, अगर थानेला में इलाज करने में लेट होगा, मान लीजिए आप थानेला हुआ, आप कहीं मान लो चला गया रिश्तेदार से बात में आके ट्रीटमेंट कर, तब तो क्या होगा, थान हार्ड हो जाता है, जब हाथ देंगे ना बहुत सख्त हो जाता है, तो वो फाइब्रोसिस बन जाता है, और थान में एक बार फाइब्रोसिस हो गया वो थान कभी सही नहीं हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है, वो थान परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट और अनुरोध रहेगा किसान भाइयों को, जो थानेला जब होगा जल्दी से जल्दी इलाज कराए, दूध उसके अंदर जमने ना दिया जाए, और थान का साफ सफाई रखा बहुत जरूरी है। और जो मैंने डिपिंग बताया जो थान को धोने के लिए, वो आपको जो डिएजेंट आपको बाहर आराम से मिल जाएगा। तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज आप ध्यान देंगे तो हम थानेला से बचा सकते हैं, और पशुपालकों को जो हमारा किसान भाई हो उनका आमदनी भी बढ़ सकते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई थानेला रोग के बारे में, और इसके प्रबंधन के बारे में भी बताया, बचाव कैसे कर सकते हैं, उपचार भी आपने सब बताया, और सबसे बड़ी बात है उपचार तक पहुंचे उससे अच्छा है कि हम तरीका बचाव वाला।
0: सही
2: है। तो और अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे अब गर्मी का मौसम है, तो कुछ विशेष सावधानियां पशुपालकों को रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: हाँ, ये तो हमारा देश में तो ऐसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर जगह में बढ़ रहा है टेम्परेचर, और उसके साथ पशुपालन का एक बहुत बड़ा संपर्क रहा है
2: जी,
0: जैसे टेम्परेचर के साथ, तो उनका स्वास्थ्य के बारे में, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा पशु का एक टेम्परेचर सहने का क्षमता रहता है
2: जी,
0: जब उसके ऊपर चला जाता है वो पशु तनाव में आ जाता है, तो उस टाइम में क्या करना, जैसे पहले जब हम जमाने में देखते थे हम लोग गांव में बा शहर में, जैसे भैंस का हम लोग पालन करते तो तालाब होता था
2: जी,
0: भैंस का नेचर ही है वो थोड़ा बहुत घास खाएगा फिर तालाब में घुसा, क्योंकि ना उसका स्किन का जो टच का जो ये है उसका जो पसीना जो इतना निकलता होगा
2: जी,
0: तो उसको गर्मी के लिए उसका नेचर। आजकल क्या हो रहा है, हम बहुत रेयरली एक दो तालाब देख सकते हैं और वो भी बहुत गंदा होता है, उसको जाएगा, उनका नेचुरल हैबिट है।

0: लेकिन वो नेचुरल हैबिट से हम उसको अलग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है पशु में बीमारी ज्यादा होता है। इसीलिए जब तालाब नहीं होगा आपको पशु को ठंडा पानी से बढ़िया करके नहलाना पड़ेगा, तीन चार दिन में तीन चार बार जो भी पशु है। छाया जगह रखना चाहिए और साफ पानी देना चाहिए। दूसरा है उनको खनिज लवण देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। खनिज लवण क्या होता है, उसमें बहुत सारी सेलिनियम होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, जो उसको तनाव से बचा सकता है
1: जी।
0: एक गर्मी का टाइम में और एक समस्या होता है, उसमें कीड़े मकोड़ा ज्यादा होता है, कीड़े मकोड़ा मच्छी मक्खर बहुत ज्यादा होता है, और किलनी का समस्या होगा इस टाइम। कोई भी जितना भी पशुपालक भाई सुन रहे हैं हमको आज, जिसका घर में पशु होगा वो कभी ना कभी देखा होगा किलनी का समस्या है, तो किलनी से उसको बचाना है। किलनी से कैसे बचाएंगे, मैं इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ। जो हमारा मार्केट में कुछ दवाई मिलता है, जैसे बुटॉक्स मिलता है, साइपरमेथ्रिन मिलता है, साइपरमेथ्रिन सबसे बढ़िया सेब है, उसको क्या करेंगे, अगर किलनी हो जाएगा, किलनी से बचाना चाहिए। किलनी बाहर का परजीवी है, अंदर का परजीवी पेट में होता है, परजीवी से उसको मुक्त रखना पड़ेगा, तब वो तनाव कम होगा। तो जो साइपरमेथ्रिन दवाई 1 लीटर में 3 ml डालना है, 1 लीटर में 3 ml, मान लो 10 लीटर पशु को पालना है, तो 30 ml डाल के पहले सुबह उठ के पशु को पानी पिला दिया, खाना पीना खिला दिया, फिर मुंह कपड़ा में एक बांध दिया हल्का करके, जैसे चाट ना पाए, फिर उस पानी से पूरा नहलाना है। नहलाने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए आधा घंटा एक घंटा। जब पशु पशु गृह से बाहर चला जाएगा, तब जो दवाई और थोड़ा बना के एक आदमी का हाइट के हिसाब से पूरा पशु गृह में भी स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ना उसका जो दीवाल होता है उसमें जो किलनी ना वहां बैठा रहता है, उसका अंडा रहता है, तो उसको भी मारना जरूरी है। नहीं तो देखेंगे किलनी का दवाई तो दिया आपने, किलनी चला गया, फिर 10 दिन बाद फिर किलनी हो जा रहा है
1: जी, जी।
0: तो इसके अंदर का किलनी भी हमको हटाना पड़ेगा
1: जी।
0: तब आधा घंटा जब पशु घूम रहा है बाहर धूम में बाहर ऐसे नॉर्मली, तब धीरे धीरे वो किलनी नीचे निकल जाएगा दवाई से, और जो थोड़ा बहुत कांगी लेके उसको निकल दिया तो वो किलनी तो मर गया। और आधा घंटा में हम लोग जो यहाँ स्प्रे किया था वो दवाई का असर से अंदर का किलनी भी मर गया,
1: मर गया।
0: तो उसके बाद पशु को सादा पानी से बढ़िया करके नहला दीजिए, मुंह खोल दीजिए, फिर पशु गृह में रखिए। दूसरा है ये, और ये दवाई लगाने के बाद ये दवाई जो बनाएंगे, कोई घर का छोटा बच्चा हो उनके पास नहीं आना चाहिए, कोई पी ना ले, कोई पशु को ध्यान देखना चाहिए कि उन्हें जहरीला होता है, और ये सावधानी से आप करेंगे तो किलनी का समस्या हो जाएगा। तो किलनी का समस्या को हटाना पड़े, और पेट में जो कीड़े होता है उसका भी दवाई आता है, इंजेक्शन आता है, वो लगाएंगे समय समय पर। कम से कम पेट के कीड़े का मारने के लिए आपको साल में 3 से 4 बार करना पड़ेगा, 3-4 बार। तो ये हो जाएगा। दूसरा है खनिज लवण धीरे धीरे दीजिए, दूसरा है छाया में प्रबंधन करिए, और एक है थोड़ा हरा चारा का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है
1: जी, जी।
0: हरा चारा में पशुओं का स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, और भरपूर साफ पानी देना है। ये सब चीज देंगे तो आपको गर्मी का जो समस्या है पशु, जितना दुधारू पशु है उसमें उनको फायदा होगा और बीमारी भी कम लगेगा। और एक चीज है, पशु में खान पान होना प्रॉपरली होना बहुत जरूरी, खान पान प्रॉपरली, जिसको न्यूट्रिशन अगर कम होगा तो वो कम होगा तो दुनिया भर बीमारी वो पशु को अटैक करता है। आपको थानेला होगा, बच्चा होने में डिस्ट्रोकिया हो सकता है, दूसरा है आपका किलनी हो जाएगा तो फिर लाल पेशाब होता है, सारा का बीमारी आ जाता है। तो ये गर्मी का टाइम में जो किलनी वाला समस्या, माखी है जिसे डांस होता है, बड़ा बड़ा माखी, वो सर्रा करता है, तो उससे हमको बचाना है
1: जी।
0: तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो गर्मी का टाइम में पशु आपको स्वस्थ रहेगा, और आपको दूध उत्पादन सही रहेगा, और आपका परिवार खुशहाल रहेगा।
1: बिल्कुल। तो किसान साथियों, ये थी आज की कृषि पाठशाला। इसका विषय था आर्द्र मौसम में थनेला रोग प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर उज्ज्वल कुमार डे, और आपसे प्रश्न पूछ रहे थे श्री दयाराम गुप्ता जी। तो साथियों, आज की कृषि पाठशाला यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि पाठशाला 100.4 FM पर, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। अर्जुन पुत्र स्वर्गीय सुरेश, निवासी एकता नगर कॉलोनी, थाना मजूला, मुरादाबाद, हाल निवासी बड़े सरकार, थाना कोतवाली बदायूं, 14 अप्रैल 2024 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, बाल काले, इकहरा मजबूत जिस्म, ये नीली जीन्स की पैंट और

0: श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना। ग्राम पटपरागंज थाना उजानी जनपद बदायूं से धर्मवीर सूचित करते हैं कि उनका पुत्र रामशरण 21 मार्च 2026 से लापता है, जिसकी आयु लगभग 26 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 9 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत, ये सफेद रंग की टी शर्ट, जीन्स की पैंट और काली रबड़ की चप्पल पहने हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। सूचना समाप्त हुई।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।

0: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की एआई कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय यूपीटीईटी परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पीएफआरडीए के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
2: यूपी का एपीवाई स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस एपीवाई स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने

लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन, प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश, मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
2: मर्दाना कमजोरी,
4: महिलाओं के मूत्र रोगों,
2: गुर्दे की पथरी,
3: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
2: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्जित,
3: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे साथ स्टूडियोज में एक बार फिर मौजूद बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, हम कई बार अपने श्रोताओं के साथ पेशाब संबंधी समस्याओं की बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर इसी विषय पर बात करेंगे
6: जी।
5: और हमें विश्वास है कुछ नया हमारे श्रोताओं को सुनने को मिलेगा, जो उन्हें महसूस होगा कि वाकई में ये कुछ अलग तरह की समस्या है और इसका समाधान भी हो सकता है। इससे पहले हम अपनी बातचीत शुरू करें, एक श्रोता लाइन पर है। डॉक्टर साहब की समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
7: सर, मैं छविराम सिंह राजपूत, जिला फरुखाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ जी।
5: जी छविराम सिंह जी, आपकी क्या समस्या है? पेशाब संबंधी कोई समस्या है तो बताइए।
7: हाँ सर जी, ये जानना चाहता हूँ सर, हमें मतलब पानी पीने के अनुसार ही जैसा भी पानी पीते हैं वो मतलब पेशाब यानी की बहुत लगती है, दिन में भी और रात में भी।
6: मतलब बार बार जाना पड़ता है आपको?
7: हाँ बार बार।
6: अच्छा, और मात्रा कितनी आती है एक बार में
7: पेशाब की मात्रा?
6: हाँ, थोड़ी थोड़ी ही आती है या ठीक ठाक क्वांटिटी में मात्रा में आ जाती है?
7: ठीक ठाक आती है, ठीक ठाक सर।
6: कितनी उम्र होगी आपकी?
7: सर उम्र होगी हमारी 30 साल।
6: 30 साल की? तो एक काम तो आप जरूर करिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए।
7: अच्छा जी।
6: हाँ, सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखें कि किस वजह से है, कि 30 साल में तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ उम्र में ज्यादा हो जाए तो फिर हम कहते हैं प्रोस्टेट की या ये संबंधित बीमारी हो जाती है, लेकिन 30 साल में तो ये समस्याएं जो है या तो इन्फेक्शन है या कोई छोटी पथरी है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा के उसके बाद में फिर उसके आधार पे आगे जांच करके या उसी से ही उसमें कुछ आ जाता है।
7: और सर तो, हम डॉक्टर जी के पास गए थे तो वहाँ पर हमने शुगर लेवल भी चेक कराया तो शुगर तो बिल्कुल जीरो निकला।
6: अच्छा, नहीं इसमें पेशाब संबंधित बीमारियां भी हो जाती है जिसकी वजह से ये परेशानी होती है, तो आप सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसके बाद में फिर देखा।
7: और सर जी मतलब जितना भी पानी के अनुसार से हिसाब लगती है क्या?
6: आप पहले अल्ट्रासाउंड कराओ तब उससे क्लियर होगा कि जी परेशानी क्या है, कि गुर्दे आपका जो है वो पेशाब सही से बना रहे हैं या ज्यादा बना रहे हैं, उसकी वजह अलग अलग होती है। हाँ जी
5: ठीक है। छविराम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ने जो समस्या बताई कि इन्हें पेशाब बहुत आता है, आपने कहा अल्ट्रासाउंड करवाने की बात की, जबकि इनका कहना यह है कि इन्होंने शुगर का चेकअप भी कराया है, शुगर इन्हें नहीं है
6: जी।
5: कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि डायबिटीज या शुगर का एक सिम्टम, एक लक्षण कहा जाता है बार बार पेशाब आना, और आप लोग भी बताते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें बार बार पेशाब आती है

0: तो ये शुगर का लक्षण हो सकता है।
1: सबसे पहले तो शुगर चेक किया जाता है या इन्फेक्शन, ये दो चीज़ें जो हैं वो इस पर सिम्टम में सबसे पहले जांच की जाती है। तो इन्होंने जो है वो शुगर तो चेक करवा ली है,
0: जी
1: तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड करवाया है कि जी इसमें ये पेशाब की मात्रा ही ज़्यादा हो रही है या पेशाब की थैली सिकुड़ रही है जिसकी वजह से पेशाब जो है वो उसमें इकट्ठी नहीं हो पा रही है और
0: जी
1: बार बार जाना पड़ रहा है।
0: जी
1: तो ये दोनों वजह हैं जो है ये अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा।
0: अच्छा, ये
1: और
0: अल्ट्रासाउंड से मालूम हो जाएगा।
1: जी
0: जी
1: उसके बाद में फिर आगे की जाँच या उसका सिम्टम किया जा सकता है।
0: अच्छा, कई लोगों का मानना ये है डॉक्टर साहब, चूंकि पेशाब की समस्या है तो पेशाब की ही जांच होनी चाहिए।
1: ऐसा है ना, पूरी बॉडी जो है सिम्टम जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो
0: जी
1: इलेक्ट्रिसिटी या स्विच एक जगह होता है और बल्ब कहीं और दूसरी
0: बिल्कुल
1: जगह जलता है, तो
0: जी
1: शरीर भी एक पूरा एक सिस्टम है और परेशानी हो सकता है कि दिमाग में हो और उसका सिम्टम जो है वो हाथ में आए।
0: जी जी
1: तो इसीलिए जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिव या पूरी समझ के उसके बाद में मरीज को क्या लग रहा है वो बीमारी अलग होती है
0: जी
1: और डॉक्टर उसको पूरा एसेस करता है कि जी भाई इसमें कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
0: जी
1: सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो या आम होती हैं जाँचें पहले वो कराई जाती हैं
0: अच्छा,
1: और उसके बाद में फिर बीमारी की तह तक पहुँचा जाता है।
0: इसीलिए आपने अल्ट्रासाउंड की बात
1: जी
0: कही है डॉक्टर साहब। चूंकि हम पेशाब संबंधी बीमारियों की बात कर रहे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं, कई बार होता यह है कि पेशाब में खून आ जाता है, लाल पेशाब आने लगती है और कई बार तो पस तक आ जाता है,
1: जी
0: तो ये किस तरह की बीमारी है? क्या वाकई में ये पेशाब से ही संबंधित बीमारी है, कहीं और भी कुछ होता है शरीर में?
1: ये पेशाब के रास्ते खून आना या पस आना इसका मतलब है गुर्दे की पूरे सिस्टम शुरुआत से लेके आखिर तक कहीं भी परेशानी हो सकती
0: गुर्दे
1: है,
0: की?
1: गुर्दे की, उसकी नली में, पेशाब की थैली में, प्रोस्टेट में
0: अच्छा,
1: या पेशाब के रास्ते बाहर निकलने वाले रास्ते में, इनमें कहीं भी परेशानी हो सकती
0: पूरे
1: है
0: पेशाब तंत्र में?
1: तंत्र में।
0: जी
1: दूसरी हो सकती है कि ये कुछ खून की ऐसी बीमारी है जिससे गुर्दे से वो ब्लड सेल्स जो है वो फिल्टर होके आ रहे हैं और उसके बाद में खून आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या गुर्दे की बीमारियां।
0: अच्छा
1: तो ये सिम्टम है, इसमें फर्दर जांचे
0: जी
1: और साथ में एसोसिएटेड या साथ में कोई और बीमारियां या लक्षण हैं
0: जी
1: उसके आधार पे देखा जाता है कि गुर्दे में पस या ब्लड क्यों आ रहा है।
0: अच्छा,
1: आमतौर पे शुरुआत में हम जो कॉमन या जो आम बीमारी होती है उसकी जांच करवाते हैं
0: जी
1: और उसके बाद में उसमें अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में नहीं आता है तो
0: जी
1: फिर एक बार दूरबीन से अंदर चेक कर लिया जाता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: दूरबीन
1: कई
0: से भी
1: बार,
0: जांच होती है?
1: हाँ कई बार शुरुआत की चीज़ें हैं जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इवन सीटी स्कैन भी जो है वो नॉर्मल होता है,
0: जी
1: लेकिन दूरबीन से जो है वो माइक्रोस्कोपिक या 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर की भी कोई बीमारी है या कोई गांठ है पेशाब की थैली में या कहीं भी, तो वो भी पकड़ में आ जाती है।
0: तो दूरबीन डॉक्टर साहब जांच करने के लिए अंदर डालते हैं या बाहर से ही देख लेते हैं?
1: दूरबीन तो पेशाब के रास्ते ही दूरबीन से जाके अंदर डाली जाएगी
0: जी
1: ताकि
0: जी
1: पेशाब की थैली की अंदर ही जांच हो जाए, जिसको
0: जी
1: एंडोस्कोपी या सिस्टोस्कोपी बोली जाती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। कई लोग ये मानते हैं कि आज हम जब लिथोट्रिप्सी की बात करते हैं, लेजर की बात करते
1: जी
0: हैं, तो शायद कोई ऐसी जांच हो जो कि बिना अंदर डाले भी तय हो जाए, शायद इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया
1: हाँ, नहीं
0: आपसे।
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि सीटी स्कैन एमआरआई जो है
0: जी
1: वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी पकड़ लेता है,
0: जी और जबकि
1: लेकिन
0: उसमें अंदर कुछ नहीं डाला जाता।
1: कुछ नहीं डाला जाता है,
0: जी
1: लेकिन कई जगह ऐसी हैं
0: जी
1: जिसमें सिस्टोस्कोपी या दूरबीन से जांच या एंडोस्कोपी से ही पता चल सकता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन सब नॉर्मल होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक श्रोता इसी बीच आ जाए,
1: जी
0: इनकी समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
1: हेलो,
0: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। हाँ ममता जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? अगली आवाज डॉक्टर साहब की, डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। हाँ बताइए।
2: कभी कभी पेशाब में जलन भी होती है हमें।
1: पेशाब बार बार भी जाना पड़ता है?
2: नहीं, बार बार नहीं जाना पड़ता है, लेकिन जलन की लगती है कि जलन हो रही है।
1: अच्छा, तो फिर ठीक कैसे होती है? पानी ज्यादा पीने से या फिर जो है कुछ दवाई खाने से होती है ठीक?
2: पानी ज्यादा पीने से भी हो जाती है कभी कभी ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दवा खाते हैं फिर भी आराम नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों।
1: हाँ ऐसा है ना, जिस समय पानी कम पियेंगे तो पेशाब जो है ना वो एसिड होती है, तो उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जलन होना शुरू हो जाती है। तो आप आमतौर पे पानी ज्यादा पिया करिए, कम से कम दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए, 10 से 12 गिलास पानी। इसके बाद भी सही नहीं होती है तो उसके बाद में कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देख ले कि अंदर कोई और समस्या तो नहीं है। वैसे पानी ज्यादा पीने से काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो सकती है।
2: ठीक है,
1: अच्छा,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, पेशाब की जलन की समस्या इन्होंने बताई
1: जी,
0: और कई बार लोगों को पेशाब में जलन होती है तो आप डॉक्टर लोग ये भी कहते हैं कि पथरी हो सकती है
1: जी,
0: और जबकि

0: आप ही बता चुके हैं हमारे श्रोताओं को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार कि हमारा ये क्षेत्र स्टोन बेल्ट है, यहाँ पथरी बनने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। आपने तो इतनी बड़ी बड़ी पथरियां निकाली हैं कि आपने तो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है डॉक्टर साहब। तो हम इस बारे में आगे बात जारी रखेंगे। एक और श्रोता आ गए, इनसे पूछ लेते हैं इनकी।
1: हेलो
2: हेलो, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, बताइए। हाँ बताइए।
0: पेशाब रुक जाती है
2: तो कितनी उम्र है उनकी?
1: उनकी उम्र होगी लगभग 40 साल।
2: अच्छा, और कोई समस्या भी है?
1: और कोई समस्या
2: तो नली भी डलवानी पड़ती है कभी कभी?
1: हाँ,
2: कुछ जांचें वगैरह करवाई हैं?
1: दवाई भी खवाई थी कई बार।
2: नहीं, कुछ जांच करवाई है पेशाब के रास्ते से करवाना पड़ता है इसमें।
1: अच्छा
2: हाँ, कि भाई किस वजह से है? 40 साल की उम्र में जो है ना, हो सकता है पथरी हो या कोई पेशाब की नली में कोई कमी हो, तो एक जांच करवा लें। उस पेशाब के रास्ते एक्स-रे करवाना पड़ता है।
1: अच्छा सर,
2: चलिए ठीक है जी।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्टोन बेल्ट की, और आपने चूंकि एक रिकॉर्ड बनाया है, इतनी बड़ी बड़ी पथरियां और बहुत छोटे छोटे बच्चों के भी पेशाब तंत्र से पथरियां निकालने का रिकॉर्ड आपके नाम।
2: एक 8 साल का बच्चा है जिसमें 8.5 सेंटीमीटर मतलब 85 mm की पथरी है।
0: 85 mm की पथरी निकाली आपने,
2: और दूसरी वाली थी वो भी काफी बड़ी पथरी
0: जी। तो
2: दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज है।
0: जी जी, वैसे तो ये गौरव की बात है बरेली के मेडिकल प्रोफेशन के लिए और चिकित्सा जगत के लिए, लेकिन एक तरफ ये सोचने की बात भी है आखिर ऐसा होता क्यों है
2: जी।
0: तो हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि पथरी के पीछे की जो वजह है, उससे पहले सिम्टम पे ही बात कर लेते हैं। पेशाब की जलन के साथ कैसे आप जोड़ते हैं कि इसमें पथरी की भी संभावना है? क्या वो वाकई में एक सिम्टम है पेशाब में जलन होना?
2: देखिए, पेशाब तंत्र में कहीं भी कोई परेशानी होती है
0: जी,
2: तो शरीर जो है वो उसका ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए उसमें ऐसे सिम्टम बनाता है ताकि ये बता सके कि जी कोई परेशानी है। तो उसमें परेशानी शुरुआती होती है, तो पेशाब तंत्र में जो है वो पेशाब बार बार जाना होता है, जलन होती है, फिर थोड़े से जख्म अंदर बनना शुरू हो गए तो उसमें पस आना शुरू हो जाता है या खून आना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण हैं कि अंदर कोई समस्या है। आम तौर पे और अपने एक्सपीरियंस पे और इस क्षेत्र में क्या बीमारियां कॉमन हैं, वो लक्षण की वजह जानने के लिए बीमारियां देखी जाती हैं, जांच करवाई जाती हैं, और उससे संबंधित जो है वो जांच करने के बाद में निश्चित किया जाता है कि बीमारी क्या है।
0: डॉक्टर साहब इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर आ गए हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: नमस्कार, बताइए अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न पूछिए।
3: मेरा नाम रेनू है
2: जी। क्या समस्या है आपकी?
3: हमारी ये समस्या है कि पेशाब बहुत जलन होती है, बार बार जाना पड़ता है, पैसा भी सोचे नहीं आते है।
2: कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। अच्छा, ये समस्या पहले भी रही है आपको?
3: ये पहले नहीं रही, अभी
2: तो एक बार आप अपनी इस उम्र में जो है ना, सबसे ज्यादा महिलाओं में जो है पेशाब का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है जिसको हम UTI बोलते हैं, तो उसकी जांच एक बार करवा लीजिए, पेशाब की जांच, और तब पता चले कि जी इसमें बीमारी किस वजह से है। तो आमतौर पे जो है वो UTI ही संबंधित होता है, लेकिन और भी वजह हो सकती है, पथरी हो सकती है, इसलिए जांच करवाने के बाद पता चले कि क्या है ये। जी ठीक
0: ठीक है जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी पथरी की, उसके सिम्टम्स की
2: जी,
0: और आपने बताया कि जांचों के बाद आप तय करते हैं। कई बार ऐसा होता है अल्ट्रासाउंड जैसी जांच कराने के बाद पथरी नहीं पता लगती है, और कई बार आप एक्सरे की सलाह देते हैं, तो इन जांचों का कब क्या उपयोग होता है?
2: देखिए, अल्ट्रासाउंड में कोई भी पथरी जो है वो 70-80% तक ही पकड़ में आती है।
0: अच्छा,
2: कुछ पथरियां ऐसी होती है जो कि अल्ट्रासाउंड में नहीं आती है, कुछ एक्सरे में नहीं आती है।
0: अच्छा,
2: आजकल जो हम आधुनिक और लेटेस्ट CT स्कैन करवाते हैं उसमें गुर्दे की पथरी जो है वो 100% पता चल जाती है।
0: अच्छा, कितनी भी छोटी हो जाए?
2: कितनी भी छोटी हो।
0: अच्छा,
2: तो उसमें है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
2: तो इसलिए CT स्कैन हाँ थोड़ा सा महंगा होता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से, इसलिए हम रूटीनली शुरुआत में नहीं कराते हैं
0: जी।
2: लेकिन जिनमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में नहीं आती है और हमें लगता है कि इसमें पथरी की समस्या हो सकती है, उन केसेस में CT स्कैन करवा के हम 100% सुनिश्चित कर लेते हैं कि उसमें है या नहीं है।
0: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब एक और श्रोता लाइन पर हैं, इनकी बात सुनते हैं। अपना परिचय बताते हुए अपना प्रश्न बताएं।
4: मैं कुमारी प्रियदर्शनी रानी बोल रही हूँ, रामपुर गार्डन से।
0: हाँ प्रियदर्शनी जी, बताइए क्या समस्या है?
4: हमारे एक मित्र है, उनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है
2: जी,
4: यूरिक एसिड 10 के आसपास है।
2: अच्छा,
4: उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, क्या दवा लेनी चाहिए, बताइए।
2: यूरिक एसिड 10 है तो वो तो काफी ज्यादा है। यूरिक एसिड की समस्या बढ़ने से दो जगह

0: परेशानी आती है। एक तो जो आती है जॉइंट्स में, जो है घुटनों में या हाथों में, जो है जब वो जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो दर्द होता है या सूजन आ जाती है। दूसरी होती है गुर्दे की परेशानियां, जिसमें कि पथरी बन जाना शुरुआत हो जाती है और पेशाब संबंधित बीमारियां या पथरी निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें ये दवाइयों की वजह से, दवाई से ही कंट्रोल किया जा सकता है। रूटीनली आप अल्ट्रासाउंड कराएं और उसके बाद में फिर देखें कि जी इसमें घुटनों में है या गुर्दों में है यूरिक एसिड का जमाव की वजह से परेशानी कहाँ है, और साथ साथ में खून में यूरिक एसिड कम करने के लिए दवाइयाँ शुरू की जाती हैं।
1: किस चीज की जांच बता रहे हैं सर?
0: गुर्दे में पथरी है या नहीं है यूरिक एसिड की वजह से, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, और जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो गया नहीं हो गया उसके लिए एक्सरे करवाया जाता है।

0: जाता है और जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो गया नहीं हो गया उसके लिए एक्सरे करवाए जाते हैं।
1: क्या खाए और क्या ना खाए?
0: नहीं, यूरिक एसिड किस वजह से है सिर्फ अकेले उससे नहीं होता है, उसमें प्रोटीन की चीजें बंद हो जाती हैं, लेकिन पहले जांच करवा के ये देखना पड़ता है कि बीमारी कितनी है और कहाँ कहाँ है इतना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो पहले उस चीज को यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए दवाई शुरू करनी होती है और उसको मेंटेन करने के लिए फिर खाने पीने की और पानी की जो है वो हिदायतें देते हैं। दस यूरिक एसिड जो है वो बिना दवाई के कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल है, पहले आपको उसको दवाई ही लेके कंट्रोल करवाना पड़ेगा या फिर किसी फिजिशियन से मिलके और अपना उसको दवाई शुरू करवा के फिर उसको मेंटेन खान पान से कर सकते हैं, वो तो सही है।
2: जी डॉक्टर साहब, इन्होंने यूरिक एसिड की समस्या बताई, ये बीमारी को भी लोग पेशाब से ही जोड़ कर देखते हैं, पेशाब तंत्र से जोड़कर, क्योंकि यूरिक का मतलब ही पेशाब से
0: यूरिन है और एसिड है, दोनों चीजें ही हैं इसमें, तो इसलिए।
2: जी डॉक्टर साहब, अच्छा इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे, एक बड़ी खास एक बात है और आज तो जरूरी आपसे पूछनी है, पथरी की बात हम कर रहे हैं, स्टोन बेल्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, लोगों को बार बार पथरी होने की भी समस्या रहती है।
0: जी।
2: पथरी हुई, उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेजर से किसी और तकनीक से निकल गई, उसके बाद फिर हो गई।
0: जी,
2: तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए ये एक पूरा अलग एक चैप्टर है।
2: जी,
0: जिसको हम कहते हैं रिकरेंट यूरिनरी कैलकुलाइस, का मतलब है बार बार पेशाब तंत्र में पथरी बनने की समस्या है।
2: जी,
0: बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको 2 mm, 4 mm, 6 mm की बार बार पथरियां निकलती रहती हैं।
2: जी जी,
0: और पेशाब के रास्ते निकल जाती हैं, कुछ आके अटक जाती हैं।
2: जी,
0: तो इस चीजों में जो है पथरियां उनको निकालना और आगे ना बने उस चीज के लिए दोनों चीजों पे हमें काम करना होता है।
2: जी जी,
0: तो आपके दूसरे प्रश्न पे पहले मैं जवाब दूंगा कि जी जिस चीज से हम जो है वो आगे ना बने उस चीजों के लिए,
2: जी
0: उसके लिए कुछ जांचें होती हैं कि जी यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, किस तत्व से जो है वो चीज बन रही है।
2: अच्छा, अच्छा।
0: तो उसमें कुछ पेशाब की जांच होती है, 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसके बाद में उसमें जो है वो आंशिक चीजें देखी जाती हैं कि कितनी मात्रा है। दूसरे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें चीजें खिला के और उसके बाद में देखा जाता है कि वो चीज यूरिन में आ रही है नहीं आ रही है।
2: अच्छा।
0: आमतौर पर देखा गया है कि जी ये यूरिक एसिड, कैल्शियम, ऑक्सलेट और इन चीजों की और पेट खराब की वजह से भी ये परेशानियां होती हैं।
2: अच्छा।
0: बार बार जो है वो स्टोन बनने की परेशानी जो है आंतों से भी जुड़ी जाती है कि आंतें जो है वो कैल्शियम या ऑक्सलेट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही, ज्यादा अंदर ले रही है।
2: अच्छा।
0: तो इसलिए गुर्दे पर ज्यादा लोड पड़ता है।
2: जी।
0: तो इस चीज की एक बहुत सिस्टमेटिक या बहुत तरीकेबद्ध से जांच बहुत जरूरी है। आमतौर पे लोग उस पर थोड़ा सा हिचकिचाते नहीं करवाते हैं क्योंकि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग या समय लेने वाली है, लेकिन पूरी जांच के बाद में ये ज्यादातर पता चल जाता है कि किस वजह से और किस तत्व से बन रही है।
2: जी जी,
0: तब उसका इलाज संभव है, नहीं तो आमतौर पे आदमी जो है वो बस बार बार बनती है, निकलती है, पानी पीता है, इलाज करवाता है, फिर तैयार हो जाता है दूसरी बार बनने की।
2: यानी जांचों के बाद ये तय हो जाता है कि किस वजह से पथरी बन रही है, उसके बाद उस वजह का इलाज कर दिया जाता है, तो फिर पथरी बनने की या टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं
0: वो थोड़ी कम हो जाती है। जीरो तो हम नहीं कहेंगे कि जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज 80% है उसको हम 20% या 30% नीचे ले आते हैं।
2: जी।
0: कुछ मेडिसिन नहीं आई हैं जो कि आंतों पे कंट्रोल करती हैं।
2: अच्छा।
0: ये एक लेटेस्ट टेक्निक है कि आंतों पे कंट्रोल करती हैं कि जी वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं हो या वहां से जो है वो कैल्शियम और इन चीजों की जो है शरीर में अंदर या खून में ना जाए।
2: अच्छा।
0: तो उससे भी जो है काफी अच्छा रिजल्ट्स होते हैं। तो जो जिन पेशेंट्स में ये परेशानी है उनमें ये किया जाता है। एक और ग्लैंड भी होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड,
2: जी
0: गले में होता है, वो थायराइड के पीछे होता है छोटा, वो भी इस बार बार पथरी बनने के वजह हो सकता है।
2: अच्छा।
0: तो उसकी भी जांच करवाने के बाद में फिर हम उसके साइड में देखते हैं और कि पैराथायराइड की वजह से तो नहीं है ये।
2: अगर डॉक्टर साहब वो ग्लैंड उसकी वजह होता है तो क्या उसे निकाल दिया जाता है?
0: कैसे? उसको फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है।
2: अच्छा जी, कुल मिलाकर बात यह है कि जांचों से ही यह तय हो पाता है कि पथरी बार बार क्यों बन रही है।
0: बिल्कुल
2: जी। डॉक्टर साहब, पेशाब तंत्र की समस्याओं की बात है और बहुमूत्र की एक जो समस्या है लोगों में होती है, कई बार डायबिटीज, शुगर भी नहीं होता और उसके बाद भी बार बार पेशाब जाना पड़ता
0: है। आज ही दो लोगों ने पूछा,
2: अभी दो लोगों ने पूछा, तो मेरे मन में ये बात आई कि डॉक्टर साहब से इसकी वजह पूछूं, इसके पीछे क्या कारण छुपा है?
0: देखिए मोटी मोटी आप ये मान के चलिए कि

0: महिला हैं
1: जी
0: और उनकी उम्र जो है वो 15 से लेके 40 के बीच में है, तो इन्फेक्शन सबसे पहले कॉमन होता है।
1: अब ये और बताइए डॉक्टर साहब, विवाहित महिलाओं में ज्यादा समस्या रहती है यूटीआई की, या फिर किसी भी महिला को ज्यादा समस्या हो सकती है?
0: महिलाओं में हो सकती है, विवाहित में ज्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: दूसरी चीज ये कि अगर महिलाएं 40 या मीनोपॉज के बाद में हैं, तो उसमें यूट्रस और जो बाकी चीजें हैं उनकी, उसमें कमी या जो उसमें हार्मोन चेंजेस की वजह से हो जाती हैं, तो वो एक वजह हो जाती है।
1: अच्छा।
0: इसी तरह से पुरुषों में
1: जी
0: 30 से 35 साल उम्र से कम की उसमें ये परेशानी है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो उसमें पथरी हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है।
1: अच्छा।
0: इन्फेक्शन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो इन्फेक्शन होता है वो इसमें प्रोस्टेट में होता है।
1: अच्छा।
0: प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो महिलाओं में नहीं होती है
1: जी,
0: और इससे उम्र से ज्यादा है ये परेशानी, तो उसमें हम सबसे पहले प्रोस्टेट की जांच करवाते हैं, इससे ये पता चले कि ये प्रोस्टेट की वजह से तो नहीं है, उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, जैसे कई बार हम बात कर चुके हैं
1: जी, जी,
0: प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, जो समस्याएं हैं 50 साल की उम्र के बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है
1: जी,
0: तो वो एक पहली वजह है।
1: अच्छा।
0: वजह तो और भी लंबी है, लेकिन मेजर वजह महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग है, उम्र के साथ में अलग अलग है, और इन पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बहुमूत्र के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछनी है वो ये है कि कई लोगों को पेट में दर्द की शिकायत भी होती है
0: जी,
1: और उसके पीछे कहीं ना कहीं पेशाब ही वजह होती है, तो ये क्या है, किस तरह की समस्या होती है?
0: देखिए, पेट में है तो किधर किस एरिया में है।
1: अच्छा।
0: गुर्दे की है तो वो कुख में है, साइड में है, वो होती है, लेकिन मेन वजह पेट की जो है वो दो मेन चीजों से होती है, या तो गुर्दे में पथरी या ग्वाल ब्लैडर में पथरी।
1: अच्छा।
0: ये दो पथरियां जो हैं ये पेट में दर्द के मुख्य कारण होते हैं, जो बार बार हो रहे हैं।
1: अच्छा।
0: इन्फेक्शन हो गया, आंतों में सूजन हो गई, वो पेट में दर्द अलग है, ये मैं बता रहा हूँ उसकी की चीज हर महीने दो महीने में फिर से हो जा रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो इसमें इन दोनों जगह की पथरियों पे पहले ध्यान देना होता है। ये सारी चीजें जो है हम होल बॉडी होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं,
1: उसमें पता
0: तो उसमें गॉल ब्लैडर का भी पता चल जाता है, पथरी का भी पता चल जाता है, पेशाब की थैली का भी पता चल जाता है, प्रोस्टेट का भी पता चल जाता है, तो एक अल्ट्रासाउंड जो है पूरे पेट का आपको काफी कुछ हद तक बता देता है कि समस्या की जड़ कहाँ पे है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, कई बार आप लोग बताते हैं कि पेशाब की नली या पेशाब वाली जो रास्ता है वो सिकुड़ जाता है
0: जी,
1: ये किस तरह की समस्या है, किस उम्र में हो सकती है?
0: देखिए, पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाना यंग एज में भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, 15 से लेके 40 साल की उम्र के लोगों में भी हो जाता है
1: जी,
0: आमतौर पे इस उम्र में जो होता है वो या तो चोट लग जाती है किसी वजह से खेलते हुए जो है, या तो टेनिस बॉल वॉल लग गई या क्रिकेट बॉल लग गई, उसकी वजह से भी हो जाता है
1: जी,
0: इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है
1: जी।
0: पेशाब के रास्ते की सिकुड़न जिसको कहते हैं हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, ये जो है वो पुरुषों में ज्यादा है।
1: अच्छा।
0: और यंग एज में ज्यादा है।
1: अच्छा।
0: वो तो किसी भी एज में हो जाता है लेकिन यंग एज में ज्यादा है
1: जी जी। चूंकि आपने इतनी बीमारियां बता दी, उनके तरीके बता दिए कैसे आप पता करते हैं, इलाज के विषय में भी बताइए, क्योंकि रोज नए आविष्कार होते हैं चिकित्सा जगत में, तो इस समय जो इलाज है विशेष तौर से पेशाब संबंधी बीमारियों का, वो किस किस तरह से आप लोग करते हैं?
0: देखिए, सबसे पहले तो सही डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: और इसमें ही मैंने आपको बताया कि जी इसमें पेशाब की रास्ते की जांच और दूरबीन से जांच से काफी हद तक बीमारी का पता चल जाता है
1: जी।
0: शुरुआती बीमारी हो तो दूरबीन से जांच करके, और उसका इलाज भी दूरबीन से ही हो जाता है।
1: अच्छा। इलाज भी दूरबीन से हो जाता
0: है? इलाज भी हो जाता है
1: जी।
0: पहले जो इलाज दूरबीन से होते थे, अब आजकल जो दूरबीने हैं वो और छोटी पतली हो रही हैं, तो जो है वो आसानी से हो जाता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जी आप मतलब समस्याएं शुरुआती हो उसी समय ही इलाज शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर रहता है।
1: कुल मिलाकर शुरुआती अवस्था में अगर बीमारी पकड़ में आ जाती है
0: जी,
1: तो इलाज आसान भी होता है, सुलभ भी हो जाता है।
0: हाँ, और पतली दूरबीनों से हम उसको इसमें लेजर भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: तो लेजर से जो है वो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं और उसकी हीलिंग पावर ज्यादा होती है
1: जी। लेजर से तात्पर्य डॉक्टर साहब किरणों से होता है?
0: नहीं, दो तरह के, आम भाषा में लेजर जो होती है वो पथरी लेजर, बाहर से भी तोड़ने वाले को लेजर ही कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल लेजर नहीं होती है
1: जी,
0: वो किरणें होती हैं।
1: अच्छा।
0: रेज होती हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और जो अंदर हम जिससे स्टोन तोड़ते हैं अंदर ले जाके दूरबीन से, उसको लेजर होती है, वो सीधे फिजिक्स वाली लेजर एक्चुअल होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन
1: जी जी,
0: वो अलग लेजर है।
1: भौतिक विज्ञान का पूरा सूत्र आपने बता दिया डॉक्टर साहब
0: जी। बाकी जो

0: तोड़ी जाती हैं वो साउंड वेव्स होती हैं,
1: अच्छा,
0: तो वो अकॉस्टिक वेव्स होती हैं।
1: लोगों के मन में एक शंका बनी रहती है डॉक्टर साहब, लेजर से या जो किरणों से जो भी इलाज होता है, तो ये मानते हैं लोग कि साहब ये किरणें तो दूसरे अंगों को भी छूती होंगी, उनको भी नुकसान होता होगा। चूंकि आप करते हैं ये काम, क्या बताना चाहेंगे, क्या वाकई में ये सुरक्षित है तरीका, या इसमें कहीं गुंजाइश रहती है किसी दूसरे ऑर्गन पर भी कोई असर पड़ेगा?
0: देखिए, बहुत ही जरूरी है कि जो ड्राइडेड चीजें जो हैं, उसके लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है
1: जी,
0: वो सही तरीके से किया जाए, जिसमें इंडिकेटेड है वही किया जाए
1: जी,
0: और सिर्फ ऐसे ही चला देने से काम नहीं होता
1: जी। जी,
0: इसमें किसमें क्या की जरूरत है, कैसे करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी। मैन बिहाइंड द मशीन बात
0: जी,
1: है,
0: बिल्कुल सही।
1: डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पर हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रश्न है इनका, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। रेडियो हेल्पलाइन में स्वागत है आपका।
2: गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं बरेली से बिंदु बोल रही हूँ
0: जी। बताइए
2: डॉक्टर साहब, मेरे पापा की एज 85-86 ईयर्स है
0: जी,
2: काफी ओल्ड है, उनको ना बार बार टॉयलेट आती है, उनके प्रोस्टेट पड़े हुए हैं, वो अब एज ऐसी तो है नहीं कि उनको ऑपरेट कराया जाए, लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं, उनको देख के हम लोग को पूरा लगता है कि वो आते हैं बस बेड पे बैठते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, फिर आते हैं फिर टॉयलेट जाते हैं, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं जिससे कि उनको रिलीफ मिले?
0: 85 ईयर्स की एज है, लेकिन अगर वो स्वस्थ हैं और बाकी चल फिर सकते हैं, तो 85 ईयर्स ये जो प्रोस्टेट की बीमारी है जो इसी एज ग्रुप में होती है, और अगर कंडीशन सही है और ऑपरेशन की इंडिकेशन है तो उसके बारे में भी चेकअप किया जा सकता है। मेरे को नहीं पता कि जी उनकी कितना बड़ा प्रोस्टेट है और क्या चीज़ें हैं, पर सिर्फ 85 ईयर्स जो है वो ऑपरेशन के लिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा एज का जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन मैंने ही किया वो 104 साल का है, तो पेशेंट की कंडीशन सही होनी चाहिए, प्रोस्टेट कितनी है और क्या उनको ज़रूरत है भी या नहीं है, ये एसेस करवाने के लिए आप कुछ टेस्ट वगैरह जो हैं किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलके, और उसके बाद में फिर आप टेस्ट करवा के देखें कि जी उनको फायदा होगा या नहीं होगा जी।
1: 104 वर्ष की आयु में डॉक्टर साहब प्रोस्टेट का ऑपरेशन
0: जी? दो केसेस
1: किए?
0: हाँ, दो केसेस 104 के हैं, बाकी तो उससे कम के हैं, 100 से ऊपर तो है ही
1: जी,
0: और 90s में तो बहुत सारे।
1: हम ये मान लेते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो ऑपरेशन का मौका खत्म हो जाता है, और आप बता रहे हैं 104 वर्ष की आयु में आपने ऑपरेशन किए प्रोस्टेट के? डॉक्टर साहब प्रोस्टेट ग्रंथि का काम थोड़ा सा अलग है
0: जी,
1: पेशाब में मुझे नहीं लगता इसका कोई काम होगा जहां तक मेरा ज्ञान है, बाकी बेहतर तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन ये पेशाब में रुकावट की वजह बनता है
0: जी,
1: पेशाब वाली कई समस्याएं इसकी वजह से होती है, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा क्या है प्रोस्टेट और कैसे ये पेशाब की समस्या पैदा करता है?
0: ये प्रोस्टेट एक जो है ना अखरोट साइज का
1: जी
0: ग्रंथि होता है
1: जी,
0: पेशाब की थैली के नीचे होता है, इसका काम जो है वो सीमेन या वीर्य प्रोड्यूस करना है
1: जी,
0: और पेशाब की नली जो है वो इसके बीच में से पास होती
1: इसके
0: है।
1: बीच से यानी अखरोट के बीचों बीच से जाती है जी।
0: तो जब 50 साल के उम्र के बाद में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है तो वो पेशाब की नली को दबा देता है।
1: अच्छा,
0: तो इस बढ़े हुए प्रोस्टेट को निकालने के लिए काम करना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: और दूसरी वजह यह है कि ये प्रोस्टेट जो है इस उम्र में जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कैंसर का भी सबसे ज्यादा पुरुषों में
1: यही
0: प्रोस्टेट ही है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जी आदमियों को 50 साल की उम्र के बाद में अपने प्रोस्टेट की ग्लैंड की जांच हर साल करवा लेना चाहिए।
1: ओके जी, तो डॉक्टर साहब चूंकि समय हमारा सीमित है कार्यक्रम का, बातें अभी भी बहुत सी रह जाती हैं, एक महत्वपूर्ण बात आज सामने आई है कार्यक्रम के माध्यम से, पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट की अगर कहीं कोई समस्या है तो ये ना सोचे आयु ज्यादा है प्रोस्टेट का ऑपरेशन या इलाज नहीं हो सकता, जागरूक रहने की जरूरत है, और अगर समस्या है तो उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है, उचित इलाज कराएं और स्वस्थ जीवन जिए, ये हमारा संदेश है सभी श्रोताओं के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए और आपने पेशाब संबंधी समस्याओं के विषय में हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दी, उनके इलाज के विषय में भी बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार जी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
1: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
1: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
3: मर्दाना कमजोरी,
4: महिलाओं के मूत्र रोगों,
3: गुर्दे की पथरी,
1: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
3: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्जित,
1: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोटेप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
3: नीरज लाइफ।

0: एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
1: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253124।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम।
3: और उसको पूरा करने के लिए, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने के लिए, मनमोहन सिंह ने एक सुझाव दिया कि हमारे पास जो सोना है और जो काम नहीं आ रहा है, पड़ा हुआ है किसी भंडार में, उसको गिरवी रखा जाए। इसके लिए इंग्लैंड की और जापान की बैंक में ये सोना गिरवी रखा गया और उससे जो विदेशी मुद्रा आई उससे हमारा काम बहुत अच्छी तरह चलने लगा। उसके अलावा विदेशी मुद्रा बढ़ाने का एक और काम नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की टीम ने किया, वो ये था कि रुपए का अवमूल्यन। जैसे ही रुपए का अवमूल्यन होता है, हमारी देश में बनाई हुई चीज़ों की कीमत विदेश में घट जाती है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इस एक्सपोर्ट के बढ़ जाने से हमारी विदेश मुद्रा और बढ़ती है और हमारी विदेश मुद्रा नरसिंह राव के समय में ही इतनी बढ़ गई थी कि हमने वो गिरवी रखा सोना उन्हीं के कार्यकाल में वापस भी ले लिया था। असल में क्या किया गया इस जोड़ी ने आर्थिक सुधारों में, उनमें सबसे पहला था बंद व्यवस्था को खोलना। हमारी व्यवस्था अब तक इस टाइप की थी कि जो कार बना रहा है उसको कंपटीशन बाहर से न मिले, इसके लिए बाहर की कारों पर बड़ा टैरिफ लगाया जाता था, करीब करीब सभी चीज़ों में था। तो इससे ये हो रहा था कि हमारी आत्मनिर्भरता तो बढ़ रही थी लेकिन हम आइसोलेट भी होते जा रहे थे पूरी दुनिया से। हमारी गुणवत्ता अपने उत्पाद की और उत्पादकता में भी कमी आ रही थी। इसको सही राह पर लाने के लिए व्यवस्था को खोला गया, लिबरलाइजेशन किया गया, जिससे रूल्स और रेगुलेशंस और लाइसेंस राज से थोड़ा सा छुटकारा मिला और इसकी वजह से विदेशी निवेश भी आने लगा और ज्यादातर क्षेत्रों में विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। विदेशी पूंजी आने से हमें नए नए उद्योग और नए नए व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। इससे गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ी और लोगों को नौकरियां मिली जिससे उनकी परचेज कैपेसिटी बढ़ी और इसका असर ये हुआ कि ओवरऑल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने लगा। जो कभी 3% रहता था लाइसेंस राज के टाइम में, वो अब 6-7% टाइप का होने लगा। इसके अलावा सरकार ने एक काम और किया, जितने भी सरकारी संपदा थी, जो संस्थान थे, संकाय थे और जो लॉस में चल रहे थे, हानि में चल रहे थे, जिसके लिए फिर सरकारी खजाने से भरपाई करनी पड़ती थी, उनका निजीकरण शुरू किया। लेकिन इसमें भी डेंगू पिंग की शैली का एक तरह से झलक मिलती है। एक्चुअली डेंगू पिंग ने विदेशी पूंजी या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की सुरक्षा, चीन की सुरक्षा और उनके सामाजिक ढांचे पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। इस जोड़ी ने, पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने भी लगभग यही किया। बड़े बड़े रक्षा संस्थान सरकार के ही रहे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर्स जैसे स्टील प्लांट, रेलवेज, ये सरकार के नियंत्रण में ही रहे, लेकिन बाकी जगह जहाँ रिटेल वगैरह में या छोटे मोटे उद्योग धंधों में विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया और उसका फर्क भी पड़ा। इससे हमारी संप्रभुता पर भी कोई असर नहीं आया और हमारा जीडीपी भी रेट अच्छी गति से बढ़ने लगा। और इसका असर ये हुआ कि जब नरसिंह राव की सरकार 1996 में गई तो उसके बाद भी किसी भी सरकार ने इन सुधारों को वापस नहीं लिया, वो चलते रहे और उसकी वजह से सरकारें बदलीं, जल्दी जल्दी सरकारें बदलीं, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। एक और काम जो किया गया था वो ये किया गया था कि हमारे देश में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े कानून होते थे जो विदेशियों को नहीं समझ में आते थे या जिनसे अपने घर के उद्योगपति ही काफी

परेशान रहते थे उनको या तो हटाया गया या उनमें ढिलाई दी गई और ऐसे नियम बनाए गए जिसके तहत विदेशियों को भी और देश के पैसा लगाने वाले पूंजीपतियों को भी आसानी हो सके। इसलिए नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलाव का जनक माना जाता है, हालांकि इसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत सहयोग और रहा है। इससे पहले आपको ये और बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ एक कंट्रोलर होता था उद्योग धंधों के नियम करने के लिए, सीओसी कहलाता था। उससे वो जो कंट्रोल ज़्यादा करता था और उसको रेगुलेट कम करता था, इसके लिए भारत सरकार ने 1992 में सेबी का गठन किया। इस सेबी का काम ये था कि निगरानी भी रखे और लोगों को बताए कि सही रास्ता क्या है और उस पर कैसे चलना है। तो इन नियमों के आने के बाद विदेशियों को जो दिक्कत होती थी ईज ऑफ बिजनेस की, उसमें काफ़ी राहत मिली। और 1904 तक आते आते हमारे देश में एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ गई थी, जिसकी वजह से हम नए नए क्षेत्रों जैसे ये कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर, इसमें चीन से भी आगे निकल गए थे। और मुझे लगता है कि इसके लिए नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी को देश को धन्यवाद देना चाहिए।

0: केपीएस वर्मा की वार्ता, विषय था भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पी पीवी नरसिम्हा राव। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522453027, 0522453027।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। रात्रि के 8:10 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं जाफर हुसैन खां का नात व कवाली।

इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना जाफर हुसैन खान का नात व कवाली। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में सनम तेरी कसम फिल्म से। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं शक्ति फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल

0: विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजना

0: आधार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा

0: लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई

0: संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार हैं कैफी आजमी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है कैफ भोपाली, संगीतकार है गुलाम मोहम्मद, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं परवेज शमसी, धुन है सी रामचंद्र की, फिल्म का नाम है नौशेरवाने आदिल।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
0: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

0: का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शान शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने।
1: बेगम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी, ये सच है। हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया, ये भी सच है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि अख्तर गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम, हमने ये कभी नहीं सोचा। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा? इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
2: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है। तन मन की सूद खो बैठी हूँ। मैं जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अब आप ये बताइए कि अख्तर।
2: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में कितनी फिरदौस का नाम ले रहे थे।
1: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था। इतने

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहे।
0: तो सुनिए
3: साथ ही, अब आपकी पसंद कार्यक्रम का सफर यहीं पूरा होता है। और जो हमें ईमेल या पत्र नहीं भेज पाए उन्हें हम अपना पता एक बार फिर से बता दें, ताकि जब कभी भी फरमाइशी कार्यक्रमों का दौर चले तो आप उसकी दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके ईमेल @gmail.com। इस पर आप अपनी फरमाइश किसी भी फरमाइशी कार्यक्रम में भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारा पता नोट कर लें। आपको इस कार्यक्रम के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन संख्या है 226001। और अब कार्यक्रम से मुझे अनिका कस्तूरी को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत के सफर में हम आज जिन सदाबहार गीतों को सुनेंगे उन्हें हमने शामिल किया है 90 के दशक के उन सदाबहार हिंदी गीतों को इस कार्यक्रम में जोड़ा है जो दौर एक अलग मासूमियत के सुरों को दर्शाता है। कहीं दोस्ती की गहराई इन गीतों में समाहित होती है तो कहीं जिंदगी के हर भाव इस संगीत की खूबसूरती से सराबोर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं कुमार सानू की आवाज।

कहते हैं ना कि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते। 90s का दौर वो दौर था जब गानों को जिया जाता था, ना सिर्फ जिया जाता था बल्कि आंख बंद करके। आज भी जब उस गीत को हम सुनते या गुनगुनाते हैं तो उस दौर की तमाम यादें भी हमारे जहन में ताजा होती हैं। और कार्यक्रम का जो अगला गीत हमने शामिल किया है ना, वो हर महफिल में कुछ ऐसे ही जान डालने वाला है। कार्यक्रम का अगला गीत है जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, कुमार सानू और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।

अलका याग्निक और विनोद राठौर की इस खूबसूरत सी जोड़ी के साथ जो गीत आपने बाजीगर फिल्म से सुना वो 90s के उस दौर की याद ताजा कराता है ना, जब टेप रिकॉर्डर के जो कैसेट्स हुआ करते थे उन्हें पेंसिल के एक सिरे से घुमाना और अपनी पसंद का साइड ए या बी का गीत सुनना। और 90s के दौर की ना एक और बड़ी ही खास बात थी, वहां के जो गीत संगीत का जो भी सुकून था ना वो बड़ा ही शांत, बहुत सुलझा हुआ था। चलिए उसी दौर में आपको लिए चलती हूँ साजन फिल्म के इस गीत के साथ।

कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में सुन रहे थे कार्यक्रम का आप ये गीत। और आखिर में अब बढ़ चलते हैं और आपको सुनवाते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से कार्यक्रम का आखिरी गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित किशन महाराज का तबला वादन। पहले सुनिए ताल धमार, फिर सुनिएगा झप ताल और अंत में सुनिएगा तीन ताल।

That's the best time to get the job.

Then,

अभी आप सुन रहे थे पंडित किशन महाराज का तबला वादन। पहले आपने सुना ताल धमार, फिर आपने सुना झपताल और फिर आखिर में तीन ताल। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे। पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में आप समाचारों को सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: Prime Minister will also be visiting.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।

मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।